जब मन में सुकून, विश्वास और अच्छे विचार बस जाते हैं तो जिंदगी की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। बाहरी हालात जैसे भी क्यों ना हो, असली ताकत हमारे मन के भीतर ही होती है।

और गीतों भरे सफर पर चलते चलते हम और आप भोर सुहानी के अंजाम पर पहुंच ही चुके हैं। तो भाई चलते चलते आपको एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं और इस गीत के साथ ही आप सुरभि को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तो सुनिए ये गीत और इसी के साथ सुरभि को दीजिए इजाजत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

चलिए अब जान लेते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। सात का समय है आज सवेरे कार्यक्रम का। 8:45 पर आप म्यूजिकल दिल्ली कार्यक्रम सुन सकते हैं। दस बजकर तीस मिनट पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स। 11:25 पर तस्वीर कार्यक्रम में केरल के थिरकड्डी की तस्वीर आप सुन सकते हैं। 12:10 का समय है एक कदम बुजुर्गों की ओर।

1:10 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे राजेंद्र कृष्ण साहब के बारे में। आज के कलाकार हैं राजेंद्र कृष्ण। 3:10 का समय है कार्यक्रम मनभावन का। 5:10 के समय पर आप सुन पाएंगे पानी पर लिखी कहानी जिंदगी अभी बाकी है। छह बजकर 10 मिनट पर सुनेंगे सदाबहार गीत। 6:30 का समय है मार्केट मंत्रा का। 8:10 पर मधुरिमा सुन पाएंगे और 8:45 का वक्त है समाचार संध्या का। 10:30 पर हर श्रृंगार

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। कुछ ही देर में 6 बजने वाले हैं और समाचारों का वक्त है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को

0: को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing Indian diaspora in Paris last night,

भोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

देवाधिदेव महादेव और रघुकुल दीपक भगवान राम, दो आराध्य जिनकी भक्ति और प्रेम हमें एकता, समर्पण और विनम्रता का संदेश देते हैं। भोलेनाथ श्री राम का स्मरण करते हैं तो राम उनकी आराधना करते हैं। कहते हैं ना कि राम नाम मन में बस जाए, शिव का आशीष जीवन महकाए। भक्ति की इस पावन डोर से हर दुख का

साथियों, तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पाणी। अर्थात ये संपूर्ण संसार राममय है। जब हम हर जीव में, हर परिस्थिति में प्रभु का अंश देखने लगते हैं, तब जीवन में शिकायतें कम और कृतज्ञता अधिक हो जाती है। आइए इस सुबह के कुछ पल राम नाम को समर्पित करें। 6:25 पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण 100.1 आकाशवाणी FM।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर वक्त हुआ है 6:32 और आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण गोल्ड स्टूडियो से आज आपका साथ दे रही हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

साथियों कहते हैं कि रिश्तों की इस दुनिया में माँ का जो रिश्ता है वो सबसे खास और अनमोल है। और फिर जब जगत जायनी माँ दुर्गा की बात हो तो कहते हैं कि माँ की भक्ति में जो मन रम जाए हर संकट उसका खुद ही टल जाए, क्योंकि शक्ति का रूप है माँ दुर्गा हमारी और उनकी कृपा से जीवन हो उजियारा। माँ दुर्गा की जो भक्ति है वो सबसे निराली है, क्योंकि वो भर देती है हम सब की झोली खाली। 6:36 और 58 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप और हम कर रहे हैं भक्ति और श्रद्धा का समर्पण अर्पण।

साथियों 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। और अब समय हो रहा है रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय पाठ का। तो आइए मिलकर एक साथ श्रवण करते हैं इस सुंदर संगीतमय पाठ को।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बाल हंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ। आज जो प्रसंग आपने सुना, इसे बालकांड से लिया गया था। और अब समय हो रहा है आपसे अनुमति देने का, क्योंकि कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है। लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब जानेंगे देश और दुनिया का हाल समाचार बुलेटिन के जरिए। और उसके बाद 7:10 पर आपसे एक बार फिर मिलूंगी कार्यक्रम गोल सुप्रभात में। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे योग पर आधारित हमारी एक विशेष श्रृंखला से, और उसके बाद गोल सुप्रभात में आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: प्रदत्तम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रम रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडवीयः अवोचत् यत् गतवर्षस्य अगस्त मासात् आरभ्य 63 लक्षतोऽधिकाः कर्मचारिणः PMVVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः 25% न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिन्दी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रम् इति सम्बोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यते। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः, वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिन्द। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मन्त्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,24,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम 97,00,790,000 मेट्रिक टन मितं माष अथ च 18,07,40,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधि इत्याख्ये 10वें संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में

0: सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार 3री जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आइए अब सुनते हैं योग पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला, आज का आसन स्कंद आसन।
1: नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएं। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी सांस से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे योग पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आज का आसन।

साथियों, हर रोज सुबह होते ही दो ऑप्शंस हम सभी के पास होते हैं कि अलार्म बंद करके थोड़ा और सो लें, या फिर उठें और चलें वॉक, योग, जिम या पार्क में वेट कर रही अपनी मित्र मंडली से मिलने और उनके साथ अपने एक्सरसाइज शेड्यूल को एंजॉय करने। अब आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं ये आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड तो करता ही है, लेकिन ये कहना शायद ज्यादा सही होगा कि आपकी ये चॉइस आगे जाकर आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने वाली है। 7:15 और 18 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ कौन है? आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

भाई हमने तो ये गाना योग को डेडिकेट करते हुए प्ले किया है कि इसे अपने जीवन की डोर से बांध लिया है क्योंकि तन मन के स्वास्थ्य और स्फूर्ति के लिए योग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस बनकर सामने आया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे लाभ ले रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप चाहें तो इस बार योग दिवस के अवसर पर आप भी संकल्प कर लें योग से जुड़ने का। फायदा आपके साथ साथ पूरी दुनिया को दिखाई देगा कुछ ही समय में, क्योंकि योग सिर्फ आपके तन का ही नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क का भी ख्याल रखता है और आपको आध्यात्म के प्रति भी सचेत करता है, उन्मुख करता है और देता है शांति और सुकून के पल जिनकी तलाश में हम न जाने क्या क्या करते हैं। वैसे सुकून और खुशी के पल गोल्डन म्यूजिक के साथ फ्री मिलते हैं आपको ओनली ऑन 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड। तो चलिए फिर सुनवाती हूँ आपको एक और गोल्डन क्लासिक। आवाजें हैं आशा जी और रफीस साहब की और फिल्म का नाम है हम सबका जाना पहचाना कश्मीर की कली।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

7:25 और 2 सेकंड 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा और हम अब आपको ये बताना चाहते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। वैसे आप देख ही रहे हैं कि धूप खिली हुई है और मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि आज ऐसे ही रहेगा, यानी बारिश की संभावना न के बराबर है। हवा की गति रहेगी करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है। और आज का दिन तिथि के अनुसार गुरु हर गोविंद जयंती के तौर पर अपनी खास पहचान रखता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे म्यूजिकल दिल्ली में। और आज ही के दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में भी बताएंगे आपको म्यूजिकल दिल्ली में। और म्यूजिकल दिल्ली आप सुनेंगे मेरे साथ 8:45 पर, जिसके पहले सेगमेंट में आपके साथ रहूंगी मैं और दूसरा सेगमेंट आपके पास आएगा 9:10 पर, जिसमें आपके साथ रहेंगी इंदु पांडे। और 10:30 सुबह आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, 11:10 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद और 11:25 पर तस्वीर में आज हम आपको केरल में थिक्कड़ी की सैर करवाएंगे। दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर। दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज गीतकार राजेंद्र कृष्ण के बारे में बात करेंगे। 2:30 से 3 बजे दोपहर में आप सुनेंगे प्रोग्राम उन्नत किसान, जिसमें आज का विषय रहेगा पार्कों में घास

की स्थापना एवं उसका रखरखाव, और इसमें शामिल होंगे स्टूडियो से हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अजय तिवारी जो प्रधान वैज्ञानिक है पूसा संस्थान नई दिल्ली में। शाम 6:30 बजे आप सुनेंगे मार्केट मंत्र, रात 8:10 पर हर श्रृंगार, रात 8:10 पर मधुरिमा, और रात 10:30 बजे आप सुनेंगे हर श्रृंगार। रात 11:10 पर आप सुनेंगे स्पेशल बायलिंगुअल प्रोग्राम सीरीज के तहत 12 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट, और रात 11:45 का समय रहेगा गीत मेरे मनमीत का, और किशोर दा की आवाज में ये हम सबका फेवरेट गाना आपकी नजर कर रही हूँ आज के प्रोग्राम के आखिरी गाने के तौर पर। लेकिन वादा चाहती हूँ आपसे कि आप जुड़े रहेंगे इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्डन म्यूजिक बेहतरीन सौगात में शामिल हो रहेगा आपके साथ हमारे हर प्रोग्राम में। तो फिलहाल आपसे इस गाने के साथ ही मैं लेती हूँ इजाजत, और फिर मिलती हूँ 8:45 पर समाचारों के उस पार प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट में। इस गाने के बाद आप सुनेंगे न्यूज सर्विसेज डिवीजन की प्रस्तुति प्रोग्राम आज सवेरे।

0: नमस्कार सुप्रभात श्रोताओं, उम्मीद है कि आज की ये नई सुबह आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नई मुस्कान लेकर आई होगी। इसी सकारात्मक शुरुआत के साथ आपका स्वागत है आपकी अपने पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे में। अगले आधे घंटे तक हम रहेंगे आपके साथ, लेकर आएंगे देश दुनिया की प्रमुख खबरें, आज के दिन का इतिहास, कुछ खास व्यक्तित्वों से जुड़ी बातें, रोचक जानकारी और बेहतरीन गीतों का सिलसिला। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू तन्वी।
1: नमस्कार वैष्णवी एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल वैष्णवी हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड यू लिसन टू इट each and every day. This is a very special program for its amazing information, for the information that we give it to you, be it the historical information or the news or the Metro City updates and much more. And today is 19th of June, so what all is special about 19th of June, we'll let you know. And today is Friday, so just want to wish you a very, very happy Friday. Let's begin our program with the news headlines.
0: जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अनिश्चितता और व्यवधान के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में फ्रांस और भारत के बीच साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन गई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: Prime Minister Narendra Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. Prime Minister said this visit to France has been extensive when it comes to engagement and outcomes. French President Emmanuel Macron recorded a special farewell video message in Hindi for PM Modi as he was wrapping up his trip to France.
3: Priez mes frères Narendra, Mujib Baoud Kouchi, oui, Abka Nice, Evian, or Paris. Manisse Sadre, Daure Kelie, Toagat Karke, France or Barat, Kidosti Amarai. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care.
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
1: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at the minimum support price for 4 states. The ministry said that the procurement will be undertaken under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. Uttar Pradesh has emerged as the biggest beneficiary under the approvals for the summer 2026 season. In Gujarat, procurement of 18,250 metric tons of moong has been approved for the summer 2026 season. The minister also approved an enhancement in the moong procurement limit for Tamil Nadu under the Rabi marketing season 2025-26 from 885 metric tons to 990 metric tons. Mr. Chauhan approved procurement of 2,115 metric tons of moong during the summer 2026 season for Haryana.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी।
1: President Draupadi Murmu will attend a program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. After that, she will travel to Rairangpur in Odisha, where she will inaugurate several development projects. These include a medical camp organized by AIIMS Bhubaneswar, a mega rural piped water supply scheme for mining affected villages, the Matru Shakti Bhavan of the Brahma Kumaris, and a special circuit house.

0: As part of the next phase of her visit, President Murmu and Prime Minister Narendra Modi will visit Pahadpur village in Odisha's Mayurbhanj district tomorrow.
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है।
0: In hockey, India defeated Uruguay 3-2 to register their third consecutive win and finish on top of Pool A in the FIH Women's Nationals Cup in New Zealand yesterday. After conceding an early goal, India staged a strong comeback with Deepika scoring twice and Deepika Soreng adding another goal. Uruguay had taken the lead through Chiara Appenino in the 13th minute before Deepika equalized through a penalty corner in the 24th of minute.
1: श्रोताओ अब रुक करते हैं देश के प्रमुख महानगरों का, जहां से जानेंगे शहरों की ताजा हलचल और दिन भर होने वाली कुछ खास गतिविधियों के बारे में। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने भारत के शीर्ष संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। वैश्विक रैंकिंग में IIT दिल्ली को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने 75 पायदान ऊपर चढ़कर 686वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वैश्विक रैंकिंग में 105वें स्थान पर शामिल है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 52 भारतीय संस्थान शामिल हैं, जिनमें से 13 भारतीय विश्वविद्यालयों ने दुनिया के शीर्ष 550 संस्थानों में जगह बनाई है। IIT बम्बई और IIT मद्रास भी विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में देश के कुल 52 संस्थानों को स्थान मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कल द्वारका स्थित नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अटल इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि ये केंद्र दिल्ली के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देगा।
3: अटल जी के नाम से अटल इंक्यूबेशन सेंटर और नेताजी सुभाष चंद्र NSUT में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इस प्रकार का एक इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है, जो अपने अपने तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स के आइडियाज को सोचकर आगे बढ़ाने वाले युवाओं को पैरों पर खड़ा होने का ये प्रयास NSUT और AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा किया गया है। इससे दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल मिलेगा।
0: And from Delhi, let's move towards Chennai. The customs department seized 11 kilograms of hydroponic ganja worth 11 crore rupees from two passengers arriving from Bangkok via Singapore. This is the second seizure in 3 weeks. The Air Intelligence Unit at Chennai intercepted the two passengers from Kerala. The packets contained green flowering and fruiting tops with strong odor. It was confirmed that it was a hydroponic weed. The passengers were hired by cartels to transport the hydroponic weed to Chennai, from where it could be distributed to Bengaluru and Mumbai. While officials remanded one of them under NDPS Act, the other was handed to the Narcotics Control Bureau to trace and secure receivers. Further investigation is underway in the case. And we have some more news from Chennai itself. The Tamil Nadu government has halted the construction of 2,000 crore rupees residential housing project in Perumbakkam after finding that work has commenced without obtaining mandatory permission from the Tamil Nadu State Wetland Authority.
1: और अब रुक करते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों और नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए गुरुवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा, जबकि भंडारा गोंदिया में सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 98.44% मतदान दर्ज किया गया। सभी सीटों की मतगणना 22 जून को होगी। वहीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को फिल्मों की स्क्रीनिंग और विशेष कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। महोत्सव में बहुप्रतीक्षित एनिमेटेड फिल्म इनी मिनी मिनी मोए के साथ पूर्वोत्तर भारत की कहानियों और मराठी फिल्मों पर आधारित विशेष खंडों को भी दर्शकों ने सराहा। वहीं वेव स्टॉक बाजार का समापन भी हुआ, जहां डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सहयोग एवं वैश्विक साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की।
0: And let's move towards Bengaluru. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar described the Megadatu project as the heart of South India, stating that it would benefit both Karnataka and Tamil Nadu while addressing Bengaluru's growing drinking water needs yesterday. Speaking after voting in the Legislative Council elections at Vidhan Sabha, he said the proposed reservoir is meant solely for drinking water supply and power generation and not for irrigation. Not a single bucket of water will be used for irrigation. Karnataka will continue to release Tamil Nadu's allocated share of 177 TMC of Kaveri River, he added. And Minister of Greater Bengaluru Development, Karnataka, Krishna Bhaire Gowda, announced the release of a special grant of 2,000 crore rupees for the development and upgradation of ward roads across five municipal corporations under the Greater Bengaluru area. Speaking after a meeting on solid waste management, the minister said the funds will be used to repair and asphalt damaged ward roads, excluding major arterial and sub-arterial roads. Officials have been directed to identify deteriorated roads, prepare estimates, invite short-term tenders and begin work immediately.
1: और कोलकाता की ओर चलते हैं तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में आयोजित दौड़ से ध्यान कार्यक्रम योग मैराथन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने हॉक स्ट्रीट से योग मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताते हुए इसके महत्व पर बल दिया।
0: And about Hyderabad, Indian Institute of Technology, IIT Hyderabad, recorded its strongest performance yet in the QS World University Rankings 2027, climbing 76 places to global rank 588 from 664 last year. The institute's overall score rose to 28.7, placing it ahead of 61% of universities worldwide, up from 55.9% in 2026. The accent was driven by research impact, with IIT Hyderabad ranked 123 globally for citations per faculty at a score of 86.8, up 7 places. The institute also improved in academic reputation, employer reputation, employment outcomes and sustainability.
1: और तन्वी, अब बात मौसम की कर लेते हैं तो राजधानी दिल्ली में आज बारिश के साथ आंधी आने की संभावना है। बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई की बात करें तो आज मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है, अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
0: Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The temperatures are expected to range between the minimum 29 degrees and maximum 38 degrees. Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 22 degrees, while the maximum may reach 29 degrees. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or even dust storm. Temperatures are expected to range from 27 degrees to 38 degrees Celsius. And moving towards our next segment, let's talk about 19th of June. How is this particular day special?
1: तन्वी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज के दिन की विशेषता के बारे में श्रोताओं को बताते हैं। श्रोताओं, कभी कभी जागरूकता ही सबसे बड़ी दवा बन जाती है। एक सही जानकारी न केवल किसी बीमारी को पहचानने में मदद करती है, बल्कि कई जिंदगियां भी बचा सकती हैं। इसी उद्देश्य के साथ हर वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस का उद्देश्य लोगों को सिकल सेल रोग के प्रति जागरूक करना और

0: समय पर जांच एवं उपचार के महत्व को समझाना है। ये एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार के बजाय हंसीय यानी सिकल के आकार की हो जाती हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव प्रभावित होता है और रोगी को बार बार तेज दर्द, एनीमिया, संक्रमण तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। विश्व सिकल सेल दिवस हमें ये संदेश देता है कि समय पर जांच, सही जानकारी और सामूहिक जागरूकता के माध्यम से न केवल इस बीमारी की पहचान आसान बनाई जा सकती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसके गंभीर प्रभावों से बचाया जा सकता है।
1: And after the importance, after listening to the importance of the World Sickle Cell Day, let's talk about the different years and 19th June. How are these two connected? Let's talk about the year 1846, the first officially recorded baseball game played under modern rules took place between the New York Knickerbockers and the New York Nine in Hoboken, New Jersey.
0: 1862 में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने सभी अमेरिकी क्षेत्रों में गुलामी पर प्रतिबंध लगा दिया था।
1: In 1865, Union General Gordon Granger announced the end of slavery in Texas, a day now commemorated as Juneteenth.
0: और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिलीपीन सागर की लड़ाई शुरू हुई जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी नौसेना को एक निर्णायक जीत मिली।
1: Let's go a little back. In 1910, the world's first Father's Day was celebrated in Spokane, Washington, USA. And in 1963, Soviet cosmonaut Valentina Tereshkova returned safely to Earth after completing her historic space mission.
0: और 1966 में आज के दिन बाल ठाकरे द्वारा मुंबई में शिवसेना पार्टी की स्थापना की गई थी।
1: In 1981, India successfully launched Apple. Apple is the short form of Ariane Passenger Payload Experiment, its first indigenous experimental communication satellite.
0: वहीं 2017 में अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने काबुल में पहले अफगानिस्तान भारत एयर कॉरिडोर का उद्घाटन किया जिससे दोनों देशों के बीच एक सीधा हवाई व्यापार मार्ग स्थापित हुआ। और श्रोताओं, अब आज के दिन से जुड़े उन अहम नामों की बात करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी। तेलुगु सिनेमा में जिन्हें हास्य ब्रह्मा यानी कॉमेडी के ब्रह्मा कहा जाता है वे थे जंध्याला सुब्रमण्यम शास्त्री, जिन्हें सब प्यार से सिर्फ जंध्याला कहते थे। 25 साल के अपने करियर में उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में निर्देशित की और 300 से अधिक फिल्मों के संवाद लिखे। संकराभरणम, अहन्नाल पेलंता और विवाह भोजनबू जैसी उनकी फिल्में तेलुगु सिनेमा की क्लासिक मानी जाती है। उन्होंने ब्रह्मानंदम, राजेंद्र प्रसाद और कोटा श्रीनिवास राव जैसे दिग्गज हास्य कलाकारों को तेलुगु सिनेमा में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें 3 नंदी पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 19 जून 2001 को महज 50 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, ठीक उसी साल जब उन्होंने फिल्म उद्योग में अपना रजत जयंती वर्ष पूरा किया था।
1: And the next person in our list is James Gandolfini. Today is his death anniversary. An American actor, he was best known for his portrayal of Tony Soprano, the Italian-American mafia crime boss in the TV series The Sopranos, which starred from 1999 to 2007. For this role, he won 3 Primetime Emmy Awards, 5 Actor Awards and 1 Golden Globe Award. His role as Tony Soprano has been described as the greatest and most influential performance in television history. Let's hear some inspirational words by him.
2: Life is short. Try to do something new every day. Dance. Try to dance as much as you can. Try to connect to the silence of the sea. And whenever you can, try to give your body a good rest. Once in a while, try to surprise an old friend.
3: I'm sorry.
2: I know. Try to exercise on a regular basis. A healthy body is a healthy mind. And learn to appreciate art. Try new things. And yes, it will change your life.

0: James Gandolfini. He was featured in numerous films, be it True Romance, Get Shorty, Crimson Tide, A Civil Action, The Last Castle, Romance and Cigarettes, Where the Wild Things Are, Zero Dark Thirty, Not Fade Away, and many, many more.
1: अब बात एक ऐसे कलाकार की जिनकी आवाज में पूरी एक दुनिया बसती थी, निर्मला वेणु माधव। तेलंगाना के वारंगल में जन्मे वेणु माधव को भारतीय मिमिक्री कला का जनक माना जाता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय मिमिक्री कलाकार बनने का गौरव हासिल किया था। उन्हें 1978 में आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा कला प्रपूर्णा की उपाधि और 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन 28 दिसंबर को उनके शिष्य आज भी विश्व मिमिक्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 जून 2018 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी अनगिनत आवाजें आज भी गूंजती है।
0: And today is the birth anniversary of Raj Chandra Bose, an Indian-American mathematician and statistician best known for his work in design theory, finite geometry and the theory of error-correcting codes, in which the class of BCH codes is partly named after him. He also invented the notions of partial geometry, association scheme and strongly regular graph and started a systematic study of difference sets or to construct a symmetric block designs. He was notable for his work along with S.S. Shrikhande and E.T. Parker in their disproof of the famous conjecture made by Leonhard Euler dated 1782 that for number n, do there exist two mutually orthogonal Latin squares of order 4n plus 2.
1: आज पुण्यतिथि है एक ऐसे अफसर की जिन्होंने सरकारी नौकरी को सिर्फ एक पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी माना। गुरु प्रसाद मोहपात्रा। उड़ीसा के साहित्यकार परिवार में जन्मे मोहपात्रा 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी थे। कोविड की दूसरी लहर के सबसे भयावह दौर में जब देश भर में ऑक्सीजन की कमी थी, मोहपात्रा खुद कोविड से पीड़ित होते हुए भी अस्पताल के बिस्तर से देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी करते रहे। उनकी इस असाधारण सेवा के लिए भारत सरकार ने 2022 में उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। तन्वी, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो उनके नाम सिर्फ फाइलों में ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अवसर होते हैं जैसे मोहपात्रा के बारे में जो सदैव लोगों के दिलों में बसे रहते हैं।
0: Absolutely. And these are great personalities that we are talking about. And the next personality we are going to talk about is Zoe Saldana. Today is her birthday, an American actress, the highest grossing lead actor in history. She's the recipient of many accolades, including an Academy Award, a BAFTA Award, two Critics' Choice, a Golden Globe, a SAG Award, and Cannes Film Festival Award. She is also a singer. She's also a trained dancer. So let's just hear one of her songs. She has performed original songs for the Avatar film series.

0: like I said, she is a singer, she's a trained dancer. She began her acting career in 1999 with a guest role in Law and Order. And from then, she has not turned back. You must have seen her in multiple movies, be it Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, Star Trek reboot series, and James Cameron's Avatar film series from 2009 till present. Guardians of the Galaxy, Funeral, Out of the Furnace, Missing Link, The Adam Project, and many, many more.
1: हिंदी के पहले मौलिक कहानीकार माने जाने वाले माधव राव सप्रे का जन्म आज ही के दिन 1871 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। एक मराठी भाषा परिवार में जन्मे सप्रे जी ने हिंदी को अपना जीवन धर्म बना लिया। 1900 में उन्होंने छत्तीसगढ़ का पहला हिंदी मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र निकाला, जिसमें उनकी कहानी

0: एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई, जिसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध मराठी कृति गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए पत्रकारिता को हथियार बनाया। आज उनकी 125वीं जयंती पर हम उस कलम को नमन करते हैं जिसने हिंदी गद्य की नींव रखी।
1: And well, we are talking about writers, and I also want to talk about another writer, and he is Salman Rushdie. Today is his birthday. An Indian-born British and American novelist, his work often combines magical realism with historical fiction and primarily deals with connections, disruptions, and migrations between Eastern and Western civilizations, typically set on the Indian subcontinent. Salman Rushdie's second novel, Midnight's Children, 1981, won the Booker Prize in 1981 and was deemed to be the best novel of all winners on two occasions that marked the 25th and the 40th anniversary of the prize. So let's hear a short interview of his.
2: It's always been the case, you know, in many parts of the world that dictators fear poets. You know, and it's very strange because writers have no armies. I think they fear alternative versions of the world. You know, I think one of the things about authoritarian rule is it wants to impose its own version of the world to the exclusion of all others.
3: We have to keep our place.
2: I mean, very little, you know. I always try not to overstate the power of literature. You know, what writers can do, which they are doing, is to try and articulate the incredible pain that many people are feeling right now, you know, and to bring that to the world's attention.
0: श्रोताओं, आज जन्मदिन है आशीष विद्यार्थी की, और इसी मौके पर मैं आशीष विद्यार्थी का मशहूर अन्ना वाला डायलॉग जरूर सुनाना चाहूंगी आपको। मुझे तो ये डायलॉग बहुत पसंद है और शायद श्रोताओं आपने भी ये जरूर सुना होगा। आइए सुनते हैं।
4: तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया काला बना के मुझको गोराई से बनाया। अन्ना से बच के किधर जाने का हा? दुनिया में ऐसा कोई जगह होगा जिधर मौत नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं जिधर अन्ना नहीं पहुंच सकता। मेरा 2 करोड़ का माल एयरपोर्ट में पकड़ा या तू, उसका भरपाई कौन करेगा? ना
5: करेगा ना
4: तू करेगा।
5: हाँ,
4: ये करेगा। हाँ, कैसे करेगा?
1: And it's also the birthday of Kajal Agarwal, an Indian actress who works in Telugu, Tamil and Hindi cinemas. So let's hear a beautiful song picturized on her from the film Special 26.
6: Naino me jaise khwab sa jo tu na ho to pani pani naino।
0: और श्रोताओं, इसी के साथ आज सवेरे में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है कि ये सुबह आपके लिए सकारात्मक रही होगी। तो मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और आपके दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ कीजिए। नमस्कार।

0: सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे।

0: इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करते फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
4: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको

0: जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र

0: में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
1: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़क का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
2: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
5: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai.

0: न्यू स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट सुपर्णा सैकिया आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
1: The United States has lifted its maritime blockade on vessels entering and leaving Iranian ports and coastal areas. U.S. Central Command has said that all enforcement operations have been halted in line with President Donald Trump's directive. And in hockey, India defeated Uruguay 3-2, registering their third consecutive win in the FIH Women's Nations Cup in New Zealand yesterday. With this victory, India stormed into the semi-finals by finishing on top of Pool A. India will now face Chile in the semis tomorrow. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
2: Thank you, Sunil. The signing of the peace accord between the US and Iran finds front page coverage in dailies today. Trump Pezeshkian signed preliminary peace accord, headlines the Statesman, while the Indian Express headline reads, deal ending war gives Iran critical economic lifeline. The Times of India leads with the headline, Versailles the second, Trump rushes where historians would dread to tread. In Paris, Prime Minister Modi has asserted that AI, that is artificial intelligence, means all-inclusive for us and dubbed India a tech hub, writes the Asian Age. And finally, the Indian Express reports that a massive 1,200-year-old oak tree in Sherwood Forest in Nottinghamshire, England, which is said to have once sheltered Robin Hood, has died. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approve large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के एफआईएच नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नोयत को सिर्फ तिजारत से ही परखा जाता था, लेकिन आज भरोसा भी उतना ही अहम बन गया है जितनी के तिजारत है।
3: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
0: जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहा है, जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तिरा और मौकों को तकवीत

0: मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एवियों में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे पर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाजे था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअस्सर साबित हो सकती है जब ये सबकी शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन बरसों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: इससे कबल फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोंजोर मोदी या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के इख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे।
0: पेश है वजीर आजम के पेरिस के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामा निकार की एक रिपोर्ट।
3: पेरिस में नीस में भारत इनोवेट्स और वीवा टेक 2026 का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई इख्तराई कुव्वत का मुशाहिदा कर रही है। वीवा टेक सरबराह मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी इख्तराकारों पर जोर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर सभी के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरे में भारत और फ्रांस ने तिजारत, तकनीक और आलमी सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। फ्रांस की सरगर्दा टेक कंपनियों ने भारत की तरक्की के सफर में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और ग्रीन बहरी बुनियादी ढांचे के शोबों में और ज्यादा शमूलियत के मंसूबों का ऐलान भी किया। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीबात से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाबता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
3: मस्कुर स्कीम कारकुनों और आजिरों की बाजाबता मईशत में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई की खातिर तैयार की गई है। इसके तहत पहली बार के मुलाजमीन 15,000 रुपए तक की तरकीब हासिल करने के अहल होंगे। इस तरह उन्हें अफरादी कुव्वत में शामिल होने पर अहमियत की हामिल मदद मिलेगी, जबकि इजाफी रोजगार के मौके दस्तियाब कराने वाले आजिरों को हर इजाफी मुलाजिम रखने पर 3,000 रुपए माहाना तक की तरकीब मिल सकेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पिछले साल यकुम अगस्त को नाफिज हुई थी। इसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने को फरोग देना और मईशत के सभी शोबों में सोशल सिक्योरिटी दायरे को वसत देना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया गया है। इसका मकसद 2 साल के अरसे में मुल्क में मुलाजिमत के 3.5 करोड़ से ज्यादा मौके दस्तियाब कराना है। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: ज़िराअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। वजारत के मुताबिक तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कीमतों की इमदादी स्कीम के तहत ये सरकारी खरीद की जाएगी। साल 2026 के मौसम गर्मा के सीजन के लिए

0: मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद होगी। वहां 48,298 मैट्रिक टन मूंग, 97,970 मैट्रिक टन उड़द और 41,718 मैट्रिक टन मूंगफली की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। गुजरात में इस मौसम गर्मा के सीजन के लिए 18,250 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। मंजूरशुदा सरकारी खरीद की कम अज कम इमदादी कीमत की मालियत 160 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। वजीर मौसूफ ने रबी मार्केटिंग सीजन के तहत तमिलनाडु के लिए मूंग की सरकारी खरीद की हद 885 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी है। इस तरह फसल की 105 मैट्रिक टन इजाफी सरकारी खरीद हो सकेगी। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के लिए मौसम गर्मा के सीजन के दौरान 2115 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मजकूरा दिन सिकल सेल की बीमारी SCD के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाने के मकसद से हर साल मनाया जाता है। इस दिन बीमार अफराद को लाहिक चैलेंजों को उजागर किया जाता है और बेहतर तहकीक, फंडिंग और मुसावियाना इलाज व मुआलजे की हिमायत की जाती है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया अपनी आबाई रियासत ओडिशा के दो रोजा दौरे के लिए आज दोपहर मयूरभंज जिला पहुंचेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
1: मयूरभंज जिले में अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अवामी फलाह बहबूद, देही तरक्की और कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। रायरंगपुर में सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर की जानिब से मुनाकिद एक हेल्थ कैंप पहुंचेंगे और देही इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी से मुतालिक एक बड़े मरबूत प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए खसूसी सर्किट हाउस और नए तामीर शुदा रायरंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। आकाशवाणी भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन लद्दाख के लेह में आज से शुरू होने वाली योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए वहां के तीन रोजा दौरे पर रहेंगे। ये जनाब राधाकृष्णन का मरकज के जेर इंतजाम इलाके का पहला सरकारी दौरा होगा जो इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदामात किए हैं। आज हम शिमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं।
1: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरिक को नज़रअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खित्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद, नाकाबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर-ए-आज़म ने 83 मरतबा से ज्यादा शुमाल मशरिक का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। गुज़श्ता 12 साल में 8 नए हवाई अड्डे बिल्कुल नए सिरे से तामीर किए गए हैं। इससे पहले 2014 में इनकी तादाद 9 थी, जो अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान स्कीम के तहत 90 रास्ते और 12 हवाई अड्डे फाल हो गए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए एटानगर के देरा नुतुंग गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 3 घंटे में 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी जो थी वो अपर्याप्त थी या सिंगल लेन हुआ करती थी, अभी 4 लेनिंग हो गई है।
1: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए गुवाहाटी के एक रिहायशी ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में रोड और फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और काफी सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है, तो काफी हम लोग खुश है।
1: दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज के लिए सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।

0: अमरीका ने ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर सभी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। सोशल मीडिया की एक बयान में अमरीका की मरकजी कमान ने यह जानकारी दी है। हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने अमरीका ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत किए जाने की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के सुदूर ने 14 निकाती माहदे की तौसीक की, जिसमें आबनाए हुरमुज खोलने और पाबंदियों में नरमी किए जाने का फ्रेमवर्क शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वाइबर्टिक 2026 से खिताब करते हुए कहा कि मसनूई जहानत AI की तरक्की में सबकी शमूलियत, तहफ्फुज और अवामी मफाद के बुनियादी उसूलों पर मबनी होनी चाहिए। इस खबर को अखबारात ने सफे अव्वल पर शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरकीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम अज कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमरीका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

बेवजह यूं खामोश होके बैठा है, न जाने कौन सा अफसोस लेके बैठा है। ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों की उड़ान को नए मोड़ दे। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल्ली और 8:46 और 27 सेकंड पर गोल्ड स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

जनाब, जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं हम सब अपने अपनों को, है ना। इसलिए हर वो चीज या बात हम सुनिश्चित करते हैं जो उनकी सेफ्टी से जुड़ी हो, और ऐसा ही उद्देश्य है आज के दिन का, जिसे मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर। युद्ध की परिस्थितियां जब भी बनती हैं, उनमें प्रत्यक्ष के साथ साथ परोक्ष रूप से भी बहुत सी बुराइयां और कठिनाइयां छिपी होती हैं, जो आम लोगों को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। और सेक्सुअल वायलेंस को अक्सर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, विशेषकर बच्चों या फिर माइनर्स के विरुद्ध। और इसी को रोकने के उद्देश्य से ही 2015 से यूएन जनरल असेंबली ने हर साल 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। 8:51 और 50 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर, ये है म्यूजिकल दिल्लगी।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार

0: सितंबर तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आठ बजकर 58 मिनट और आज सेकंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर यह है म्यूजिकल दिल लगी जो बहुत कम समय तक आपके साथ अब रहने वाला है क्योंकि वक्त इतना बचा ही नहीं कि हम आपको एक और गाना सुनवा सकें। हालांकि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में एक बहुत ही खूबसूरत गाना शामिल जरूर किया था आपके लिए लेकिन अगली बार इसे लेकर आऊंगी म्यूजिकल दिल्ली में एक बार फिर। और अब जाते जाते आपको एक काम की खबर से मैं ये क्या कहूँ कि आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में हम सब जब सफ़र करते हैं तो हिंदी वाला जो हमारा सफ़र होता है ना वो अंग्रेज़ी वाले सफ़र में ना बदल जाए इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और उन कोशिशों में एक कोशिश ये शामिल हुई है कि दिल्ली के बहुत ये कहना चाहिए कि 3 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर काफ़ी जाम रहता है उनको जाम से मुक्त करने के लिए अब दिल्ली में इंडिया गेट से बदरपुर तक और पंजाबी बाग से पीरागढ़ी तक और हरियाणा बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर तक जाने वाला जो रास्ता है उसको सिग्नल फ्री बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो सफ़र है ये हिंदी वाला सफ़र ही रहेगा। फिलहाल आपसे यही कहना है कि जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ क्योंकि समाचारों के इस बार एक बार फिर गोल्डन म्यूजिक होगा आपके साथ और होंगी इंदु लेकर म्यूजिक दिल्ली का सेकेंड सेगमेंट। तो अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए फिलहाल इजाजत। फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वह समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास दिखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों और औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने

0: इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस और दोहरी घाट और निहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कराईकल में भी तेज वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में तूफान के साथ ओलावृष्टि की आशंका है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में आज तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade. But today, trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में हैं जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years. Earlier, the Indian community in France welcomed PM Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. French President Emmanuel Macron also recorded a special farewell video message in Hindi for PM Modi as he was wrapping up his trip to France. Prime Minister Narendra Modi will disperse incentives worth 2,400 crore rupees

9:11 होने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे। तो कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये एक मंत्र जरूर आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा काम आता है। कई बार बहुत ज्यादा कह देते हैं तब भी परेशानी है, और जब नहीं कहते तो भी परेशानी है। ओवरऑल बात यह है कि बैलेंस बना के चलने में ही भलाई है। आप सब ये गाना सुनिए और उसके बाद फिर हम बात से बात निकालेंगे और बात करेंगे।

देखिए ऐसा है कि सुविधा और सुख में बड़ा फर्क है। सुविधा जिसके लिए हम घर से निकलते हैं, अर्थार्थ कहते हैं कि हम जा रहे हैं काम करने, उसके बाद हमें मिलेंगे पैसे। सुख वो है जो हम आपको देते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये है म्यूजिकल दिल्ली की, इसे कहते हैं सुख। और अगला वाला गाना महासुख। अब आप बताइए कि हमारे पास कितनी सारी वजहें होती हैं मुस्कुराने की। हंसिए मुस्कुराइए, इसलिए नहीं कि सब ऑल इज वेल है, इसलिए कि अच्छा हो सकता है, इस बात की उम्मीद की जा सकती है।

किसी ने अगर ये कह दिया कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, तो समझिए कि इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ सुकून रहा होगा, क्योंकि फ्राइडे आते आते ना कुछ ऐसी फीलिंग्स ही आ जाती है कि भाई चलो अब हम सैटरडे संडे या फ्राइडे इवनिंग प्लान करना शुरू करते हैं, किससे मिलना है, क्या करना है, एक अलग तरह की ऊर्जा हम सब के अंदर आ जाती है ना। तो जो हमारी नेचर होती है हमारे आसपास, वो कभी भी शोर नहीं करती, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छी लगती है। कुछ ऐसा ही है ये दिन जो हमें कहता है कि भाई चलिए प्लान कीजिए, दोस्तों को बुलाइए और किसी से मिलिए, घर से निकलिए और फिर देखिए कि ये जो आनंद है वो कितना अच्छा है। और इन सब के बीच में अगर साथ हो इन गानों का, स्पेशली आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का साथ, तो फिर मजा आ जाए। अगला गाना सुकून का है, हौसले का है, प्यार का है।

जैसे धूप नदारद होती है ना, आंखों को सुकून मिलता है और उसके बाद लगता है कि मौसम अच्छा हो गया। हो सकता है कि ये धोखा हो, लेकिन फिर भी अच्छा लगाने के बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका ये भी है। हम बहुत ज़्यादा ना कुछ सोचते रहते हैं और हमारा मन उड़ान भरता है, फ्यूचर की टेंशन में बड़े आराम से गोते लगाता है। तो फिर मन और शरीर को आराम दीजिए। छोटे छोटे ब्रेक आप ले सकते हैं, योगा कर सकते हैं। चीज़ों के गलत होने की संभावना भी हो सकती है। देखिए, कभी कभी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती लेकिन फिर भी अच्छी लगती हैं। ठीक फिल्म त्रिशूल के इस गाने की तरह। अब आप ही बताइए, गापूची गापूची गम गम, इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन अच्छा लगता है ना।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मम्मी ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
5: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
6: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अगर आप भी इस गाने में खो गए हो तो फिर वापस आ जाइए। और एक बहुत अच्छा सा मैसेज हमारे पास है हम सब के लिए, इस वक्त है मेरे साथ ऑनलाइन पे। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्ते सर। खुशवंत सिंह रेखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है म्यूजिकल दिल्ली में। कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ जी।
0: तो सबसे पहले, जैसे कि हमने बताया कि आपके पास हम सब के लिए एक बहुत अच्छी सी न्यूज है, तो वही बताइए आप सबको
1: जी। कल 20 तारीख को हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। ये है फ्री मेसन हॉल जनपद नई दिल्ली में। और रक्तदान जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी जो बॉडी में भी खून बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। कभी कोई चोट लगे, कुछ हो जाए, बहुत ज्यादा खून बनता है। जो रेगुलरली हम डोनेट करते थे
0: जी,
1: तो बॉडी में वो क्षमता बढ़ जाती है। प्लस इसके जो हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, ये इन एसोसिएशन विद रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया कर रहे हैं। तो कभी भी कहीं भी कोई आपदा आती है पूरे कंट्री में, कहीं पे भी जहाँ पे बहुत ज्यादा नाच होता है और खून चाहिए होता है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड करती है।
0: ओके।
1: तो ये हमारी संस्था है फ्रीमेसन, उसकी हम एक टुकड़ी है जो जिसका नाम है लॉर्ड सेंट जॉन द एवेंजेलिस्ट नंबर 22। ये संस्था हमारी पूरे हिंदुस्तान में, पूरी इंडिया में है, भारत में है, और ये वर्ल्ड ओवर भी है। और इसका काम ही है चैरिटी।
0: परफेक्ट। तो जैसे बहुत सारे लोग जाते होंगे, कुछ लोग बड़े उत्साह से भी जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो कैसे पता चलता है कि भाई आपका खून हम नहीं ले सकते?
1: वो कुछ उनके क्वेश्चंस होते हैं जो खून लेते हैं, जैसे कोई भी अल्कोहलिक हो या

0: कोई ड्रग एडिक्ट हो या किसी को जॉन्डिस हुआ हो या हीमोग्लोबिन कम हो तब वो खून नहीं लेते हैं, तो वो पूछ लेते हैं कि भाई आपको कोई किसी तरीके की तकलीफ तो नहीं है, आप डिस्कोर्स हो, बिकॉज जो खून फर्ज करो कहीं कंटामिनेटेड होगा तो आगे भी देने में फिर सकती है।
1: बिल्कुल, तो एक बार फिर से आप टाइम बता दीजिए कितने बजे से कितने बजे तक है और कहाँ है, ताकि लोग जो लोग सुन रहे हैं हमें वो वहाँ पे जाएं और आपके इस मिशन में पार्टिसिपेट करें।
0: जी, ये सुबह 10 बजे से और शाम को 4 बजे तक है। ये फ्री मेसन हॉल है, मेसोनिक सेंटर, जनपद, न्यू दिल्ली। ये इसका लैंडमार्क है, इंपीरियल होटल के पास है, मैकडॉनल्ड्स जो जनपद पे उसके सामने है।
1: चलिए, दैट्स वेरी नाइस, सबको पता चल गया है तो आई एम श्योर लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करेंगे। एंड खुशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है?
0: जी, थैंक यू,
1: थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो अगर आपने ये मैसेज सुना तो फिर मुस्कुराइए, जाइए और किसी की जान बचाइए।

0: ये है म्यूजिकल दिल्ली की आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और आइए मैं अब आपको बताऊं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक हस्तशिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक बहुत ही कल्याणकारी पहल है ये, जिसके बहुत सारे लाभ हैं। टूल किट प्रोत्साहन है, कौशल विकास है, सस्ता लोन है और डिजिटल प्रोत्साहन भी है, यानी कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन इसमें आपको प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। और इसको और विस्तार से जाइए, जानिए और पढ़िए, हो सकता है कि आपके काम की हो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

लोगों की परेशानियां सुनने के लिए कोई है आपके आसपास? अरे भाई, कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो पैसे ले और आपकी समस्या सुने। छोटी समस्या सुनने के लिए कुछ छोटे पैसे, बड़ी समस्या सुनने के लिए बड़े पैसे। और सिर्फ बैठकर अगर आप रोना चाहते हैं, मन हल्का करना चाहते हैं, तो उसकी फीस हो सकती है थोड़ी और बड़ी। शांति से और दिल से सुनने वाला डिजिटल समय में भी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे इंसानों की है जो उन्हें समझे और ध्यान से सुने, जैसे कि आप हमें ध्यान से सुनते हैं। ये है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

एक साथ न जाने कितनी सारी चीजें याद आ गई है ना। तो फिर इसी के साथ हम तो आपसे यही कहेंगे कि नेचर से जुड़ के देखिए, क्योंकि नेचर कभी भी शोर नहीं मचाता, लेकिन फिर भी सबसे सुंदर वही लगता है। फूलों ने कभी भी अपनी तारीफ नहीं लिखी, लेकिन फिर भी हम उन्हें किताबों में आज भी रखते हैं, और सूखा फूल देखते ही अच्छा लगता है। हमेशा सुकून उन्हीं चीजों में है जिसमें हमें अच्छा लगे। तो खुद को साबित करने में छोड़ दीजिए भागना दौड़ना, रिलैक्स, एक गहरी सांस लीजिए और ये वाला गाना सुनिए।

समय होने वाला है 10 और ये वो वक्त होता है जब हम जानना चाहते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। थोड़ी देर में होंगे समाचार, समाचारों के बाद फिर से होगी आपसे जरूर मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करते फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत

अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Prime Minister Narendra Modi noted that virtues such as knowledge, wisdom and foresight form the primary foundation for success in life. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said that a person enriched with these qualities emerges victorious even in the face of most daunting challenges. Indian Army's Sikh Regiment has signed a Memorandum of Understanding with Guru Nanak Dev University, Amritsar in Punjab to empower Agniveers through education and skill development. The initiative aims to enhance their academic qualifications, professional competencies and long-term career prospects, equipping them with valuable skills for both military and civilian careers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at the minimum support price for 4 states. The ministry said that the procurement will be undertaken under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu will attend a program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. This day is observed annually to raise awareness about sickle cell disease. It highlights the struggles of patients and advocates for better research, funding and equitable treatment worldwide. After concluding her visit to Madhya Pradesh, President Murmu will arrive in Odisha this afternoon on a 2-day visit to her home state. In hockey, India defeated Uruguay 3-2, registering their third consecutive win in the FIH Women's Nations Cup in New Zealand yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अप्रासंगिक बताया और आतंकवाद प्रायोजित करने के लिए उसकी कड़ी निंदा की। अमरीका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से और कनाडा ने कतर को 6-0 से मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और सर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वह समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वह फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करते फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।

0: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को अप्रासंगिक और मौजूदा समय के प्रतिकूल बताया। भारत ने कहा कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग से होने वाले लाभ नहीं उठा सकता। परिषद के 62वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की सचिव अनुपमा सिंह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों को बार बार उठाने के पाकिस्तान के प्रयास की आलोचना की। सुश्री अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत के पक्ष से दुनिया भली भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत पर दावे करने के बजाय अपनी आंतरिक चुनौतियों के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर आरोपों और संदर्भों को खारिज करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था और वो हमेशा रहेगा। सुश्री अनुपमा सिंह ने कहा कि एकमात्र अनसुलझा मुद्दा भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा और उनकी वापसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर में हो रही घटनाओं से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है, जहां हाल के हफ्तों में विरोध प्रदर्शन और अशांति तेज हो गई है। पाकिस्तान में पिछले बुधवार को उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गुरुद्वारे में एक सेवादार दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पेशावर से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मरदान के में हुई। पुलिस के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने गुरुद्वारों के अंदर गोलीबारी की, जिसमें जगन्नाथ और उनकी पत्नी अस्मा वंती की मौत हो गई। इस हमले से पता चलता है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ कितना सक्रिय है। कट्टरपंथी हिंदुओं, सिखों तथा ईसाइयों पर हमला करते रहते हैं और जबरन धर्मांतरण कराते हैं, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों को अत्यधिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ लगभग 4 महीने तक चले संघर्ष के बाद हुए शांति समझौते के एक दिन बाद घोषणा की। इस कदम से ईरान के समुद्री और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाजों की आवाजाही सुगम होने की उम्मीद है। यूक्रेन ने रूस से एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। ये एक सप्ताह में ऐसा दूसरा हमला है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि शहर के दक्षिण पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित मॉस्को तेल शोधन संयंत्र पर कई ड्रोन ने हमला किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने 555 यूक्रेनी ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक गई। संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाले नए नियम को मंजूरी दे दी है। डिजिटल क्षेत्र में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया ये व्यापक कदम है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या संचालित करने की अनुमति नहीं होगी, न ही उन्हें पोस्ट करने, टिप्पणी करने, सामग्री साझा करने या सार्वजनिक समूह में शामिल होने जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। 15 से 16 वर्ष की आयु के उपयोगकर्ताओं को केवल सख्त सुरक्षा उपायों के तहत सीमित उपयोग की अनुमति होगी। फीफा विश्व कप में कल ग्रुप ए में मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया ने 1-0 से पराजित कर दिया। ग्रुप बी में कनाडा ने कतर को एक तरफा मैच में 6-0 से हरा दिया। कनाडा की जोनाथन डेविड ने 3 गोल किए। इससे पहले कल अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप ए में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के लिए नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। हॉकी में भारत ने आज FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली से होगा। भारत ने चीन में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग चीन को 3-1 से हराया। भारतीय टीम कल फाइनल में मेजबान चीन ए और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता के साथ खेलेगी। इससे पहले भारत ने चीन की दूसरी रिजर्व टीम बी को क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हराया। सोशल मीडिया पोस्ट में हमलों को रूस द्वारा ये। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अप्रासंगिक बताया और आतंकवाद प्रायोजित करने के लिए उसकी कड़ी निंदा की। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है दिल का मेल बॉक्स और सामने है आपके मैसेजेस, आपके नाम और आपकी चॉइसेस के साथ। ये चॉइस भी आप ही की है। फिल्म परिंदा 1989 में आई थी, बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है कई सारे लोगों का। तो फिर हमारा आज का दिन बड़ा ग्रेट रहा क्योंकि आपके मैसेज में हमें यही लिखा है इस गाने के साथ साथ, और फ्यूचर लाइफ भी शानदार बीतेगी आपके विषय। और ये रहा आपका गाना सिर्फ और सिर्फ दिल का मेल बॉक्स में।

और आपके नाम है माल्यान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और प्रोग्राम प्रसारक को नमस्कार करते हुए पसंद करते हैं हमारे शो को कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले नमस्कार करते हैं हमें, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता, राधा, नामदेव, रानी झाम, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज घुरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी, गीतिका। तो क्या इतने सारे लोगों ने इसी एक गाने की फरमाइश की है? नहीं, लेकिन एक गाना बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकता है, इसकी गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। तो फिर ये है वारिस का गाना, 1988 में ये फिल्म आई थी और पसंद करने वालों के नाम हमने बता दिए हैं और बाकी नाम आपके थे जो कहते हैं कि कोई भी गाना दिल का मेल बॉक्स में हमारे लिए प्ले कर दीजिए उनके नाम।

0: दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। गिरीश बाम, वैशाली, अजिंक्या, जीत, रिया, अतुल वडोदरा गुजरात से, और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, ज्योति मक्कर, मन्नत भारत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जलंधर पंजाब से आपका गाना है हमारे पास। बस एक छोटा सा ब्रेक, फिर से मिलते हैं दिल का मेल बॉक्स में।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आके मिल गया है आपका हमें मेल, जिसमें आपकी चॉइसेस हैं। कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मुसभाई जान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप, कदमा जमशेदपुर से, चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन गौड़, कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जया, दर्शन भाई, और ये आपका गाना आशा भोसले की आवाज में दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

दिल का मेल बॉक्स है ये और आ गए हैं आपके मैसेजेस। हमें नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि देखिए जो गाना प्ले हुआ ना आके मिल जाओ, उसमें हम भी हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और कोई भी गीत में कहते हैं हमारा नाम शामिल कर लीजिए। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, गंज डिंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, इंद्रनगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बीकानेर से रानी झांब और बिट्टू झांब है और कहते हैं बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, ये सारे के सारे लोग हमारे साथ शामिल हैं इस वक्त जिसका नाम है दिल का मेल बॉक्स। और बड़े सारे हमारे पास ऐसे भी मेल आए हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं क्या हम आपसे नाराज हैं, मतलब ही नहीं होता, कोई नाराजगी में इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाता है क्या।

बेचारा। जी हाँ, ये मैं अपने आप को कभी कभी महसूस करती हूँ जब आपके एक ही नाम के कम 10 मैसेज एक साथ देखती हूँ। देखिए मोहम्मद सईद अब्बासी जी, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम क्यों नाराज होंगे। आपके इतने सारे मेल हैं और इतनी मोहब्बत है, और कुछ मेल ऐसे होते हैं जो हमारे पास सिर्फ एक आते हैं और 10 आए हैं, हमारे लिए उतनी ही वो क्वालिटी है, उतना ही मान है, उसका सम्मान है। और बहुत सारे मेल हैं, जैसे कि समीर परवीन है, जॉन दी कैस्ट्रो हैं, शिव कुमार हैं, अब्बासी साहब के बहुत सारे मेल हैं। तो कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि सबकी चॉइस, सबके गाने, हम सब कुछ शामिल कर पाएं दिल का मेल बॉक्स में और बता पाएं कि हाँ आपसे हम हैं।

0: दिल का मेल बॉक्स आपको कैसा लगता है हमें बताइएगा जरूर। आप हमें मेल कर सकते हैं fmgold@gmail.com पे, और अपनी चॉइसेस तो आप हमें भेजते ही हैं, लेकिन साथ में क्यों अच्छा लगता है कोई एक गाना, उसकी भी तो एक कहानी होगी, वो भी बताया कीजिए। अभी फिलहाल समय होने वाला है समाचारों का, उसके बाद फिर से होगी आपसे मुलाकात।
1: आज की
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल

0: व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का स्पष्ट संदेश था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मणिपुर में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का व्यापक तलाश अभियान जारी है। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न भूमिगत संगठनों के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक अपहृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिहा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली है। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी श्री राहुल गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said, "There was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade."
1: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है.
3: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations Human Rights Council UNHRC and called the Indus Waters Treaty outdated and unsuited to present-day realities. Speaking at the 62nd session of the UNHRC, First Secretary at the Permanent Mission of India to the United Nations, Anupama Singh, said that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship.
4: Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed. A treaty negotiated in 1960 cannot be treated as a perpetual entitlement which is insulated from accountability, detached from present-day realities and untouched by the profound changes of the past six decades.
3: President Draupadi Murmu is attending a program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh, right now. This day is observed annually to raise global awareness about sickle cell disease, SCD. It highlights the struggles of patients and advocates for better research, funding and equitable treatment worldwide. After concluding a visit to Madhya Pradesh, President Murmu will arrive in Odisha this afternoon on a two-day visit to her home state. Union Minister for Railways, Information and Broadcasting and Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, is arriving in Bihar today on a one-day visit. Mr. Vaishnav will participate in programs organized in Patna and Chapra. Our correspondent reports that Mr. Vaishnav will visit the Software Technology Parks of India in Patna. Following this, the Union Minister will flag off the Chapra-Delhi Express train from the Chapra Railway Station. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at the minimum support price for four states. The ministry said that the procurement will be undertaken under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the Leader of the Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, on his birthday. In a social media post, Mr. Modi prayed for his good health and long life. Lok Sabha Speaker Om Birla also wished Mr. Gandhi. A late-night fire broke out at a wood shop in Delhi's Mangolpuri area. Delhi Fire Services informed that they received a call at around 3:56 a.m. and rushed seven fire tenders to the spot to douse the flame. The fire has been brought under control and no casualties have been reported. Indian Army's Sikh Regiment has signed a Memorandum of Understanding MOU with Guru Nanak Dev University, Amritsar in Punjab to empower Agni Veers through education and skill development. The initiative aims to enhance their academic qualifications, professional competencies and long-term career prospects, equipping them with valuable skills for both military and civilian careers. In hockey, India defeated Uruguay 3-2, registering their third consecutive win in the FIH Women's Nations Cup in New Zealand yesterday. And India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. And that is the end of this news bulletin.

0: मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
1: और मैं अदिति।
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि हमारा लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: दोस्तों कहते हैं कि गृहस्थी की गाड़ी उन दो पहियों के समान होती है जिनके एक साथ मिलकर चलने से जीवन का सफर बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है। अक्सर जिस परिवार में आदमी की आय कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, वहाँ अगर पत्नी के पास भी कमाई का कुछ साधन हो जाए
1: तो भला इसमें बुरा क्या है? इससे न सिर्फ घर में कमाई के चार पैसे आएंगे बल्कि पत्नी का आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा और उसे महसूस होता है कि आखिर उसका भी कोई वजूद है।
0: और वैसे भी आजकल तो ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें महिलाओं को घर से बाहर जाने की कोई खास जरूरत ही नहीं है, बस आपके पास होना चाहिए आपका अपना मोबाइल, कुछ कर दिखाने का जुनून और आपके जान पहचान का सर्कल।
1: यकीन मानिए, फिर वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपका खुद का भी वजूद होगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि आपकी इस छोटी सी शुरुआत ने आपको अपने घर में और अपने जीवन साथी की नजरों में कितना ऊपर उठा दिया है।

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद।
3: बताओ और कमाओ,
2: आज ही रजिस्टर करें www.meravazood.com पर।
4: उम्र चाहे जो भी हो, आजकल के हालात को देखते हुए ये जरूरी है कि हम सबके पास कमाई का कोई न कोई साधन अलग से जरूर होना चाहिए, जिसे हम अपनी रूटीन लाइफ के साथ भी कर सकें।
5: सोच कर देखिए कि जब आप इस तरह से अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ कुछ कमाने भी लगेंगे, तो आपकी वैल्यू, आपकी जान पहचान में कितनी बढ़िया हो जाएगी। आपके जानने वाले आपसे खुश तो हो ही जाएंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास कितना बढ़िया हो जाएगा।
4: सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और घर के बाकी काम, सब कुछ संभालते हुए एक हाउसवाइफ का अपना खुद का वजूद कब और कहाँ कैसे खो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। तो क्या एक हाउसवाइफ की यही पहचान है?
5: नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर उसका अपना भी एक वजूद है, उसे अपने वजूद को जगाना होगा। याद रहे, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

0: सारा दिन बस नाश्ता लंच और डिनर, सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.मेरावजूद.com पर।
2: लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, मगर ये नहीं लिखा कि मरते दम तक बहुत काम आएगी।
1: घर परिवार में जब खर्चों का बोझ बढ़ने लगता है और कमाई घटने लगती है।

0: हौसला देंगे, आपके जज्बात की कदर करेंगे।
1: बस आप हमें सुनते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। यकीन मानिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करते हैं उन्हें और उनके वक्त को सिकंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355387211 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाओ, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16 सेक्टर 41 नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: एक बार फिर आज ही के दिन इसी समय 100.1 FM गोल्ड पर।

शुरू हो चुकी है तस्वीर और आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे बल्कि थेक्कड़ी की तस्वीर पेरियार की शांत झील में, नीले अंबर का जहां होता है बसेरा, कुहासी की चादर ओढ़े जहां होता है हर सवेरा, हरी वादियों की गोद में बसा है एक बहुत ही प्यारी सी जगह जिसका नाम है थेक्कड़ी केरल का, और ये है तस्वीर थेक्कड़ी की।

पता है जब आप केरल के थेक्कड़ी में पहुंचेंगे ना, तो आपको लगेगा आपकी सारी आशाएं पूरी हो गई, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी मसालों की खुशबू, कल कल बहते झरने, और लगेगा कि भाई ये कोई दूसरी जगह है। घने जंगल हैं, थेक्कड़ी के हर कोने में बिखरा हुआ है कुदरत। बांस की नाव में बैठकर जब झील में आप जाएंगे और बहुत सारे प्यारे प्यारे नज़ारे देखेंगे, पहाड़ों की ढलान पे चाय के बगान भी नजर आएंगे आपको, तब आप यही कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रकृति के बीच में अपने आप को पा करके यही होगा

0: फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी।

हाथी भी दिखेंगे, दूसरे जानवर भी दिखेंगे, वो भी बड़े प्यार से वहाँ पे पानी पी रहे होंगे। मसाला और चाय बागान के बारे में तो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं। ठेकड़ी के आसपास कुमिली के एक तरह का होता है जिसका बहुत अच्छा सा वहाँ पे बगीचा है, तो आप इलायची, काली मिर्च, दालचीनी के महक से भरे खेतों की सैर कर सकते हैं। एडवेंचर अगर आपको शौकीन है इसके, तो फिर उसके लिए भी ठेकड़ी हाजिर है। बैम्बू राफ्टिंग कीजिए, जंगल ट्रैकिंग कीजिए, जीप सफारी कीजिए, और उसके बाद हमें बताइए ठेकड़ी आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत सुंदर लगा था, बहुत ही प्यारा है।

वैसे मैं बताऊँ आपको, थेकड़ी में ना कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सुंदर है, इतनी हरियाली है, प्रकृति के इतने पास है कि सिर्फ आप समय के साथ बहते रहेंगे, आपको वहीं अच्छा लगेगा। हरी वादियां हैं, शांत झील है, नीले अंबर का बसेरा है, और यहाँ पे क्या नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ मिला के यही लगेगा कि भाई पहाड़ की ढलानों पे वो जो चाय के बागान है ना, बस वहीं जाकर के खूब सारी फोटोग्राफ्स लेते रहें और मौसम के साथ यूं ही बहते रहें। थेकड़ी तस्वीर में कैसी लगी बताइएगा जरूर। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

एंजॉय कीजिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत इंदु पांडे को फिर से मिलने के लिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत

0: विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस, आधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी

प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये गीत फिल्म थी वक्त। और अब बातें कुछ स्वास्थ्य की, कुछ योग की। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत। विषय है बुजुर्गों का स्वास्थ्य। योग गुरु देविका श्रीवास्तव से बात कर रही हैं रश्मि कुकरेती।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ इस चैनल के सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। कार्यक्रम है आपका अपना घर आंगन। आज हम लेकर आए हैं वो है वृद्धावस्था में करने वाले योगासन और किस प्रकार से आप योग से जुड़े। जब हम योग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक योग प्रशिक्षक की भी आवश्यकता होती है, तो हमने इसके लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया है देविका श्रीवास्तव को। देविका, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
1: हरिओम सभी को, मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है और मैं योगा शिक्षक और योगा विद्यार्थी हूँ।
0: देविका, बात पिछली बार बच्चों के की थी तो बच्चों का शरीर तो बहुत लचीला होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर में एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि लचीलापन खत्म होता जाता है। कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको करने चाहिए?
1: बिल्कुल, वृद्धों की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा बॉडी वर्कआउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। वो क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है कि वर्कआउट करके जो आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी बनती है वो आपके जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे उनको लचीला बना देती हैं, तो आपके मसल्स इजीली मूव कर पाते हैं। बट वृद्धावस्था में आप ज्यादा अच्छे से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी ऑलरेडी बॉडी मूवमेंट कम होती जाती है। आप रेगुलर लाइफ में ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। जितनी एज तक आप काम करेंगे, जितनी एज तक आप अपनी छोटी छोटी चीजें भी खुद करेंगे, इतना आप कर सकते हैं। जब तक करते रहेंगे आपकी गाड़ी चलती रहेगी।
0: जी जी।
1: अपने वर्कआउट मूवमेंट बॉडी की रोकी, वहां थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो रेगुलर लाइफ में अपने डाइट मेंटेन कीजिए, पॉसिबल हो तो आप धीरे धीरे अपनी मालिश करनी शुरू कीजिए।
0: खुद ही मालिश करें?
1: बिल्कुल, अपने जैसे घुटनों की मालिश, क्योंकि घुटनों की समस्या तो वृद्धाओं में बहुत ज्यादा होती है।
0: तो अक्सर होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो हड्डी की समस्याएं आती हैं।
1: बिल्कुल, बेसिकली वो समस्या हड्डी की नहीं है
0: जी,
1: हम समझ जरूर लेते हैं, वो समस्या आपकी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की है। आपकी बॉडी में लचीलापन खत्म होता है इसीलिए आपकी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाती है।
0: हमारे वरिष्ठ नागरिक है, इनकी दिनचर्या किस प्रकार से शुरू हो?
1: सबसे पहले फ्रेश होना उनके लिए बहुत जरूरी है टाइम से, बिकॉज अगर उनका डाइजेशन इनडाइजेशन उनको हुआ तो उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है। तो उसके लिए वो गर्म पानी पिए, किस कंडीशन में? मलासन में बैठ के, उकड़ू जिसे आप कहते हैं, उकड़ू आसन में बैठ के उन्हें गर्म पानी पीना है।
0: अच्छा।
1: जिससे, और फिर बैठे रहना
0: कितना
1: है,
0: पानी पीना चाहिए?
1: एक से दो ग्लास जितना भी उनकी कैपेसिटी
0: जो आराम से पी सके।
1: बिल्कुल, डेढ़ से दो ग्लास तो वो कोशिश करें पिए।
0: हाँ।
1: तो उससे उनकी पूरी बॉडी एक बार में ड्रेन आउट हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे अपना जो आपका ब्रश वगैरह है वो करके कोशिश कीजिए।

0: अंदर ईश्वर का वास, वो अच्छा जो है तत्व है हम सब लोगों के अंदर, भलाई करने का है, किसी की अच्छा हो रहा है उसको देख के खुश होने का जो तत्व है,
1: तो जैसे
0: किसी की मदद करने का तत्व है, वही ईश्वर का रूप है ना, तो वो हमारे अंदर ही है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: जैसे आपने बताया कि वो आपका ही रूप है, तो फिर उसके लिए सिर्फ वृद्धावस्था ही क्यों,
0: वो तो कभी भी कर सकते हैं जी,
1: हर एज में कर सकते हैं। तो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके पास थोड़ा समय जरूर होता है, तो उसके लिए वह प्राणायाम अपने लाइफस्टाइल में जरूर जोड़ें, दोनों टाइम कर सकें तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, एक टाइम भी कर सकें तो बहुत अच्छा है। सुबह वो योगा करें, एक घंटा आधा घंटा जैसे भी उनकी क्षमता है, उसके बाद छोटी छोटी आदतें जरूर अपने आप में अपना लें, बैठने का तरीका, उठने का तरीका।

0: और थोड़ा सा ध्यान कर ले।
1: कई बार ऐसा होता है कि कुछ हालात घर में ऐसे हो जाते हैं कि गुस्सा बहुत आने लग जाता है ना, और पता चला बच्चे आके कुछ कह रहे हैं तो आपके अंदर धैर्य एकदम कम हो गया। इसके लिए भी क्या कोई योग के पास कुछ समाधान है?
0: योग के पास हर चीज का समाधान है,
1: जी
0: क्योंकि योगा तो आपके पैदा होने से लेके आखिरी दिन तक का आपको वो सिखाती है कि
1: जी
0: क्या कैसे करना है।
1: जी
0: तो जब आप योगा करने लगते हैं रेगुलर लाइफ में, तो आपके अंदर एक एक धैर्य आता है, आपका मन एक शांति की तरफ बढ़ जाता है, तो आपको खुद गुस्सा नहीं आएगा। गुस्से पे सबसे पहले आपका कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज आप मन शांत और खुश रहना सीख जाएंगे।
1: जी
0: तो जब योग करेंगे तो मन आपका शांत रहेगा और आप सामने वाले को भी शांत करना सीख जाएंगे।
1: तो क्या कहेंगी कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनका एक जो दिनचर्या होती है वो कैसी होनी चाहिए?
0: उनका खान पान बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि वो बाहर का खाते हैं या कुछ भी ऐसा खाते हैं जो उनके लिए हार्मफुल है, तो उनका डाइजेशन खराब होगा।
1: यानी कि बाहर का कोशिश करें ना लें,
0: नहीं
1: घर का
0: खाएं।
1: बना हुआ सादा खाना
0: हाँ,
1: हो।
0: लेकिन हाँ, मन तो करता है सबका,
1: जी
0: क्योंकि मन तो उनका भी उतना ही चंचल है।
1: तो
0: अभी
1: थोड़ा सा ले ले,
0: थोड़ा सा ले ले,
1: थोड़ा सा खा ले।
0: थोड़ा सा खा ले,
1: अच्छा
0: लेकिन समय और

0: लेकिन हाँ मन तो करता है सबका, क्योंकि मन तो उनका भी उतना ही चंचल है अभी,
1: तो थोड़ा सा ले ले,
0: थोड़ा सा ले ले,
1: थोड़ा सा खा ले,
0: थोड़ा सा खा ले।
1: अच्छा,
0: लेकिन समय और अपनी अवस्था को
1: देखते
0: अब जैसे किसी को अगर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं उसको नहीं कहूंगी कि वो बाहर से कुछ तला भुना खाए, क्योंकि उससे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अपनी चीजों को देखते हुए कुछ ऐसा खाएं कि उनका मन अच्छा हो जाए।
1: घर में कुछ कभी मन करे तो हल्का सा कुछ
0: घर में
1: बनवा के कुछ खा लें, क्योंकि घर का साफ सुथरा

0: बढ़ेगा। अपनी चीजों को देखते हुए कुछ ऐसा खाएं कि उनका मन अच्छा हो जाए।
1: घर में कुछ कभी मन करे तो हल्का सा कुछ घर में बनवा के कुछ खा लें, क्योंकि घर का साफ सुथरा है, अपना शुद्ध जो खाना होता है भोजन,
0: घर में आपके हर चीज शुद्ध है, तेल मसाले आप अपने अनुसार उसको आप बना सकते हैं।
1: जी जी,
0: बाहर आपके अनुसार वो चीज नहीं बन सकती।
1: तो सबसे पहले तो भोजन पर नियंत्रण है ना,
0: भोजन पर नियंत्रण रहेगा तो डाइजेशन ठीक रहेगा, और आपका मॉनिटर आपका डाइजेशन होता है। इवन सबका ही डाइजेशन ठीक है तो आप 100 बीमारियों से दूर हैं।
1: और इसके अलावा क्या दिनचर्या होनी चाहिए? प्राणायाम बताया आपने,
0: प्राणायाम शाम के टाइम रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा। उससे नींद अच्छी आएगी। सुबह तो 1 घंटे की योगा वो करें ही करें।
1: अच्छा,
0: 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट, 45 मिनट नहीं तो आधा घंटा। कुछ वृद्ध हमारे ऐसे होते हैं जो ऑन बेड होते हैं, जिनकी इस लेवल की भी क्षमता नहीं होती कि वो उठ के कर पाए, खड़े हो पाए, तो वो बैठ तो एटलीस्ट सकते हैं। अपने आप को पुश कीजिए, अपना ब्रेन एक्टिव रखिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। तो उठने की कोशिश करें, बैठ के करने वाले बहुत से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, हैंड स्ट्रेचिंग्स कीजिए, शोल्डर रोटेशंस हो गई आपकी, शोल्डर ट्विस्टिंग हो गई, नेक ट्विस्टिंग हो गई, ये सारे आप करें, ध्यान करें, मंत्रोच्चारण करें, उससे बहुत शक्ति मिलती है।
1: बहुत अच्छी बातें देविका बता रही हैं, क्योंकि अगर हम इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो हमारा शरीर वैसे ही स्वस्थ रहेगा। तो अभी जाते जाते जो हमारी योग गुरु योग प्रशिक्षिका हमारे साथ आई हैं देविका श्रीवास्तव, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देविका, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई योग के बारे में, परम सत्ता के बारे में, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद FM गोल्ड के स्टूडियो से जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद। हरिओम।
1: नमस्कार।

बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं।

दादी दोस्त बन जाते हैं तो घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि प्यार हंसी और यादों से भरा एक संसार बन जाता है। अपनों का हाथ थामे रखिए, रिश्तों को समय दीजिए और दिल से जुड़िए।

अभी हम सुन रहे थे शब्बीर कुमार, चंद्राणी मुखर्जी और उत्तरा केलकर की आवाज में ये गीत फिल्म थी घर घर की कहानी। और दोस्तों, कुछ लोग अपनी उपलब्धियों से इतिहास बनाते हैं और कुछ अपने कर्मों से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार जाते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्स

लगता है और रिश्ते अधिकार से नहीं विश्वास से मजबूत होते हैं। ठीक उसी तरह बहू जब नए घर में कदम रखती है तो वो केवल अपना पता नहीं बदलती बल्कि अपने बचपन की यादें, अपने माता पिता का आंगन और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पीछे छोड़कर आती है। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि घर का माहौल ऐसा हो कि उसे बार बार यह महसूस न हो कि वो पराई है, उसे यह एहसास न हो कि यह घर भी उतना ही उसका है, उसे ये एहसास होना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाइए कि उसकी माँ को कभी ये टेंशन ना हो कि मेरी बेटी कैसी है। आज के दौर में सास बहू का रिश्ता आदेश और अपेक्षाओं का नहीं बल्कि

अभी हम सुन रहे थे जगजीत कौर को फिल्म शगुन से। और अब जो बात मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वो मैंने किसी किताब से नहीं बल्कि अपनी नानी दादी की रसोई से सीखी है। उन्होंने हमें सिखाया था कि खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि प्रकृति के सम्मान का भी है। उनके यहाँ जीरो वेस्ट कुकिंग कोई नया ट्रेंड नहीं था बल्कि जीवन जीने का तरीका था। आज हम अक्सर सब्जियों के सबसे पौष्टिक हिस्से को फेंक देते हैं जबकि वही हिस्से हमारे स्वास्थ्य के लिए खजाना साबित हो सकते हैं। जैसे धनिया के डंठल, इन्हें फेंकने की बजाय चटनी, सूप और करी में इस्तेमाल कीजिए। इनमें भरपूर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। मूली के पत्ते स्वादिष्ट पराठे, चटनी और सब्जी बनाने के काम में आते हैं। फूलगोभी के पत्तों से स्वादिष्ट सब्जी, दाल या पराठों की स्टफिंग तैयार की जा सकती है। इसमें विटामिन सी और फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं। और ब्रोकली के डंठल, इन्हें सूप या स्टर फ्राई में डालिए, ये भी उतनी ही पौष्टिक है जितने इनके फूल। तो अगली बार जब आप सब्जियां काटें जरा रुककर सोचिए कि क्या जो हिस्सा फेंकने जा रहे हैं वो वास्तव में बेकार है, शायद नहीं। आइए समझदारी से खाएं, भोजन की बर्बादी कम करें, अपनी थाली में पोषण बढ़ाएं, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती है।

अभी हम सुन रहे हैं जसपाल सिंह को, फिल्म है नदिया के पार। इसी के साथ हमारी आज की इस खुशनुमा यात्रा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातू परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
1: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh

0: today.
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूं। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
0: During the program, President Murmu visited a special exhibition set up under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. In the next phase of her visit, the President will travel to Rairangpur in Odisha, where she is scheduled to inaugurate several development projects. Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. This incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. India has accused Pakistan of using propaganda to divert attention from its domestic challenges and its continued support for terrorism. New Delhi has strongly rejected Pakistan's allegations on Jammu and Kashmir at the 62nd session of the United Nations Human Rights Council. Speaking at the session, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations, Anupama Singh, asserted that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। वक्त हुआ है कलाकार बेमिसाल का, और आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी की। वे गीतकार होने के साथ साथ एक जाने माने लेखक और कवि भी थे। वे जिस तरह से गीत लिखते थे, सुनने वाले के जज्बातों को एक नया मोड़ दे जाते थे। और न जाने कितनी बार हमने उनके गीतों को गुनगुनाया है, और आज भी हम उनके गीतों को गुनगुनाते हैं। अपने गीतों के बोल वे बेहद सरलता से लिखते थे, जिसे हर शख्स आसानी से समझ लेता था और महसूस कर पाता था। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कलाकार बेमिसाल के जरिए इसी खास गीतकार की, जिनका नाम है राजेंद्र कृष्ण। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। मैं हूँ रुचिका आपके साथ।

जी हाँ, ये सदाबहार गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, और इस गीत के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण जी। और आपको बता दें कि कलाकार बेमिसाल के जरिए आज हम बात कर रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी की। वे गीतकार होने के साथ साथ एक जाने माने लेखक और कवि भी थे। उनका पूरा नाम राजेंद्र कृष्ण दुग्गल था। 6 जून 1919 को वे पैदा हुए थे और लिखने का शौक उन्हें बचपन से ही था। कविताएं, शायरी, गजलें वे लिखने लगे थे। 1942 में शिमला की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी करने लगे, साथ साथ अखबारों को कविताएं प्रकाशन के लिए भी भेजने लगे। धीरे धीरे भीतर का कवि उनका आकार लेने लगा और मंचों पर भी कविताएं पढ़ने के लिए जाने लगे और वाहवाही भी मिलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वे इन सबसे संतुष्ट नहीं थे। बात 1945-46 की है और उन दिनों शिमला में बहुत बड़ा मुशायरा हुआ करता था, जिसमें देश भर के लगभग सभी बड़े शायर इकट्ठा होते थे। वहां राजेंद्र साहब ने भी अपनी पहली गजल पढ़ी और उस पर खूब वाहवाही बटोरी। जब राजेंद्र साहब गजल पढ़ चुके तो उसके बाद जिगर मुरादाबादी मंच पर पहुंचे और जिगर साहब ने नौजवान

जी हाँ, ये गीत आपने सुना फिल्म सिकंदर आजम से, और इस गीत को लिखा था किसने भाई? इस गीत को लिखा था गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी ने, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, कलाकार बेमिसाल के जरिए, और वे एक गीतकार होने के साथ साथ एक जाने माने लेखक और कवि भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में जो है गीत लिखे, और साथ साथ कई फिल्मों की उन्होंने कहानियां भी लिखी। और आपको बता दें, राजेंद्र कृष्ण जी का पूरा नाम जो था वो था राजेंद्र कृष्ण दुग्गल। 6 जून 1919 को वे पैदा हुए थे, और बचपन से ही उन्हें कविताएं लिखने का शौक था, साथ साथ शायरी और गजलें भी वे लिखते थे। कई ऐसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं जिन फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे। इनमें बड़ी बहन, अलबेला, लड़की, अनारकली, नागिन, भाई भाई, देख कबीरा रोया, गेटवे ऑफ इंडिया, अदालत, बरखा, पतंगा, लव इन शिमला, नजराना, छाया, राखी, प्रेम पत्र, ब्लफ मास्टर, भरोसा, पूजा के फूल, और इनके अलावा जहानारा, मैं भी लड़की हूँ, खानदान, प्यार की ये जान, नई रोशनी, पड़ोसन, ब्रह्मचारी, सच्चाई, प्यार का सपना, एक श्रीमान एक श्रीमती, तुमसे अच्छा कौन है, रेशमा और शेरा, मन मंदिर, शहजादा मालिक, बॉम्बे टू गोवा, ब्लैकमेल, न जाने कितनी ही ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों के लिए इन्होंने गीत लिखे और वे फिल्में सुपरहिट हुई। और आपको बता दें कि फिल्म खानदान, जो 1965 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो चलिए, जब हम इस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं तो सुनते हैं फिल्म खानदान से ये सुपरहिट गीत। आवाज है लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
5: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
6: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

हिंदुस्तान का देगा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

ये सुपरहिट गीत आपने सुना फिल्म पतंगा से। आपको बता दें कि सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं गीतकार, कवि और लेखक राजेंद्र कृष्ण जी की। राजेंद्र साहब ने लगभग सभी बड़े संगीतकारों के साथ फिल्में की, पर उनकी जोड़ी खास तौर पर सी रामचंद्रा के साथ खूब जमी। यूं तो राजेंद्र साहब के गीतों को करीब करीब सभी गायकों ने गाया, लेकिन सुरैया, लता, किशोर, मोहम्मद रफी और मन्ना डे ने उनके गीतों को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया था। आपको बता दें कि जिस तरह से वे गीत लिखते थे, सुनने वाले के जज्बातों को एक नया तरीका दे जाते थे। और न जाने कितनी बार हमने उनके गीतों को गुनगुनाया है और आज भी गुनगुनाते हैं, और हमेशा उनके गीत हम यूं ही

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोजा तारीखी दौरा मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सिकल सेल की बीमारी को 2047 के मुकर्रर निशाने से पहले ही खत्म करने की राह पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोबारा कराए जाने वाले नीट यूजी 2026 इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर मरकज की तरफ से लगाई गई आरजी बंदिश को बरकरार रखा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल में वादी सिंध मुआहदे को फरसूदा बताया है। उसने दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान की मजम्मत भी की है और मेक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप का 32वां राउंड क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया है। फ्रांस के अपने दौरे में उन्होंने इवियो में G7 समिट में शिरकत की। उन्होंने G7 समिट से अलग अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दीगर शख्सियतों से मुलाकात की। इससे पहले जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के शहर

खवातीन हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इत्माद जाहिर किया है कि भारत से सिकल सेल की बीमारी 2047 के कौमी निशाने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने खून की इस जीनियाती बीमारी के बारे में खासतौर पर कबाइली बिरादरियों में बेदारी लाने की मरबूत कोशिशों के लिए कहा। सदर जमहूरिया आज सिकल सेल के बारे में बेदारी लाने के दिन के मौके पर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में एक रियासती सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रही थी।

0: को मुस्तहकम बनाने के मकसद से मुनाकिद किए जाने वाले कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर के जेर एहतमाम एक बड़े तिब्बी कैंप का इफ्तिताह करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को अवाम के नाम वक्फ करेंगी, जिससे इलाके में हिफ्जान सेहत से मुतालिक खुसूसी खिदमात की तौसी होगी। सदर जमहूरिया देही इलाके में पाइप के जरिए पानी की सप्लाई का एक बड़ा मरबूत प्रोजेक्ट भी अवाम को वक्फ करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत कानकनी से मुतासरा 113 गांवों में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। सदर जमहूरिया हात बड़ला में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति शक्ति भवन, एक खसूसी सर्किट हाउस और नए बनाए गए राय रंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का इफ्तिताह भी करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि वक्त आ गया है जब फौजदारी निजाम इंसाफ को मुल्क के हर शहरी के लिए आईन में दिए गए हकूक को हासिल करने का एक वसीला बनाया जाए। नई दिल्ली में 2026 की फिंगरप्रिंट से मुतालिक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क का यह निजाम यकसर तब्दीली के अमल से गुजर रहा है और इसे मुनज्जम तौर पर ताजा तरीन शक्ल दी गई है ताकि ये मौजूदा दौर की जरूरतों को पूरा कर सके। उंगलियों की के निशानात की खुद ब खुद शनाख्त करने वाले इस कौमी निजाम नैफिस के बारे में जनाब शाह ने कहा कि इस तरह के बहुत से केसेस हैं जिनमें इस निजाम से इंतहाई पेचीदा केसेस को आसानी से समझने में बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि नैफिस को फिलहाल इसकी गुंजाइश के महज 10% हिस्से को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका इस्तेमाल महज मुजरिमों का पता लगाने से भी ज्यादा किया जाना चाहिए। वजीर दाखिला ने जोर देकर कहा कि नैफिस की कामयाबी का इनेसार उन आदाद और शुमार को इकट्ठा किए जाने पर है जो हर एक मौके वारदात से हासिल किए जाते हैं।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 के 21 जून को कराए जाने वाले दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम मैसेज प्लेटफॉर्म तक रसाई पर आर्जी तौर पर बंदिश लगाने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा है कि यह कदम नामुनासिब नहीं है और कानून के मुताबिक है। जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि हुकूमत ने इत्तिलाती टेक्नोलॉजी कानून की दफा 69 ए पर अमल करते हुए ये कदम उठाया है और बंदिश के इस हुक्म की भरपूर वजूहात मौजूद हैं। टेलीग्राम ने इस हुक्म को चैलेंज किया था और तफरीक बरते जाने का इल्जाम आयद किया था। उसने दलील दी थी कि उसने नीट से मुतालिक गैर कानूनी मफाद के सैकड़ों लिंक्स हटा दिए हैं और हुकाम के साथ तआवुन किया है। इम्तिहानात मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने कौमी अहलियत व दाखिला अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सरकारी व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ये इम्तिहान इतवार को होना है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल के 62वें इजलास में जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस जलसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट और अलग न होने वाला हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वह अपने अंदरून मुल्क चैलेंजों और दहशतगर्दी के तई अपनी लगातार हिमायत से तवज्जो हटाने के अपने प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए भारत ने इल्जाम आयद किया कि खित्ते में बढ़ते हुए मुजाहिरों और बेचैनी से वसी पैमाने

0: मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां

का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप

टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है।

केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है।

परिषद में सिंधु जलसंधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको विश्व कप फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी गोल्ड पर अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला। 2:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम।

0: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सुषमा और मेरे साथ है मेरे साथी
1: विनोद कुमार
0: जी। हम दोनों का बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। और विनोद हैं हमारे साथ और हम बात करेंगे किसानों से जुड़ी हुई बहुत जरूरी रुपयों पैसों की बात कर लेते हैं विनोद।
1: बिल्कुल,
0: क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं
1: और वो भी किसानों का क्रेडिट कार्ड।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है और सिर्फ किसानों, हर किसी को क्रेडिट कार्ड की बहुत जरूरत महसूस हो गई है। एक ऐसा लगता है कि भविष्य हमारा सुरक्षित हो गया है अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है। हमें किसी भी चीज की जरूरत है, फटाफट हम उसे खरीद सकते हैं।
1: सही कहा सुषमा। और देखिए, बहुत से हमारे किसान साथी हैं और इसके साथ जो बटाई पे जमीन लेते हैं या फिर दाम साझे पे जमीन लेते हैं, उनको समस्या आती है सबसे ज्यादा कि भाई किसान जहाँ से हमने जमीन अभी बटाई पे ली उसको भी पैसा देना है, फिर हमें बीज भी खरीदना है और खेत की जो निराई गुड़ाई है वो करवानी है, आगे तक के बहुत सारे चीजें ऐसी हैं, ऐसे खर्चे हैं जो उसको सोच के चलने पड़ते हैं।
0: बिल्कुल, यानी जमीन की जो तैयारी से लेकर फसल कटाई तक के बीच में जो समय होता है उसमें कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो क्रेडिट कार्ड है बहुत लाभदायक होता है, तो क्यों ना आज हम क्रेडिट कार्ड पर ही बात करें। तो इसके लिए विनोद जी आमंत्रित है हमारे स्टूडियो में, हमारी विशेषज्ञ, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं श्वेता सत्या जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपको।
2: धन्यवाद
0: जी। मैडम का परिचय और दूं, मैडम है निदेशक केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। और आज का विषय भी हम यही लेकर आए हैं कि खरीफ फसलों के लिए केसीसी का नवीनीकरण एवं ऋण प्रक्रिया, तो ये आज का विषय है। और किसानों से भी हम कहते हैं कि यदि कोई प्रश्न है आपका, आप पूछना चाहते हैं अपने केसीसी के बारे में, तो हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में है निदेशक मौजूद हैं आज इस कार्यक्रम में। आप कॉल कर सकते हैं 2342-1081 पर और दूसरा नंबर है 2342-1083। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम को। मैम, किसान क्रेडिट कार्ड जो कि बहुत एक पॉपुलर किसानों के बीच में रहा है,
2: बिल्कुल
0: है ना, तो उसकी उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण है इस पर हम जान लेते हैं पहले, फिर धीरे धीरे उसकी जरूरतें क्यों हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे बनवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें जानेंगे।
2: हाँ बिल्कुल, किसान क्रेडिट कार्ड देखिए एक बहुत ही पुराना स्कीम है जो 1998 से चला आ रहा है, बट इसके अंदर एक मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जिसको हम संशोधित ब्याज अनुदान योजना कहते हैं, जिसके अंदर किसान को 3 लाख तक का लोन दिया जाता है। अगर हम 3 लाख से आगे की बात करें तो इसमें अगर कोई किसान खेती कर रहा है तो उसको 3 लाख तक का लोन मिलता है, बट अगर वो पशुपालन और मच्छी पालन कर रहा है तो उसको मिलता है 2 लाख तक का लोन। सो ये जो लिमिट, अपर लिमिट जो बनी हुई है किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर ही सब्सिडी पाने के लिए, वो बनी हुई है अपर लिमिट 3 लाख की बनी हुई है, और उसके अंदर छोटे छोटे जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है अगर हम सरकार से सब्सिडी पाना चाहते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख घटक है, इसके 5-6 घटक हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी भी किसान भाई और बहनों को पता होना चाहिए। तो इसका प्रमुख घटक ये है कि ये 7% पे ये लोन दिया जाता है सभी किसानों को, और ये 7% का इसलिए मिल पाता है क्योंकि हम बैंकों को, सरकार जो है बैंकों को 1.5% की सब्सिडी देती है। तो इसके बाद जो इसका दूसरा प्रमुख घटक है वो ये है कि अगर कोई किसान 1 साल के भीतर इस लोन को चुका देता है तो उसको शीघ्र पुनर्भुगतान राशि मिलती है जो 3% की होती है। तो इससे जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो किसी फार्मर को पड़ता है वो पड़ता है 4%। इस पे सारे जो मेरे जो

हमें सुन रहे हैं इस पे ध्यान दीजिए, अगर आप एक साल के अंदर चुकाते हैं तो ये 4% पे आपको लोन पड़ जाता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी प्राइवेट पार्टी से अगर आप लोन ले

0: आपको सही दाम मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो इसे तुरंत आपको फसल बेचने की जरूरत नहीं है। आप नजदीकी वेयर हाउस में जाकर के अपनी फसल को रखिए और उसके अगेंस्ट जो आपको रिसीट मिलती है उसको जाके आप अपने नजदीकी बैंक में जब उसको रीडिस्काउंट कराते हैं तो उसके अवज में भी आप लोन पा सकते हैं। अब ये जो तीसरा घटक मैंने आपको बताया है ये बहुत कम किसान जानते हैं और इस पे हम लगातार कार्य कर रहे हैं कि इसकी सूची जो है किसानों तक पहुंचे और वो वेयर हाउस फैसिलिटी का यूज करें। इसका जो चौथा घटक है वो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी अगर कोई आपातकाल समय आता है, जब आपका फ्लड हो जाता है, ड्राउट सिचुएशन आती है, तो भी आपको एक रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी मिलती है जिसमें ये जो आपका लोन चुकाने का समय है वो आपका एक साल से बढ़ा दिया जाता है। तो छोटे में बताना चाहूं, संक्षिप्त में बताना चाहूं, तो ये इसके चार प्रमुख घटक हैं जो इस स्कीम को बहुत ही अलग स्कीम बना देते हैं और ये फार्मर के हित में हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मैम। और जैसे हम बात करें वेयर हाउस में, आपने बताया कि आसपास पहली बात तो थोड़ा सा चैलेंज आता है, अभी उतने वेयर हाउस नहीं मिल पाते हैं, और उसमें जो लागत आई है उस लागत का क्या पूरा का पूरा फायदा मिल जाता है, पूरा जो एक सब्सिडी हमें मिल जाती है वहां से है, या फिर उसके अंदर कोई कमी है, मतलब कुछ कटौती है, कुछ परसेंटेज वगैरह मिलती है?
0: ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें कोई भी कटौती नहीं होती है। जितना निकल करके आता है उस रिसीट के माध्यम से वो बैंक उसको आराम से दे देता है फार्मर को। मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में काफी आगे है जहां पे वहां के किसान जो है वो जागरूक हैं और वो वेयर हाउस फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक दूसरा राज्य है जहां पे किसान बहुत ही अग्रसर हैं, उनको ज्ञान है, वो जाते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। साउथ के भी जितने स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां के फार्मर्स, जहां के किसान बहुत ही जागरूक किसान हैं। तो संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो वेयर हाउस की फैसिलिटी ज्यादातर साउथ के स्टेट्स में फार्मर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं।
1: तो ये तो मैम बिल्कुल सुनने में सुहागे वाली बात है। और जब हम बार बार जिक्र करते हैं किसानों की आय दुगनी करने की, तो ये तो चार गुनी हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर मैंने कोई सब्जी उगाई है किसी तरीके की, उसके लिए मैंने ऋण ले रखा है, केसीसी कार्ड है मेरे पास, कई बार फिर हम देखते हैं कि अभी मुझे वो रेट नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने अगेती किस्म नहीं ली है, अभी समय के साथ चल रहा हूं, तो मैं उसको थोड़ा होल्ड करके और फिर बाद में मैं उसको बेच सकता हूं जब अच्छा उसका दाम मुझे मिलेंगे।
0: हाँ बिल्कुल, बट ऐसा दुख इस बात का होता है कि हमारे किसानों के इसकी सूची नहीं है। सो हम लगातार इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि आप चीजों को ढंग से जानिए और सही जानिए और उसका लाभ जरूर उठाइए, बिकॉज सरकार बहुत काम करती है, उसका बहुत कम परसेंट हम लोग जिसको हम कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज ज्यादा है, बट ये जो स्कीम है ये बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ स्कीम है जिससे फार्मर्स को बहुत लाभ हो सकता है।
2: बिल्कुल मैम, फार्मर्स को बहुत लाभ हो सकता है और केसीसी के बारे में और भी अधिक जानकारी फार्मर्स लेने जा रहे हैं हमसे और कॉल भी कर सकते हैं और कॉल किया हुआ भी है, लेकिन हम अभी होल्ड पर हैं। और किसानों के लाभ की अगर बात करें तो हमारी जो 23वीं किश्त है उसके बारे में भी एक

हाँ बिल्कुल। तो किसान क्रेडिट कार्ड को पाने के लिए आपको नजदीकी बैंक जाना है। बैंक की शाखा में जब आप जाएंगे तो आपको ये अपने जो जमीन के कागजात हैं वो लेकर के जाना है, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप खेती किस लिए करना चाह रहे हैं। खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन और मच्छी पालन कर रहे हैं तो इसका भी ज्ञान आप जरूर वहां पे जाके बैंक में जो वहां पे ऑफिसर बैठा है उसको जरूर दीजिएगा। उसके बाद आपके कागज को लेकर के, जमीन के कागज को लेकर के, और आप क्या क्या खेती करना चाह रहे हैं उसका आकलन किया जाएगा, और स्केल ऑफ फाइनेंस के बेसिस पे एक जो अमाउंट है वो निर्धारित अमाउंट आपको लोन के रूप में विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर आपके अकाउंट में ये लोन पहुंच जाएगा। पर अगर आप घर बैठे भी लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक कृषिका ऐप है, KRISHIKA कृषिका ऐप है, जिसको आप आसानी से अपने फोन पे डाउनलोड कर ले सकते हैं। अभी जो हमारा इतना अभियान चल रहा है खेत बचाओ आंदोलन, उसमें 90,000 से भी ज्यादा फार्मर्स ने आज के डेट में लोन लिया हुआ है, और उसमें से 40,000 से भी ज्यादा लोगों को सैंक्शन भी हो गया है।

बढ़ाइए। जब आप लोन को इतने कम दर में जो आपको लोन मिल रहा है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता है, साहूकार तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता है, तो आपको इन सारे सरकारी जो तंत्र बने हुए हैं उनका सही उपयोग करना है, कहीं बातों में नहीं आना है और लोन को टाइमली रीपे करना है। अब अगर आपका अकाउंट सक्रिय नहीं है तो आपको क्या करना है, उसका जो मूलधन है, आपका मूलधन आपको बैंक को चुका देना है और एक एप्लीकेशन लिख देना है कि आपके केसीसी अकाउंट को रिन्यू कर

0: बारे में बताना चाहूंगी। कृषि का ऐप आपसे एक रुपया भी चार्ज नहीं करता है। अगर कोई किसान ये सोचता है कि मैं ऐप के थ्रू अप्लाई कर रहा हूं, मेरे पैसे कट जाएंगे, नहीं, ये भ्रम करने वाली बातें हैं। एक रुपया भी उसका डिडक्ट नहीं होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
1: बिल्कुल सही कहा। और डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स केसीसी सेवाओं को सरल कैसे बना रहे हैं?
0: देखिए, सरलता कैसे आती है, जब आप सबसे दूर, जो दूर दराज गांव में जो किसान बैठा हुआ है, अगर वहां तक केसीसी पहुंच गई, जो महिला लोन ऋण लेना चाहती थी अगर वहां तक पहुंच गई, और वो सारे आंकड़े सिर्फ एक महज एक आंकड़े बन के नहीं, सच्चाई बन करके सामने आने लग जाते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि हाँ, स्कीम अच्छे से कारगर हो रहा है। तो अब जब मैं आंकड़ों की बात कर ही रही हूं, तो मुझे बताते हुए भी ये बहुत खुशी हो जाती है कि जब हमने किसान ऋण पोर्टल शुरू किया था, तब से लेके आज तक में जब 2 साल हमारे हो चुके हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो जो 22% लाभार्थी हैं किसान ऋण पोर्टल के, वो महिलाएं ही हैं। और उसमें, और जो टोटल हमारे पास जो फार्मर्स का डेटाबेस है, जो 5.6 करोड़ का फार्मर्स हमसे सब्सिडी लेते हैं हर साल डिजिटली, उसमें 85% जो है वो लघु और सीमांत किसान ही हैं जो इसका लाभ पाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे ये निष्कर्ष हम आराम से निकाल सकते हैं कि जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट का, जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्कीम की जब हम बात करते हैं, तो वो सही दिशा में जा रही है।
1: जी बिल्कुल सही बात है। अब किसान समय पर ऋण प्राप्त कर कृषि कार्यों को बेहतर किससे कैसे बना सकता है, मतलब कितना फायदेमंद है हमारा ये केसीसी, क्या क्या उसको फायदे हो सकते हैं?
0: देखिए, फायदे की बात अगर हम करें तो ये जो आपका स्कीम है, ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए है। कहने का मतलब हुआ, अल्पकालिक ऋण जो आपको मिलता है 3 लाख का, उससे आप डेली का जो जरूरत है वो खरीद सकते हैं, जैसे खाद हो गई, बीज हो गई, ये सारी चीजें जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में किसान को चाहिए होती है, और उसके लिए इसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो इजिली ये कार्ड के जरिए खरीद सकता है। दूसरी जरूरी बात ये हो गई, जैसा आप सभी जानते होंगे, ये भ्रांति है, मुझे अगर 1.5 लाख का केसीसी मिल गया तो किसान भाई क्या करते हैं कि 1.5 लाख उसी दिन निकाल लेते हैं। नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड एक एटीएम जैसा एक कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के जैसा बिहेव करता है, जिससे आप जितना चाहें उतना ही निकालें। ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, जितनी जरूरत है। अगर आपको 50 रुपए की जरूरत है, प्लीज आप 50 रुपए ही निकालें, 200 चाहिए, 500, 1000, सो आपको जितने पैसे की जरूरत है आप उतना ही पैसा निकालिए। इससे क्या होगा कि आप किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे से खेती ही करेंगे और कहीं और उसको नहीं लगाएंगे।
1: बिल्कुल, जिस पर्पस से लिया है, जिस उद्देश्य से लिया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही रखें, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके जरूरत का साथी होता है, तो उसे साथी बनाकर रखें, नहीं तो फिर बाद में परेशानी हो जाती है जब आप ओवर उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं। मैम, एक छोटा सा हम लोग अंतराल लेते हैं, क्योंकि हमारी जो 23वीं किश्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे किसानों के खातों में पैसे पहुंचने बहुत जरूरी है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केसीसी के, श्वेता सत्या जी निदेशक हैं हमारे साथ इस समय मौजूद, और क्रेडिट कार्ड की हम बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड की, तो मैम बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कभी स्मार्टफोन नहीं होते हैं, कभी कभी रीजनल इक्वालिटी की बात होती है, कि तो ये सब क्या समस्याएं किस तरह की आती है मैम?
0: ये जो दोनों प्रश्न हैं आपके, जिसमें हम रीजनल इक्वालिटी, मतलब हर राज्य कैसा कर रहा है केसीसी में, और कैसे हम सेंटर में बैठे, जब हम भारत सरकार की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मंत्रालय में बैठकर हम कैसे ये नियंत्रित करते हैं कि सभी राज्य जो हैं वो अच्छे से इस स्कीम को चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों तक मिल सके, उसके लिए हमने क्या किया है कि हमारा एक एक्टिव डैशबोर्ड है, और ये किसान ऋण पोर्टल से ही जुड़ा एक प्रॉपर डैशबोर्ड है जो हर रात को अपडेट हो जाता है और उसमें उस डैशबोर्ड के जरिए हम निरंतर देख सकते हैं।

0: है कि कौन सा रीजन भारत का कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे मैंने अपने उत्तर में भी अभी आपको बताया कि सदर्न रीजन जो है विच इंक्लूड्स आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारे रीजन्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। उसी तरीके से जो हमारा ईस्टर्न रीजन है जो इंक्लूड करता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे क्षेत्र जो हैं हमारा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और जब हम ये आकलन कर लेते हैं, कि कौन सा रीजन कितना अच्छा कर रहा है, मध्यवर्गीय जो राज्य हैं हमारे, मिडिल में जो स्टेट्स हैं हमारे, सेंट्रल रीजन जिसको हम कहते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट साउथ से थोड़ा सा कम है और वेस्टर्न रीजन सेंट्रल रीजन से थोड़ा कम परफॉर्मेंस में कर रहा है। तो हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न इससे निकल करके आता है वो हो जाता है ईस्टर्न रीजन के तरफ या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तरफ, हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस डिजिटल के बाद हमारा अब उद्देश्य क्या हो गया है कि जहां पर इनइक्वालिटी ज्यादा है उस दिशा में हम ज्यादा काम करते हैं, ताकि हम रीजनल इनइक्वालिटी जो दूसरे जो आपस के राज्यों में भी जो इनइक्वालिटी है उसको हम कम से कम तक ला सकें। तो ये हो गया डिजिटल होने का फायदा। और दूसरा जो है वो ये है कि काम करते करते जैसे दूर दराज के लोग अगर वो डिजिटल इनिशिएटिव्स और उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, फिर भी वो अगर ऋण पाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कृषि सखीज हैं उनके पास वो लोग ट्रेंड हैं, और जो हमारा सीएससी सेंटर है वो भी हर राज्य में काफ़ी अच्छे से फैला हुआ है। तो कृषि सखीज और बैंक करस्पॉन्डेंट्स भी है, हर बैंक का एक बहुत अच्छा विंग है जो बैंक करस्पॉन्डेंट के नाम से हर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो वो उन लोगों के पास जो स्मार्टफोन्स हैं उसके जरिए भी वो किसान लोन के लिए अप्लाई कर सकता है फोन के जरिए। और हमारे पास बातों ही बातों में आपको बताना चाहूंगी, मेरे पास एक बहुत अच्छी वीडियो आई थी हिमाचल प्रदेश से, जहां पे एक घर की बेटी जो कि नवी कक्षा की छात्र है, उसने इनिशिएटिव लिया अपने फादर के लिए, ये कृषि का ऐप डाउनलोड किया और उसने अपने फादर के लिए, अपने पिताजी के लिए और माताजी के लिए, दोनों के लिए ही ऋण के लिए अप्लाई किया। हमें यहाँ मंत्रालय में जब ये मिली, ये सूची मुझे अपडेट मिला व्हाट्सएप पे, तो मुझे इस चीज की इतनी खुशी हुई कि एक नाइन्थ क्लास का बच्चा भी अपने अपने माता पिता को हेल्प कर रहा है, तो हाँ गाइड कर रहा है। तो ये जो डिजिटल है ना, ये कई मायने से बहुत ही इफेक्टिव है, जहां पे अब देर नहीं होती अगर वो सूचना वहां पे पहुंच गई है। तो हमने वीडियोस के जरिए, केसी ये सीएसईस के जरिए, कृषि सखीज के जरिए इस चीज को काफी यूज करने की कोशिश की है। प्लस हमने क्या किया है कि स्टेट्स में हमने लोकल लीडर्स भी बना लिया और वो लोकल लीडर्स भी वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। जो पंचायत है वही हमें बताती है कि यहाँ के लोकल लीडर्स हैं और वो भी हमारे लिए काफी अग्रसित होकर हमारे लिए कार्य करते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बात करी और कुछ हमारे किसान साथी ऐसे हैं जिनको जैसे ऋण संबंधी जो समस्याएं आती हैं, जो अभी केसीसी जिनके पास है वो ब्याज दर ऊपर नीचे हो जाती है, कई बार बैंक की तरफ से पेनल्टीज आ जाती है, तो ये जो समस्याएं आती हैं इनका निपटारा वो जल्दी से जल्दी कैसे लें और कहां से उनको समाधान मिले?
0: देखिए, इसके लिए दोनों बैंक कर्मचारी और किसान दोनों को ही आपस में कम्युनिकेशन बनाना होगा। कम्युनिकेशन ऐसे बनता है, जैसे आपने जिस दिन ऋण लिया, आप इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें कि आपने ऋण किस दिन लिया है, क्योंकि अगर आप जब आप टाइमली उसको वापस करेंगे तभी आपको शीघ्र पुनर्भुगतान राशि मिल सकती है। तो इसमें जो बैंक है वो हमें ये सहायता करता है, अब हमने जैसे डिजिटलाइजेशन कर दिया है तो कुछ ही समय में ऐसा हम SMS सिस्टम बना रहे हैं जिसमें जो जिस किसान ने भी ऋण लिया है उनको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि हाँ कि आपका रिन्यूअल का समय आ रहा है, या फिर अगर आपका जो ऋण है इसका आप रिन्यूअल करा ले या फिर टाइमली रीपे करेंगे तो आपको शीघ्र पुनर्भुगतान राशि की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैसेजिंग सिस्टम हम कर रहे हैं जिसे लाभ पाने वाले किसान चूक ना जाए।
2: बिल्कुल मैम, क्योंकि समय कम है तो जाते जाते इम्पोर्टेंट चीज जो केसीसी के बारे में आप किसानों को कहना चाहते हैं जल्दी से।
0: किसानों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप केसीसी को एक एटीएम कार्ड के जैसा यूज करिए। अगर आपने आज तक केसीसी नहीं लिया है तो ऐप के जरिए ले लीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि ऐप वगैरह मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे भरोसा नहीं आ रहा है, तो आप अपने नज़दीकी शाखा जाके लीजिए, या फिर आप अपने बच्चों को बोलिए जो कि मोबाइल को बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं, तो आपको

0: जल्दी ही विश्वास हो जाएगा कि सरकार आपके नजदीक आने की कोशिश कर रही है और वो सारी मदद करना चाहती है ताकि आप घर बैठे इस ऋण को पा सकें। और सबसे अंतिम में मैं ये कहना चाहूंगी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जरूर करें। अगर आप सिर्फ क्रॉप कर रहे हैं तो साथ में पशुपालन मच्छी पालन भी करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। श्वेता सत्या जी हमारे साथ जुड़ी रही इस कार्यक्रम में, थैंक यू मैम। और अपने किसानों से हम कहना चाहते हैं कि इसी तरह जुड़े रहें कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजन किया था शिवनंदन लाल जी ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर

0: उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अधिकारियों से अपील की कि पूर्ण उन्मूलन के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून

का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बता दिया है और व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया है। हमारे बहुत सारे पुराने जो श्रोता हैं उनके लगातार संदेश आ रहे हैं, उसी में से एक संदेश हमने लिया है होली चौक उत्तम नगर से। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल का है। इन्होंने 20 साल बाद फिल्म से 3 नगमे अपनी फरमाइश के तौर पर भेजे हैं। उसमें से पहला नगमा हमने ले लिया है। हेमंत दा की आवाज है आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

हैं और हम आप तक आपके पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, आपकी फरमाइशें भी पहुंचा रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो फरमाइश भेजी है, फिल्म दोस्त का गाना सुनना चाहा है, वो हमने ले लिया है और कुछ पैगाम हम शामिल करना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के तमाम सदस्य जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और साथ ही हमारे पास रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं। और हमारे पास धमधा ग्राम सुखरी कला, अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, अंशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और भी बहुत सारे पैगाम लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण, संस्कृति पौरुष भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का भी। और सनावत से शेख मूसा मोहसिन जुड़े हुए हैं और इनको भी एक फरमाइश इन्होंने भेजी है, चलिए वो भी हम देख लेंगे। और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो भी जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती गौरी, ओम कुमार सुरलकर भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, ऊपर कोट बुलंदशहर से भी जुड़े हुए हैं, इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और साथ ही हमारे पास कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। विष्णु गार्डन नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं नईम खान, अकरम, निसार और सारुन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा, सतीश अनेजा भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम आप तक पहुंचाते हैं फिल्म दोस्त का ये नगमा, जहां स्वर है किशोर दा का।

जी हाँ, हमें भी आप लोग बुला रहे हैं अपने संदेशों के जरिए, तो हम आपसे फिर से मुखातिब हो गए हैं आपके संदेशों के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदीश कुमार, राहुल, रितिका नांगलोई से। इनकी पसंद का एक नगमा हमने ले लिया है, और भी बहुत सारे पैगाम हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे पास सिडनी ऑस्ट्रेलिया से संदेश आया है प्रतीति घोष का। ये कह रही हैं कि मैं सिडनी से ये कार्यक्रम सुन रही हूँ और मुझे पसंद आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक फरमाइश भी हमें भेजी है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश ज़रूर लें। और एक और संदेश आया हमारे पास सरोज बंसल और अनूप कौर का गुरुग्राम से। इन्होंने हमें कार्यक्रम के लिए बधाई भेजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार हमारे चैनल पे, हमारे कार्यक्रम पे यूं ही बना रहे। और अनीता वर्मा जुड़ी हुई है पीतमपुरा दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे पास शेरवानी स्कूल गंज डुंडवाड़ा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी भी जुड़े हुए हैं। और चलिए, मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी, हिना कौसर, तमाम लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे पास कई पैगाम आ रहे हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा से लिखते हैं कि सभा अंसारी जुड़ी है, शकील अंसारी, हिना अंसारी, आफ्ताब अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदली नंदनी है और अंजलि हैं।

नाम आया है और इन्होंने भी एक फरमाइश हमें भेजी है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की फरमाइश शामिल करें जितना भी हो सका। साथ ही हमारे पास जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी, निमित आहूजा भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे पास बाजार रोड मुंगलीपुर से, मुंगीसापुर से संदेश आया, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून साविस्ता, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी भी जुड़े हुए हैं। इनको कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे पास बागपत, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी, तमाम लोगों का यह पैगाम आया है। चलिए फिल्म संगम का यह नगमा आप लोगों की फरमाइश पर मुकेश जी की आवाज़ में।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने

0: रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश और आपके पैगाम हम शामिल कर रहे हैं मन भावन में। और इस कार्यक्रम में जो हमारा आपके संदेशों के आने का जरिया है वो व्हाट्सएप के जरिए है और ईमेल के जरिए है। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868868753 और ईमेल है fmgoldaird@gmail.com। आपके बहुत सारे पैगाम लगातार हमारे पास आ रहे हैं। बिसाऊ राजस्थान से दिनेश राज कुमार, विजय, पंकज, दयाल, राकेश, ये तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का पैगाम आया हुआ है अलीगढ़ से, इन्होंने भी संदेश भेजा है। और

आंगन भी जुड़े हुए हैं और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खांडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप भी जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और खयाला से उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार भी जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बार बार संदेश आप लोगों से गुजारिश है कि ना भेजें। और चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और पुराना तालाब डुमराव से भी ये जुड़े हुए हैं। वलीउल्लाह अंसारी हैं, आसमान आज हैं, गुड़िया रानी और शबनम बानो हैं। और उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत भी जुड़े हुए हैं। पाकुड़ झारखंड से ये लोग जुड़े हुए थे। और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा भी हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए, तो एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है फिल्म इजाजत का, स्वर है आशा जी का, आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण

आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जी आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं मन भावन। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। आगे बढ़ने से पहले आपके कुछ संदेश शामिल कर लेते हैं। एक संदेश आया हमारे पास भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार का। इन्होंने फिल्म नटवर लाल का गाना सुनना चाहा है। लता जी और किशोरदा की आवाज में हमने वो गाना

सावन, मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। आगे बढ़ने से पहले आपके कुछ संदेश शामिल कर लेते हैं। एक संदेश आया हमारे पास भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार का। इन्होंने फिल्म नटवर लाल का गाना सुनना चाहा है। लता जी और किशोरदा की आवाज में हमने वो गाना ले लिया है। आगे बढ़ते हैं और साथ ही हमारे पास इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी, डब्लू अंसारी,

बक्सर से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा नाज अंसारी भी जुड़े हुए हैं, और सुमित अनिता भगवती कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे पास गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से जुड़े हुए ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया और गरिमा बगड़िया भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, और सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, अनामिका शर्मा भी जुड़े हुए हैं बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महादेवपारा से मीरा, सिमरन और माया राजवाड़े भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे

बांडी वाला फाजिलका पंजाब से जुड़े हुए ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया और गरिमा बगड़िया भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, अनामिका शर्मा भी जुड़े हुए हैं बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महादेवपारा से मीरा, सिमरन और माया राजवाड़े भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे

0: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिनसिन को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will disperse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi this afternoon. The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said that since August last year, more than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under the scheme, of whom nearly 30% are women. Our correspondent brings the details.
4: The scheme has been designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, first-time employers are eligible for an incentive of up to 15,000 rupees, gaining crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to 3,000 rupees per month per additional employee. The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana came into effect on August 1st last year with the objective of promoting employment generation, enhancing employability and expanding social security coverage across all sectors of the economy with a special emphasis on the manufacturing sector. It aims to facilitate the creation of over 3.5 crore jobs across the country over a period of 2 years. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
3: The BJP today said that India's participation at the G7 highlights that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is steadily gaining the trust of the world's major countries with efficiency and competence. Addressing the media in New Delhi, BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi said, despite not being a full member, India was invited at the forum and was seen taking a lead. He noted that during the summit, Mr. Modi proposed the International Mobilization Partnership for accelerating connectivity and trade, on which all countries expressed interest. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आगे बढ़ने से पहले हम आप तक कुछ बातें पहुंचाना चाहते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम देश में और विदेश में आयोजित किए जाएंगे और स्वस्थ और निरोगी रहने की श्रृंखला में ये कार्यक्रम हम मनाते हैं और पूरी दुनिया में भारत की एक अनूठी पहचान इस कार्यक्रम के जरिए बनी है। तो हम ये कहेंगे कि आप भी अपने तन और मन को अच्छा रखने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए योग को अपनाएं और योग से आपकी बहुत सारी चीजें, आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। इसी दिन एक और कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में, उसके बारे में भी हम आपसे जानकारी साझा करना चाहेंगे। और जैसे योग से तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से मन को खुश रखने के लिए कभी कभी मनोरंजन की भी जरूरत पड़ती है। तो इसी दिन दोपहर 3 बजे से 21 जून को ही लाजपत नगर लाजपत भवन में नाटक का मंचन होगा, बकरा हलाल कर गया। और दूसरा एक नाटक है, हास्य नाटक है, साली आधी घरवाली, और इसके जो निर्देशक हैं वो है मनोज हैरी। और कार्यक्रम का स्थान हमने आपको बताई दिया, लाजपत भवन लाजपत नगर दिल्ली। इसके बाद एक संगीतमय शाम का भी आयोजन होगा, तराना के नाम से इस कार्यक्रम का नाम रहेगा। तो आप इन सभी कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही हम आपको चलते चलते बता दें कि 8:10 पर आप सुन सकते हैं मधुरिमा, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं रागों पर आधारित फिल्म संगीत, और आपके साथ होंगे संजीव अग्निहोत्री।

रात 10:30 पर आप सुन सकते हैं हर सिंगार। इस कार्यक्रम में भी आपके साथ होंगी कुसुम लता, और रात 11:45 पर गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम में आपके साथ होंगी कुसुम लता।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेवल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कंपटीशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
5: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म गाइड में, और उनके साथ थी लता मंगेशकर। इस नगमे के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब से कुछ ही देर में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ प्रसारित की जाएगी।

0: पात्रता शर्तें और अन्य विवरण आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर dopt.gov.in। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। महाप्रबंधक AHL, प्रबंधक विधि, फार्मासिस्ट दवा खरीद, इन सभी पदों के लिए आयु सीमा रहेगी 45 वर्ष। सभी पदों के लिए एक एक रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड की वेबसाइट अथवा www.upmsc.in। मुंबई पत्तन प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। मरीन इंजीनियर पायलट अनुबंध पर तथा योजना 1 अथवा 2 के तहत पायलट अनुबंध के आधार पर। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ TGT संस्कृत के एक पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र, योग्यता, नियम और शर्तों के लिए देखिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट sschittorgarh.edu.in। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कैंपस निदेशक के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.imu.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार करिश्मा, एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू आवर डियर लिसनर्स ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एंड एज करिश्मा जस्ट यू नो स्पेल्ट आउट द डिटेल्स, द नेक्स्ट 30 मिनट्स लिसनर्स आर गोइंग टू बी पैक्ड विद न्यूज discussion segment which is called Dateline India. There are going to be some reports, capsules, and of course towards the end of the program we shall together flip the pages of history to see what makes this day, that is 19th of June, so important. All this over the next 30 minutes. Let's begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi concludes successful 5-day historic visit to France and Slovakia.
2: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे।
3: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेज इंडिया ऑन ट्रैक टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज वेल बिफोर 2047 टारगेट।
2: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा।
3: इंडिया कॉल्स इंडस वाटर्स ट्रीटी आउटडेटेड एट UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑल्सो स्लैम्स पाकिस्तान फॉर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म।
2: और मैक्सिको दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी।

0: And listeners, as we promised you at the outset of the program, time now for our segment, which is called Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. Today, we will be focusing on International Sickle Cell Day and National Reading Day. Listeners, today we are talking about an important global health observance, International Sickle Cell Day, which is observed every year on June the 19th.
1: बिल्कुल सही कहा और श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र ने सिकल सेल डिसीज, जिसे अक्सर SCD भी कहा जाता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए जांच, इलाज और देखभाल की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के मकसद से इस दिन को मान्यता दी है.
0: द थीम फॉर दिस ईयर इज क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल केयर. दिस थीम एम्फसाइजेस प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू ट्रीटमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस.
1: और हम में से कई लोगों ने शायद ये नाम पहले सुना हो या नहीं भी सुना हो, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि सिकल सेल बीमारी अक्सर असल में होती क्या है. तो आइए इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि सिकल सेल बीमारी है क्या.
0: Well, Karishma, sickle cell disease is an inherited blood disorder. Normally, red blood cells are round and move easily through blood vessels, but in SCD, these cells become crescent-shaped or sickle-shaped, and because of their shape, they can block blood flow, causing severe pain, infections, fatigue, and serious health complications.
1: बिल्कुल, और यह जीवन भर रहने वाली बीमारी है, लेकिन सही मेडिकल देखभाल और समय पर बीमारी का पता चलने से इस बीमारी से लोगों को बचाया भी जा सकता है, ज्यादा स्वस्थ और बेहतर जिंदगी भी वो जी सकते हैं. तो सिकल सेल बीमारी संक्रामक नहीं है, यह माता पिता से जीन के जरिए मिलती है.
0: वेल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेम्बर, बिकॉज अवेयरनेस हेल्प्स रिड्यूस मिसकंसेप्शंस एंड स्टिग्मा. Well, you know, one of the biggest challenges is that many people are diagnosed late or don't have easy access to specialized healthcare.
1: और इसलिए जागरूकता अभियान इतने जरूरी हैं. ये शुरुआती जांच, जेनेटिक काउंसलिंग और समय पर मेडिकल मदद को बढ़ावा देते हैं. ये समुदाय को इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और इससे जूझ रहे लोगों का साथ देने में भी मदद करते हैं.
0: इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, विच फोकसेस ऑन वाइड स्प्रेड स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग फॉर एट रिस्क पॉपुलेशंस. द मिशन एम्स टू इम्प्रूव द केयर ऑफ ऑल sickle cell disease patients for a better future and to lower the prevalence of the disease through a multi-pronged coordinated approach towards screening and awareness strategies.
1: और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना भी की.
0: द प्रेसिडेंट सेड द स्टेट हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन सेवरल फ्रंट्स अंडर द मिशन.
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ. ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है. मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है. ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है.
0: The president noted that one of the key goals set at the launch of the national mission in 2023 was large-scale screening, and it is a matter of satisfaction that the target has been achieved ahead of schedule.
2: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना. मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं. दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है. तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है.
1: तो कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत लगाई गई एक विशेष प्रदर्शनी का भी दौरा किया. इस प्रदर्शनी में सिकल सेल

0: बीमारी की रोकथाम, जांच और इलाज से जुड़ी विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया।
1: As we observe International Sickle Cell Day today, let's remember that awareness, compassion and support can make a real difference.
0: और चाहे बीमारी के बारे में हमें जानना हो, हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए बढ़ावा देना हो, प्रभावित परिवारों की मदद करनी हो या फिर सही जानकारी फैलाना हो, हर कदम मायने रखता है।
1: एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट दैट टुगेदर वी कैन हेल्प क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर पीपल लिविंग विद सिकल सेल डिजीज रिसीव द केयर, अंडरस्टैंडिंग एंड अपॉर्चुनिटीज दे डिजर्व।
0: तो श्रोताओं, बढ़ती हुई जागरूकता, रणनीतिक स्क्रीनिंग पहल और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के तरीकों के जरिए मामलों की पहचान करने, देखभाल प्रदान करने और 2047 तक सिकल सेल डिजीज को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर खत्म करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: एंड एज दीज एफर्ट्स कंटिन्यू टू एक्सपैंड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड एज ग्रुप्स, दे रीइन्फोर्स इंडियाज़ रिजॉल्व टू एनहांस हेल्थ केयर आउटकम्स एंड प्रमोट वेलबींग among its diverse population, particularly in tribal and high prevalence areas. Well, let's go on to the next topic of deliberation, Karishma, and that is about the National Reading Day.
0: Bilkul.
1: Read and grow, let reading become a habit and knowledge a way of life, said the great P.N. Panikkar. Today we are also celebrating a day that reminds us of the incredible power of books and learning.
0: तो बिल्कुल सही कहा आपने, आज 19 जून को यानी कि आज के दिन भारत राष्ट्रीय पठन दिवस मना रहा है, जिसे नेशनल रीडिंग डे भी कहा जाता है। यह दिन पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और पुथुवायल नारायण पड़िक्कर के शानदार योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है, जिन्हें प्यार से भारत के पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी माना जाता है।
1: सो फ्रेंड्स, वेदर यू आर अ फैन ऑफ नॉवेल्स, बायोग्राफीज, कॉमिक्स, मैगजीन्स और इवन audiobooks, today is all about celebrating the joy of reading. And of course, it has something to do with P.N. Panikkar, but tell us more.
0: बिल्कुल, तो क्या आपने कभी सोचा है कि नेशनल रीडिंग डे यानी कि 19 जून को ही क्यों मनाया जाता है? अगर इसके बारे में बात करें तो पीएन पनिक्कर एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिनका मानना था कि शिक्षा और किताबों तक पहुंच समाज में बदलाव ला सकती है। उनकी कोशिशों ने खासकर केरल राज्य में एक बड़े लाइब्रेरी आंदोलन को प्रेरित किया था।
1: हिज डेडिकेशन लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन ऑफ केरलास अर्लीएस्ट पब्लिक लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स इन द ईयर 1945 एंड एनकरेज्ड कम्युनिटीज टू मेक बुक्स एक्सेसिबल टू एवरीवन।
0: और 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह समारोह की शुरुआत की थी, जिससे पठन दिवस मनाने की परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली।
1: Imagine creating a movement that inspires generations to read.
0: और पढ़ने में हमें सिर्फ परीक्षा पास करने में ही मदद नहीं मिलती, बल्कि इससे हमारी शब्दावली बेहतर होती है, याददाश्त मजबूत होती है, एकाग्रता बढ़ती है और दुनिया के बारे में हमारी समझ का दायरा भी बढ़ता है।
1: And of course, I'd like to add to this list, Karishma, that reading can take us on adventures without ever leaving our homes. Reading is a wonderful habit. Let's hear from a few children as they share their thoughts on reading.
2: I am Vihan Durgapal from Standard 6. You know, usually whenever I get a book, I just finish it in 2 or 3 days and then I'm bored and then I ask for more books. And at home when I'm usually reading, so I get so engrossed, I don't really keep track of time. So I just finish one book in 60 minutes. So after that I get bored and then I ask for more books.
3: My name is Daksh. I'm in 6th grade. Reading about space is my hobby. I also read about engineering and other stuff. I started reading about history now more, and I read about how things work because I'm curious about how things work.
1: Wow, Karishma, that sounds so interesting. The younger generation so much into reading.
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और राष्ट्रीय पठन दिवस नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालने और व्यक्तिगत विकास पर इसके सकारात्मक प्रभाव के महत्व को भी उजागर करता है। पढ़ने से शब्दावली बढ़ती है, भाषा और बातचीत के कौशल में सुधार होता है, और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि एकाग्रता बढ़ती है, तो ये जो बच्चे बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना।
1: एब्सोल्युटली, वेरी करेक्टली said, Karishma, and reading is such a habit that it stimulates imagination, creativity, critical thinking, while expanding knowledge about different subjects.

0: cultures and perspectives. By encouraging people of all ages to read, the National Reading Day promotes lifelong learning, academic excellence, and informed citizenship. The day also serves as a reminder of the valuable role that books and libraries play in shaping educated, aware, and empowered communities.
1: बिल्कुल, और एक किताब हमें नए विचारों, संस्कृति और नजरियों से भी परिचित करा सकती है.
0: So here's the challenge. Spend at least 20 minutes reading a book of your choice today.
1: और अगर आप पहले से ही नियमित रूप से पढ़ते हैं तो क्यों ना अपनी पसंदीदा किताब किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को रिकमेंड करें.
0: A very great idea, Karishma. Reading becomes even more enjoyable when shared with others.
1: और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
0: करिश्मा, लेट्स फर्स्ट गो टू कर्नाटका, वेयर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड इनॉगरेटेड अ स्टेट ऑफ द आर्ट इनक्यूबेशन सेंटर एट आईआईटी धारवाड़ लास्ट ईयर इन अक्टूबर टू एक्सेलरेट बायोटेक्नोलॉजी, डीप टेक एंड न्यू जेन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस. द इनक्यूबेशन सेंटर इज हेल्पिंग प्रमोट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन नॉर्थ कर्नाटका. वी हैव सम मोर डिटेल्स on this from our correspondent.
2: IIT Dharwad in North Karnataka has a state-of-the-art incubation center started with the combined support of MPLAD's funds of over 5 crore rupees contributed by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Another 5 crore rupees was funded by the Biotechnology Industry Research Assistance Council. The incubation center is also known as Dharti BioNest Incubation Center. While speaking at a session during the recently held CSIR RISE Conclave in Bengaluru, the Associate Dean of the Entrepreneurship and Dharti in IIT Dharwad, Professor Amar Keshav Gaonkar, explained the role played by the incubation center in mentoring young innovators and entrepreneurs eager on venturing into startups.
3: If the student comes with certain idea and if we found out the idea is really viable, so what we assign a mentor to that particular student, and that mentor is a faculty who is expert in that particular domain. We provide certain funding also, and we see there are some success stories which are coming at IIT Dharwad, and you will come to know in another 2 or 3 years there are wonderful startups that will be coming.
2: Professor Gaonkar says that IIT Dharwad Dharti Incubation Center fuels the growth of startups and entrepreneurs, turning cutting edge research into real world products, transforming ideas into a real world impact. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
1: और कर्नाटका के बाद अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां सरकार पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है. इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है, जो पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी.
4: हिमाचल प्रदेश में पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है. ये नीति चराई प्रबंधन व्यवस्था में सुधार कर उसे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ये नीति पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करते हुए राज्य में एक समावेशी, टिकाऊ और सशक्त पशुपालन अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी. इस महत्वाकांक्षी नीति के अंतर्गत अब पारंपरिक और कठोर प्रतिबंधों के स्थान पर वैज्ञानिक और लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाएगा. नीति में जिम्मेदार चराई को घास भूमियों की उत्पादकता बनाए रखने, मिट्टी में कार्बन भंडारण बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण का प्रभावी माध्यम माना गया है. इस नीति के अंतर्गत पशुपालन विभाग के सहयोग से वन विभाग एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा, जिसमें अगले 6 महीने के भीतर पशुपालकों को अपना नाम, पता, पशुओं की संख्या, चराई मार्ग और पड़ाव स्थलों का पंजीकरण करवाना होगा. इस प्रणाली के माध्यम से पशुपालकों की जानकारी के आधार पर आधुनिक विधि से हिम परिवार और भारत पशुधन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी पहचान और विवरण का सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा. इस नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि उन पारंपरिक पशुपालकों को भी मान्यता दी जाएगी जो वर्षों से बिना किसी औपचारिक अनुमति के चराई कार्य करते रहे हैं. नीति के अनुसार पारंपरिक चरवाहों, जिन्हें पोहाल कहा जाता है, को भी आधिकारिक रूप से राज्य पोर्टल में शामिल कर उनकी सुरक्षा और आजीविका को संरक्षण

श्रोताओं, इसके साथ ही आज भारतीय सिनेमा के अग्रणी फिल्मकार भगवती प्रसाद मिश्रा की पुण्यतिथि है। वे भारतीय फिल्म उद्योग के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण निदेशकों और

0: पटकथा लेखकों में शामिल थे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम विशेष रूप से आलम आरा से जुड़ा हुआ है, जिसे भारत की पहली बोलती फिल्म माना जाता है। इस फिल्म ने भारतीय फिल्म उद्योग में एक नए युग की शुरुआत की और मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों की ओर परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। उस दौर में तकनीकी चुनौतियों के बावजूद उनका योगदान भारतीय सिनेमा के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ।
1: We are paying tributes today to Raj Chandra Bose, Indian mathematician and statistician, born at Hosangabad in Madhya Pradesh. Bose made many valuable contributions to the subject. He discovered new codes for telecommunication. In the year 1976, America's highest honor to a scientist came to Bose as he was elected fellow of the US Academy of Sciences.
0: और इसके साथ ही आज हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्माता, निदेशक और लेखक सोमू मुखर्जी की जयंती है। आपको बता दें कि वे हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित मुखर्जी परिवार के सदस्य थे। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया और फिल्म उद्योग में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनके चर्चित फिल्मों में एक बार मुस्कुरा दो, नन्हा फरिश्ता, लव इन बॉम्बे शामिल हैं और वे प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा के पति और अभिनेत्री काजोल के पिता हैं।
1: Listeners, we are remembering today the great Ustad Nasir Zahiruddin Dagar, a legendary Draupad vocalist belonging to the historic Dagar Gharana. Alongside his brother, he was part of the famous junior Dagar brothers duo that kept the ancient classical vocal art of Draupad alive on global stages.

0: ऑन दैट क्लासिकल नोट इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू से गुड बाय करिश्मा।
1: तो इसी के साथ श्रोताओं अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा और सरबजीत कौर को। नमस्कार।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने

0: कार्यों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Yozgar Yojana in New Delhi today. The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said that since August last year, more than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under the scheme, of whom nearly 30% are women. The BJP today said that India's participation at the G7 highlights that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is steadily gaining the trust of the world's major countries with efficiency and competence. Addressing the media in New Delhi, BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi said, despite not being a full member, India was invited at the forum and was seen taking a lead. He noted that during the summit, Mr. Modi proposed the International Mobilization Partnership for accelerating connectivity and trade, on which all countries expressed interest. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target, year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The president was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today. President Murmu appealed all state governments and officials not to take the disease lightly because it is passed on from generation to another. She said efforts should be made to eradicate it completely because treatment is possible.
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की

0: atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना.
0: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, एंड नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल. सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ. एंड टुडे इनफैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल. और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे.
0: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क. व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी, और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई, और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है, और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है, और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
0: पीपल विल फील सिक्योर. ओके, द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग. बट Let the this Prime Minister has given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? Rozgar ya karobar, saath hai
1: Bharat Sarkar. और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे, और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा. और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण

0: और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है,
1: या
0: आसानी से सब पहुंच सके। और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है। जी
1: या एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, जिनको पहली बार नौकरी मिली है। दिस कंपोनेंट फोकसेस डायरेक्टली ऑन द यंग इंडिविजुअल्स entering the formal workforce for the first time, and the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh, and the worker must not have any prior EPFO history before August 1st 2025. So these are the conditions, and then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage cap to a maximum of rupees 15,000, right? And then the disbursement will be in two stages, that is through the direct benefit transfer DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments, using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees, and the second one after another 6 months, so after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल, सभी को फायदा है।
1: yes.
0: बिल्कुल फायदा है। और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा, और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: See, and then one more thing. See, the Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service Portal. That is a National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा, कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं। तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं। और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का। इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this the one which is taking place right now is from the 1st of August 2025, started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 साल.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO.

0: Employers Provident Fund organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: बिल्कुल to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
0: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
0: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got their employment letter, the job letters, and the total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
0: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, and they are paid something for every time they give a taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. has taken India to great heights.

0: एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली, और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी।
1: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know. India's also gone ahead with the world. We have advanced. They have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country. And the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think. Almost 700 people are seated over here. Right up to the top.
0: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है।
1: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी। पीपल आर दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स। दे आर ऑल कीपिंग द फोन्स रेडी ऑन द टेबल। सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन, इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट देयर लेटर।
0: An amount will be transferred.
1: Yeah.
0: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए। और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके, और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं।
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months, and the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
0: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी। और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे, और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे।
1: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी। सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीस पीपल ऑल दीस बेनिफिशियरीज हू आर सिटिंग ओवर हियर इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन एंड दे विल बी ड्रीमिंग यू नो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the

0: Short film, lagu film, ha.
1: Short film that will be filmed on the screen, and then after that, he'll be clicking on the button, the magic button.
0: Magic button.
1: Yeah, the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country, and then of course the Prime Minister will give his speech, and I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
1: एंड सी द डायस, हाउ मेनी बुकेज आर देयर. द प्राइम मिनिस्टर विल बी सिटिंग राइट इन द मिडल. ऑन द राइट ही विल बी फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर एंड ऑन द लेफ्ट बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट. एंड द बोर्ड बिहाइंड, यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल वन. देयर इज अ स्क्रीन ऑन द on the plenary hall and the dais. Just behind the dais, there's a beautiful board, and on that the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through, and because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they are financially independent, and very soon our Prime Minister will be coming in, and people are getting ready, all are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है, जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा. और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना, ये एक प्राउड मोमेंट होता है, नहीं?
1: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. every person has a plan. A talent, God has given a talent in you.

0: and he will see that it, you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So you know, here, that's how he encourages. And the students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं है ना तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से
0: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know. And even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable. For not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and. And mingles with them and what a beautiful atmosphere you know so all these things he has got all these qualities you know to mingle with people and take your he listens to your problems that is the greatest thing with our prime minister he listens to your problems and he tries to solve them
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है
0: yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी
0: yeah.
1: है ना
0: एंड सी हु एक्सपेक्टेड द 3.5 करोड़ पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स इन इंडिया राइट द इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड 15 लाख हैव ऑलरेडी गॉट इट टुडे इट विल बी कंफर्म्ड फॉर देम थ्रू द प्रेस ऑफ दैट बटन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड देन ओवर द ईयर मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job. But it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं हमारा रिजल्ट आता है एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
0: सो इन फैक्ट द पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ अस यू नो देयर आर डेफ एंड डंब पीपल आल्सो ओवर हियर एंड देयर इज वन पर्सन
1: ट्रांसलेट किया
0: या ही इज ट्रांसलेटिंग थ्रू एक्शन It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and his say, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today. Yeah.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा
0: yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है ज्यादा नहीं और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे बातचीत खत्म ना हो नहीं
0: yeah.

0: think everything has stopped. They are all in attention. And I think the Prime Minister is arriving with the other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais. And once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, the student, young student, who'll be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived. He has entered. And is entered and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
1: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
2: एक बार
1: जोरदार तालियां हो जाए देवियों और सज्जनों तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए
2: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविय जी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का
1: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें
2: मैं मन्नत भाटिया
1: और मैं जयवर्धन गोयल
2: माय भारत वॉलंटियर्स आप सभी का
0: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the dais. Flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
3: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
1: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें एक बार जोरदार तालियां
3: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने
1: यह सम्मान का माध्यम है यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है
2: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविय जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे
0: And now the welcome
1: remarks
0: by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: Pradhan Mantri, Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat, Prosahan Rashi Vitran karne ke avsar par, hamare beech mein upasthit, Adaraniya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय केंद्रीय मंत्रीगण राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे प्रो लेबर थे उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए चार महत्वपूर्ण लेबर कोड

भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा।

0: ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा, उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रूपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1 लाख रूपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1 लाख तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रूपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2400

0: करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
1: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
2: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
3: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
1: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
3: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
2: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
3: तालियों की कड़कड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
2: डाइस पर
4: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है

कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है, और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है, और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए, और ये उद्योग को भी जरूरत होती है, और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर
इस योजना

योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है।
आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे। इतने कॉन्फिडेंस बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और

एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत

कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों,
सपने

0: और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रयू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
0: सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को
5: The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. More than 63 lakh employees have been

0: brought into the formal workforce under PMVBRY, of whom nearly 30% are women. PMVBRY is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, the first-time employees are eligible for an incentive up to 15,000 rupees, providing crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to 3,000 per month per additional employee, thereby encouraging sustained job creation.
1: पुनीत, 2004 से 14 तक की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ रोजगार की दर थी, और अगर हम देखते हैं 2014 से लेकर के 24 तक तो ये 17 करोड़ अब आंकड़े उभर कर आए हैं. आप इस ग्रोथ स्टोरी को कैसे देखते हैं?
2: प्राची, देखिए, भारत में यदि पिछले हम 10-12 वर्षों के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो एक पूरी नई कहानी एक तरह से लिखी गई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पहले भारत का जो ग्रोथ इंजन था वो ज्यादातर सर्विसेज सेक्टर से ग्रो कर रहा था, और उसमें रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज होती थी वो थोड़ी सीमित होती थी. वो एक तो सीमित होती थी एजुकेशन के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे. तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, और जो बाकी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे वहां पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती थी, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग या स्किल सेट कम होता था. तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी. हमने देखा है कि जो पीछे 10-12 वर्षों से सरकार की नीतियां रही हैं, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो उन क्षेत्रों में रोजगार को प्रोत्साहन देने वाली स्कीम्स हैं जहां पर पहले अपॉर्चुनिटीज कम थी और भारत को वहां पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है. तो इस प्रकार से आप देखें तो ये नंबर्स बढ़े हैं, काफी ज्यादा बढ़े हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो एवरेज सैलरी लेवल है उसमें इंकम में इम्प्रूवमेंट हुई है. तो मुझे लगता है ये काफी डिफरेंट स्टोरीज हैं, एक प्रकार से नई एरा है ये एम्प्लॉयमेंट की, और भारत को जरूरत है क्योंकि हमारा बहुत तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और यंग जो सेक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. तो आई थिंक इट इज रियली बैडली नीडेड.
0: पुनीत, यू मेंशन अबाउट द सर्विसेज सेक्टर अर्लियर ऑन. प्राची मेंशन अबाउट द टाइम पीरियड फ्रॉम 2004 टू 2014, 10 इयर्स, बट नाउ यू टॉक अबाउट द अदर थिंग्स. Clearly, we're a consumption-led economy now, leading to growth and manufacturing, of course. This is one point. The other thing is that Prime Minister often talks about the demographic dividend, right? So we have this workforce, the youth mostly, which were kind of looking for something, you know, in their career to do something. You talk about the lawyers, you talk about the doctors, engineers, software engineers, and all. But what about the other part of the population, the youth, who may not be that fortunate, you know, to have that degree of a software engineer or a lawyer or a doctor? So how significant do you see this Prime Minister Bharat Rozgar Yojana actually contributing to that?
2: So Nishit, this is a very interesting question, and of course a question which really confronted us for many decades. So we had opportunities or employment opportunities for youth in cities. So if you move to a metro, so there was a lot of large scale migration, if you'd see, of workforce from villages in India to the cities, and therefore we had metropolitan cities and tier 2 cities coming up. But it really created a lot of human cost also for migrant laborers, because first of all they did not get the jobs that they were skilled to do, which they could have done better probably in their villages or in a smaller towns. And therefore I think there was this great gap in India's growth story, or great gap in India's economic development, I would say. Now, as we see, if you look at the way, and particularly if you look at the latest scheme, which encourages startups not only in cities, it encourages startups in villages also. So that is a very important thing. We need to develop employment in rural areas, not only in agriculture. We need to develop employment in rural areas in enterprises, and I think that is what the real story of the scheme is.
0: Puneet, you talk about the startups just now, you know, concluded, you know, the Prime Minister concluded his visit to France and at the G7 summit. On the sidelines of that, this Viva Tech summit, which was, you know, the largest technology summit, which encourages the, you know, the startup ecosystem, and the Indian presence was in this large force over there. This kind of manifests the aspect.

0: traditions of the youth, you know, to bring up the economy, and of course, you know, towards, you know, manifesting the vision of Viksit Bharat 2047.
1: Yeah, I would say that it really needs to unleash. We need to unleash this power. There's this huge source of energy, enthusiasm, which is lying with the India's youth. We just need to channelize it. And I think schemes like PMVBRY and you know, these schemes are really important. We earlier had archaic schemes, you know, which gave employment guarantees for digging, you know, ditches in, in villages. So that is not the way India is going to grow. I mean, we need to target employment in areas where India needs economic growth.
2: पुनीत, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की बात कर रहे हैं, तो कैसे हम ये चीज इस चीज के बारे में बात ना करें कि सोशल सिक्योरिटी कितनी जरूरत है उसकी हम आम जनता को. तो सोशल सिक्योरिटी कवरेज में जो बढ़ोतरी हुई है, 25 करोड़ पहले हुआ करती थी और अब 94 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचा है, ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए?
1: देखिए, सोशल
2: विशेषकर युवाओं
1: के लिए जी, देखिए उड़ान युवा भी तभी बढ़ पाते हैं जब उनके पास एक सेफ्टी नेट हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. भारत में बच्चा जैसे ही थोड़ा सा व्यस्क होता था, एडल्ट होता था, कमाई की चिंता उसके माँ बाप को लगती थी और वो किसी भी अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब में वो काम करते थे क्योंकि उनको इमिजिएटली पैसे की जरूरत होती थी. मुझे लगता है सोशल सेफ्टी नेट जो आप जैसे आपने जिक्र किया कि 94 करोड़ नागरिकों को ये आज उपलब्ध है, इससे उनको ये हिम्मत मिलती है कि वो, क्योंकि उनको मालूम है कि बेसिक खाने पीने जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान की उन्हें अगर चिंता नहीं है तो वो ऊंची उड़ान भर सकते हैं. तो मुझे लगता है इसलिए बहुत जरूरी है.
2: बिल्कुल श्रोताओं, अब आइए रुख करते हैं कि और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट, लगातार 5 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला टूटा. सेंसेक्स 607 अंक यानी लगभग 0.8% गिरकर 76,803 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 155 अंक यानी लगभग 0.6% लुढ़ककर 24,013 पर आ गया. वहीं विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 0.2% से अधिक और स्मॉल कैप 100 0.4% से अधिक बढ़े. कारोबार की शुरुआत धीमी रही और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के कारण पूरे सत्र के दौरान बाजार पर दबाव बना रहा. हालांकि ट्रेडिंग के अंतिम आधे घंटे में सूचकांकों ने रिकवरी की लेकिन अंततः गिरावट के साथ ही बंद हुए.
0: द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड लोअर टुडे, स्नैपिंग अ 5-डे राइजिंग स्ट्रीक. द सेंसेक्स 607 points, nearly 0.8%, to close at 76,803, while the Nifty fell 155 points or 0.64% to settle at 24,013. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose over 0.2% and the small cap 100 index added more than 0.4%. The markets opened on a weak note and remained under pressure throughout the session, weighed down by heavy selling in IT stocks. Although the indices recovered part of their intraday losses during the final half an hour of trading, the markets ultimately closed in the negative territory.
2: Sensex mein shamil 30 mein se 17 companies ke sharon mein giravat darj ki gayi. Sabse zyada ghate mein rahe sharon mein Infosys 6.7%, TCS mein 3.5% से अधिक और HCL Tech 2.7% से ज्यादा गिरा. वहीं लाभ में रहे शेयरों में Eternal 2.2%, भारती एयरटेल 1.8% और पावर ग्रिड में 1.3% की बढ़ोतरी हुई.
0: एंड अमंग द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 15 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन. द आईटी इमर्ज्ड एज द मेजर ड्रैग फॉलिंग 3.6% एंड द फोकस्ड आईटी लॉस 2.8%. द ऑयल एंड गैस सेक्टर स्लिप्ड 1.2% एंड among the top gainers, telecommunication climbed 1.6%, capital goods jumped 1.1%, and the power added 1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,224 companies advanced, 2,002 declined, and 189 remained unchanged.
2: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में मामूली बढ़त के साथ 94.33 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.76 पर चल रहा था.
0: पुनीत, इफ वी लुक एट द मार्केट्स टुडे, यू नो, द 5-डे राइजिंग स्ट्रीक काइंड ऑफ स्नैप टुडे. There are multiple factors, we believe, but one which the central

0: गिरकर 2,32,943 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी जाते जाते आपसे पुनीत जी, सोने और चांदी के भाव पे।
1: देखिए, जो सोने में हम गिरावट देखी है या कमजोरी देखी है वो खासतौर से डॉलर इंडेक्स बढ़ने से हुई है, क्योंकि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली सोने में और कमी आ सकती है, पर मुझे लगता है कि यही स्टेबलाइज करेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और निशित के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए
1: धन्यवाद।
2: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. The benchmark domestic indices end 5-day rising streak. Sensex drops over 600 points. Nifty holds 24,000 level and the global crude oil prices rise. And that's all we have in this edition of Market Mantra from all of us here. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात

0: के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana PMVBRY at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the PMVBRY, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry. He highlighted that under the scheme, around 70 lakh jobs have been created so far.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Defense Minister Rajnath Singh today said that India's domestic defense production has increased from 46,000 crore rupees in 2014 to a record over 1,78,000 crore rupees in the last financial year. He said that defense exports, which registered at only 1,000 crore rupees before 2014, have risen to nearly 40,000 crore rupees due to the growing global demand for indigenously manufactured Indian defense equipment. Mr. Singh was speaking after laying the foundation stone of state-of-the-art 10,000 ton of aluminium extrusion press at the Ordnance Factory of Yantra India Limited in Ambazari, Nagpur. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. The declaration by the top court came in an unfortunate motor accident compensation case where a father lost his 5-year-old son while taking him to school. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that passport delivery has now become completely democratized as it is swift, secured and decentralized. Addressing the annual Regional Passport Officers Conference in New Delhi, Dr. Jaishankar said that the passport service is

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया, एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से नीतिगत

0: दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
0: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइन से ऑल अलाइन देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओइस्ट को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओइस्ट पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला।

0: 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओइस्ट अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओइस्ट तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट्स थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के इंसर्जेंट्स थे सब ने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियाँ अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के

0: अलग-अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग-अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट EU ने साइन किया है। अब इस FTA के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो
1: बिल्कुल
0: यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है EU के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और FDIs में इजाफा, तो इससे ओवरऑल GDP में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप UAE के साथ के अपने FTA को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी FTA को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से GCC के देशों के साथ भी हमारा FTA लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो को आप अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इंपोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बन के इस एक डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में, विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, एक उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, SCO का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्व

0: आते, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था। तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजन लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टेरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा, हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बाद अब सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के, उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूं, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही है। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं, दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर

0: हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था, तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहां पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने

0: पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40 से 60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रीन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की और शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं भारतीय प्रवासी जो हैं उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय।

0: मुख्य समाचार। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने उत्तरी जिले में पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। कहा, यह थाना महिलाओं को बिना किसी भय के शिकायत दर्ज और न्याय दिलाने में मदद करेगा। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जनकल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। दिल्ली पुलिस ने बताया, ऑपरेशन साई हॉक के पांचवें चरण के अंतर्गत ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से जुड़े 911 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, कई संस्थानों में योग शिविर आयोजित और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज उत्तरी जिले के सब्जी मंडी इलाके में दिल्ली पुलिस के पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। यह थाना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने और एक सुरक्षित तथा सुलभ पुलिसिंग माहौल देने के लिए स्थापित किया गया है। उद्घाटन के बाद श्री संधू ने कहा कि यह थाना महिलाओं को बिना किसी भय के शिकायतें दर्ज कराने, न्याय पाने और सहायता प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी और सुरक्षित वातावरण देगा। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की महिला सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख पहलों जैसे कि पिंक बूथ और सशक्ति अभियान की भी समीक्षा की। श्री संधू ने पुलिस बल को राजधानी में ऐसे और भी थाना स्थापित करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर गुड गवर्नेंस संगोष्ठी में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में श्री संधू ने कहा कि एआई शासन व्यवस्था को केवल प्लेटफॉर्म आधारित से बदलकर इंटेलिजेंस आधारित बनाने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि एआई प्रणालियों से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विविधता को प्रतिबंधित करें। उपराज्यपाल ने देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप और पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता तथा जन विश्वास आधारित संप्रभु एआई क्षमताएं विकसित करने को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताई। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जन कल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 नागरिकों ने हिस्सा लिया। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान लोग राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, जल कनेक्शन, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए बड़ी संख्या में शिविरों में पहुंचे। शिविर में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये दर्शाती है कि शहरवासी घर के निकट उपलब्ध हो रही सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए सक्रिय रूप से आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देना नहीं बल्कि पात्र नागरिकों तथा योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
0: दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य नागरिकों, उद्योगों, संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और निर्माण एजेंसियों को नवंबर से पहले पर्याप्त तैयारी का समय उपलब्ध कराना है ताकि दिल्लीवासियों को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये व्यवस्था सामान्यतः हर वर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के साथ लागू रहेगी। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत कई प्रावधान हैं, जिसमें वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना रहेगा। खुले में कचरा जलाने पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाएगी जैसे प्रावधान शामिल हैं। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार इस वर्ष राजधानी क्षेत्र में 70,00,000 पेड़ पौधे लगाएगी। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आज सचिवालय में उम्मीद फाउंडेशन की टीम से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि इस संस्थान की विशेषता है कि इसके अधिकतर स्वयंसेवक युवा हैं, जिनकी पर्यावरण को लेकर समर्पण तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में कई गैर सरकारी संगठन, निवासी कल्याण संघ, संस्थानों, कॉलेजों

0: विद्यालयों और युवाओं को एक साथ जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हरा भरा बनाने के संकल्प में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका है। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन साई हॉक के पांचवें चरण के अंतर्गत विभिन्न ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से जुड़े 911 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया संलयन और रणनीतिक संचालन के संयुक्त पुलिस आयुक्त रजनीश गुप्ता ने मीडिया को बताया कि दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान इस महीने की 16 तारीख से शुरू हुआ है। इस दौरान 715 छापेमारी टीमों ने दिल्ली सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समन्वित अभियान चलाए।
2: तो ना सिर्फ हमने हॉटस्पॉट्स पर काम किया बल्कि उन आम कंप्लेंट्स पर भी काम किया और उनके एनालिसिस करके हमें लगा कि बहुत सारा जो फ्रॉड है, हालांकि उसमें अमाउंट में एफआईआर बहुतों में नहीं थी और अमाउंट चूंकि 1 लाख से कम था तो ईएफआईआर भी नहीं थी, तो उसके अंदर जब काम करने से पता लगा कि एपी के बेस्ड फाइल्स का बहुत ज्यादा व्हाट्सएप के ऊपर आना होता है और उसी की वजह से पैसा साइफन ऑफ हो रहा है। इसी की मदद से हम लोगों की जो संख्या रही इस बार अरेस्ट की वो पिछले सभी साई हॉक ऑपरेशन से ज्यादा रही और 916 के अलावा अभी भी फॉरवर्ड लिंकेजेस में हमें उम्मीद है कि हम और लोगों को भी पकड़ पाएंगे।
1: श्री गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 105 लैपटॉप, 757 मोबाइल फोन, एक कार और लगभग 21 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभियान में नाइजीरिया के दो नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई जारी है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि मामले में 4 आरोपी राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी युवाओं, खासकर छात्रों को वर्क फ्रॉम होम का प्रलोभन देकर भर्ती करते थे। मामले की जांच जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाया जाए। नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के बारे में श्री शाह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां इस प्रणाली ने सबसे जटिल मामलों को भी सरल बनाने में सहायता की है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज मच्छर जनित बीमारियों के रोकथाम और उनके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाई। एक रिपोर्ट।
4: प्रत्येक ऑटो रिक्शा पर मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों का संदेश प्रसारित किया जाएगा। इस अवसर पर महापौर द्वारा फॉगिंग अभियान का भी शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि ये ऑटो सभी 250 वार्डों में जाएंगे। श्री वाही ने कहा कि ये ऑटो रिक्शा फॉगिंग मशीन और जन जागरूकता सामग्री जैसे मच्छर जनित बीमारियों से बचने के तरीके बताने वाले संदेश, पैम्फलेट और बैनर प्रसारित करेगी। महापौर ने कहा कि इस रैली का आदर्श वाक्य जीतेगी दिल्ली, हारेगा डेंगू मलेरिया महज एक नारा न होकर निगम की प्रतिबद्धता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली भाजपा ने राजधानी में आज लगातार दूसरे दिन घर घर महाजन संपर्क अभियान चलाया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के सभी 256 मंडलों में किया गया। इस महाजन संपर्क अभियान में मुख्य रूप से सांसद, विधायक और पार्टी के प्रमुख प्रदेश पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली भाजपा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास, विश्वास तथा जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने सुल्तानपुरी बी मंडल में घर घर जाकर क्षेत्रवासियों से संपर्क किया। वहीं सांसद कमलजीत सहरावत ने हरिनगर विधानसभा में और पूर्व प्रदेश

अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गोकुलपुर विधानसभा में क्षेत्रवासियों के बीच पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लगातार प्रोत्साहन देशभर के छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति का एक पोस्ट साझा करते हुए श्री सूद ने कहा कि उपराष्ट्रपति के इस संकल्प में दिल्ली विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज रविवार को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने संबंधी सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने बताया कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य पथ पर पोर्टेबल शौचालय स्थापित किए हैं। परिषद ने कहा कि इनका उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान लोगों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना, स्वच्छता के मानकों को बनाए रखना और साफ सफाई को बढ़ावा देना है। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर के प्रांगण में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगम ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। वहीं नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने बताया कि योग को ऑटोइम्यून बीमारियों और रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस के प्रबंधन में सहायक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आगामी 21 जून को मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत हुई। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 24 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 34 देशों के करीब 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ओलंपियन भवानी देवी इस प्रतियोगिता में 24 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में दोपहर में गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा कुछ इलाकों में मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 39 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उत्तरी जिले में पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जन कल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, कई संस्थानों में योग शिविर आयोजित और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। ये वितरण योजना के कार्यान्वयन

0: में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। इस प्रोत्साहन योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्धनों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने संबंधी सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने आज कहा कि यह निर्णय अनुचित नहीं है, क्योंकि इस ऐप के जरिए बड़ी मात्रा में सामग्री का तेजी से और व्यापक स्तर पर प्रसार किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि सरकार के पास रोक लगाने के कारण पर्याप्त थे और कानून के तहत प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। अश्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा-ह्यून से होगा। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana, PMVBRY, at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone.

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर वक्त हुआ है 8:11 और ये वक्त कह रहा है कि जुड़ जाइए आप उस महफिल में जिसका नाम है मधुरिमा। शास्त्रीय रागों पर आधारित इस महफिल में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री।

फिल्म आरती का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये आज जो हमने राग लिया है राग खमाज पर आधारित ये गीत आपने सुना। राग खमाज भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बेहद मधुर और श्रृंगार रस प्रधान राग है। ये चंचल प्रकृति का राग है जिसका मुख्य रूप से ठुमरी टप्पा गजल और हल्के फुल्के गीतों में प्रयोग किया जाता है। इसका थाट खमाज थाट है। जाति औरत संपूर्ण आरोह में 5 और अवरोह में इसमें 7 स्वर आते हैं और वर्जित स्वर जो है आरोह में ऋषभ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
5: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
6: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मधुरिमा। मैं हूं आपके साथ संजीव। आज हम बात कर रहे हैं राग खमाज की। राग खमाज में री को छोड़कर सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, लेकिन निषाद दोनों प्रकार के आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल प्रयोग किया जाते हैं। आरोह में सा गा मा पा धा नी सा होता है और अवरोह में सानी कोमल, धा पा मा गा रे सा पकड़ होती है, गामा पाधा निधा पा मगा रेसा। वादी स्वर गांधार गा और संवादी स्वर निषाद नी।

फिल्म अमर प्रेम का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। ऐसे ही बहुत से अमर गीतों की रचना की गई राग खमाज में, जो जिसमें से कुछ गीत हमने आज आपकी नज़र पेश किए। और इस गीत के साथ ही आज की जो मधुरिमा की महफिल है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इन गीतों का आनंद लिया होगा।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। फीफा विश्व कप में सहमेजबान मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। नौवें दिन अमेरिका का सामना ऑस्ट्रेलिया से और ब्राजील की टीम हैती के साथ खेलेगी। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। ग्वांगडोंग में मेजबान चीन ए के हाथों हार के बाद विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक मिला। FIH नेशंस कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चिली से होगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का अंतिम मैच कल चेन्नई में। और नीरज चोपड़ा आज से कतर में शुरू हो रहे दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फुटबॉल के साथ। फीफा विश्व कप के नवें दिन 4 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप डी में मेजबान अमेरिका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप सी में स्कॉटलैंड और मोरक्को की टीमें आमने सामने होंगी। तीसरा मैच ब्राजील और हैती के बीच खेला जाएगा। चौथा मुकाबला तुर्की और पैराग्वे के बीच होगा। इससे पहले 8वें दिन भी बेहद दिलचस्प मुकाबले खेले गए। कतर को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपना मैच ड्रॉ खेलकर 1 अंक हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: हर पल धड़कने बढ़ाने और विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के रोमांच को आगे बढ़ाते विश्व कप के एक से बढ़कर एक मुकाबलों के बीच कनाडा ने वैंकूवर में अपने समर्थकों की तरफ से मिलते प्रोत्साहन के साथ कतर को एक तरफा अंदाज में 6-0 से करारी शिकस्त देकर विश्व कप फुटबॉल के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत से उसने नॉकआउट राउंड में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। जोनाथन डेविड ने अपनी टीम के लिए हैट्रिक लगाई। वे इस विश्व कप में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के बाद एक मैच में 3 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कतर के 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिले, जिससे उसकी टीम 9 खिलाड़ियों तक सिमट गई। कनाडा की टीम ने इसका पूरा फायदा उठाया और ताबड़तोड़ हमले कर एशियाई दिग्गज टीम कतर को पूरे मैच के दौरान संभलने का मौका ही नहीं दिया। हाफ टाइम तक कनाडा 3-0 से आगे था। इस मैच में मेजबान टीम को गोल के रूप में एक तोहफा भी मिला, जब 75वें मिनट में मोहम्मद मनाई ने अपने गोलकीपर को चकमा देते हुए आत्मघाती गोल कर दिया। उधर ग्वाडालाजारा में लुइस रोमो ने दक्षिण कोरिया की रक्षात्मक चूक का फायदा उठाते हुए गोल किया, जिससे सह मेजबान मेक्सिको 1-0 से जीत हासिल करके मौजूदा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मैच जब गोल रहित बराबरी पर चल रहा था, तब खेल 58वें मिनट में दक्षिण कोरिया के गोलकीपर किम स्योंग ग्यू और डिफेंडर ली ग्यू ह्यू के बीच टक्कर होने से गेंद पेनल्टी एरिया के अंदर छूट गई। रोमो के पास ये सुनहरा मौका था और उन्होंने गेंद को आसानी से खाली नेट में डालकर गोल कर दिया, जो बाद में निर्णायक साबित हुआ। ये उस टीम के लिए एक बड़ी जीत है, जो 2022 में ग्रुप चरण में जीत हासिल करने में नाकाम रही थी। मेक्सिको के खिलाड़ियों ने मैदान पर जश्न मनाया। उधर एटलांटा में टेबोहो मोकेना ने आखिरी क्षणों में पेनल्टी को गोल में बदलकर न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को हार से बचाया, बल्कि चेक गणराज्य के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ कराकर विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप ए में उसे एक महत्वपूर्ण अंक भी दिलाया। मर्सिडीज बेंज स्टेडियम में 6वें मिनट में मिखाल सादिलेक ने चेक गणराज्य को बढ़त दिलाई। चेक गणराज्य जब जीत की तरफ बढ़ रहा था, तब थापेलो मासेका का लंबी दूरी का शॉट पेनल्टी एरिया में चेक प्रतिद्वंद्वी पावेल सुल्क के हाथ को स्पर्श कर गया। मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान आंसू बहाते हुए दिखाई देने वाले मोकेना ने 83वें मिनट में पेनल्टी स्पॉट पर कदम रखा और चेक गणराज्य के गोलकीपर मातेश कोवर के पास शॉट मारकर गोल कर दिया। इस ड्रॉ से दक्षिण अफ्रीका के भी अगले दौर में पहुंचने की संभावना बन गई है। चौथे मैच में इंग्लवुड में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी योहान मंजाबी के 2 गोल की मदद से स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी के मैच में बोस्निया हर्जेगोविना पर 4-1 से शानदार जीत हासिल की। मंजाबी ने

0: मैदान पर उतरने के 3 मिनट बाद ही मैच के 74वें मिनट में एक शानदार वॉली शॉट लगाकर विश्व कप में अपना पहला गोल किया। बोस्निया के टेरिक मुहारे मोविच को खतरनाक टैकल के लिए लाल कार्ड दिखाए जाने के कारण उसकी टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। अपना दूसरा विश्व कप खेल रही इस टीम के पास अब भी नॉकआउट चरण में पहुंचने का मौका है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: ये थी फुटबॉल की बात और अब चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को मात दी, वहीं अनमोल खरब हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन, सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: असम की 26 वर्षीय खिलाड़ी अश्मिता ने विश्व की 99वें नंबर की खिलाड़ी किम को 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 21-18 से हराया। पहले गेम में अश्मिता और किम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और एक समय तक स्कोर 14-14 से बराबरी पर था। इसके बाद अश्मिता ने धैर्य का परिचय देते हुए लगातार 4 अंक हासिल किए और गेम अपने नाम कर लिया। पहले गेम की गलती से सीख लेकर किम ने दूसरे गेम में बेहतरीन शुरुआत की, वहीं अश्मिता दूसरे गेम की शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आई। अश्मिता एक समय पर 2-8 से पीछे थी, हालांकि अश्मिता ने शानदार वापसी करते हुए अंतर 16-18 तक कर दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 अंक जीतकर अंतिम 4 में अपनी जगह सुनिश्चित की। इस साल BWF टूर प्रतियोगिता में ये उनका पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा। अश्मिता चोटिल होने के कारण 3 महीने तक खेल से बाहर रही थी और उन्होंने मई में वापसी की थी। वापसी के बाद उन्होंने चाइना मास्टर सुपर 100 और मलेशिया मास्टर सुपर 500 प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। अश्मिता कल फाइनल में जगह बनाने के लिए कोरिया की पार्क गा यून का सामना करेंगी। दूसरी ओर अनमोल प्रतियोगिता से बाहर हो गई। विश्व रैंकिंग में 51वें स्थान पर काबिज अनमोल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रही और 1 घंटे तक चले मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 36वें स्थान की खिलाड़ी और चौथी वरीयता प्राप्त हान कियानशी से 21-14, 15-21, 13-21 से हार गई। अनमोल के बाहर होते ही प्रतियोगिता में भारत की एकमात्र उम्मीद अश्मिता ही बची है। अब भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की निगाहें कल होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में अश्मिता पर होंगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
1: चीन के ग्वांगडोंग में आज भारत को विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में मेजबान चीन ए के हाथों 2-3 से मिली हार से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मुकाबला 2-2 से बराबरी पर था और भारत के आदित्य मेहता निर्णायक फ्रेम में ली चंगजी के खिलाफ लड़खड़ा गए और खिताब के लिए हुए इस निर्णायक मुकाबले में पिछड़ गए। भारत के स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने चंगजी के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। मेहता इसके बाद जू जियारुई से 34-66 से हार गए। डबल्स मुकाबले में आडवाणी और मेहता की भारतीय जोड़ी जियारुई और पैन यिमिंग से हार गई। आडवाणी ने एक बार फिर अपने सटीक खेल से भारत की वापसी कराई। 11 बार के राष्ट्रीय चैंपियन ने जियारुई के खिलाफ 82-4 की शानदार जीत हासिल की, लेकिन निर्णायक फ्रेम में मेहता अपनी लय नहीं ढूंढ पाए और भारत को जीत नहीं दिला सके। अब चलते हैं हॉकी के मैदान पर। FIH नेशंस कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का मुकाबला चिली से होगा। भारतीय टीम को इस मैच को जीतने का बेहद मजबूत दावेदार माना जा रहा है।
3: टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय महिला हॉकी टीम निचली रैंकिंग वाली चिली के खिलाफ अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी ताकि FIH प्रो लीग में वापसी की ओर अगला कदम रख सके। भारत ने पूल ए में 3 मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय टीम को अगले सत्र में प्रो लीग में वापसी के लिए नेशंस कप जीतना ही होगा। भारतीय टीम पिछले सत्र में 16 मैचों में सिर्फ 10 अंक लेने के बाद प्रो लीग में सबसे नीचे रहा और नेशंस कप में खिसक गया था। 8 देशों के FIH नेशंस कप के विजेता को अगले सत्र में प्रो लीग में जगह मिलेगी। मौजूदा रैंकिंग और फॉर्म को देखते हुए भारत का पलड़ा चिली पर भारी है। विश्व रैंकिंग में भारत 9वें और चिली 13वें स्थान पर है। सेमीफाइनल से पहले मुख्य कोच शोर्ड मारिन को कुछ पहलुओं पर काम करना होगा। 17वीं रैंकिंग वाली उरुग्वे को हराने के लिए भारत को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ड्रैग फ्लिकर दीपिका शानदार फॉर्म में है और 4 गोल कर चुकी हैं। नवनीत कौर, कप्तान सलीमा टेटे और लालरेम सियामी भी 1-1 गोल कर चुकी हैं। भारत के लिए एकमात्र फील्ड गोल दीपिका सोरेंग ने किया है। भारत को अगले मैचों में और फील्ड गोल करने होंगे। इसके लिए फॉरवर्ड पंक्ति को मौके बनाकर फिनिशिंग तक ले जाना होगा। अगर भारत अपने पिछले प्रदर्शन को जारी रखने में सफल रहता है तो खिताब की तरफ कदम बढ़ाने से उसे रोकना विरोधी टीम के लिए काफी मुश्किल होगा।

0: आनंद पाठक स्पोर्ट्स कैंप।
1: फुटबॉल हॉकी की बात हमने कर ली और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का अंतिम मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। तीसरे मुकाबले से पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है और भारत इस मैच में भी जीत का प्रबल दावेदार है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी भारतीय टीम का इरादा तीसरे मैच को जीतकर क्लीन स्वीप का होगा। टीम की निगाह केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर रहेगी। राहुल की वनडे टीम में जगह को लेकर कभी कोई संदेह नहीं रहा है, लेकिन जायसवाल शीर्ष क्रम में कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपनी जगह पक्की करने के लिए बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। उधर किशन ने लखनऊ में शतक लगाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ऐसे में इस सीरीज के हर मैच में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की पैनी निगाह रहेगी। बीसीसीआई ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद इस मैच के लिए हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है। यह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह ले सकते हैं, जिन्होंने इस श्रृंखला में अभी तक दोनों मैच खेले हैं। इससे भारत को चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की अनुपस्थिति में निचले क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज का विकल्प भी मिलेगा। इससे टीम प्रबंधन को ब्रिटेन के दौरे से पहले उनकी फॉर्म और फिटनेस का आकलन करने का मौका मिलेगा। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है तो उसने इस श्रृंखला में एकमात्र टेस्ट मैच और पहले 2 वनडे में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया है। उसकी टीम हालांकि जीत के साथ श्रृंखला का समापन करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। इसके लिए उसे खेल के तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: क्रिकेट की एक और खबर, दांबुला में वनडे फॉर्मेट की त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका ए का सामना भारत ए से होगा। आज अफगानिस्तान ए आखिरी लीग मैच में श्रीलंका ए के खिलाफ 103 रन के बड़े अंतर से हार गया। इस वजह से भारतीय टीम की फाइनल में जगह सुनिश्चित हो गई। और अब बात एथलेटिक्स की। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज से कतर में शुरू हो रहे दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये नीरज का इस एथलेटिक्स सत्र में पहला मुकाबला है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज रात दोहा में डायमंड लीग में जज्बे और जुनून के साथ प्रतियोगिता का आगाज करेंगे। इस स्टार खिलाड़ी ने 2023 में दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर के साथ खिताब अपने नाम किया था। वहीं 2024 में 88.36 मीटर के साथ दूसरा स्थान भी हासिल किया। पिछले वर्ष नीरज ने इसी मैदान पर 90 मीटर का आंकड़ा भी पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उन्हें 90.23 की दूरी प्राप्त करने के बाद भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। नीरज चोपड़ा कुछ समय से चोट के कारण मैदान से बाहर थे। नीरज हाल ही में स्विट्जरलैंड में ऑफ सीजन प्रशिक्षण शिविर में पीठ की चोट से उबर रहे थे। भारत का ये करिश्माई खिलाड़ी आखिरी बार पिछले वर्ष सितंबर में टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मैदान पर उतरा था। ऐसे में लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे नीरज के लिए मैदान पर कड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। नीरज ने कहा, इस प्रतियोगिता के लिए स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और पूरी तरह से फिट हैं।
4: दिस इज माय फर्स्ट कंपटीशन फॉर द सीजन, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई फील रियली गुड, आई फील फिट।
3: नीरज को श्रीलंका के खिलाड़ी सहित अन्य खिलाड़ियों से कड़ी चुनौती मिलेगी। वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक श्रीलंका के रुमेश पथिरागे का भी हालिया प्रदर्शन शानदार रहा। पथिरागे ने इस महीने की शुरुआत में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का शानदार थ्रो किया था। त्रिनिदाद और टोबैगो के मौजूदा विश्व चैंपियन केशॉर्न वॉलकॉट, ग्रेनेडा के पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स और केनिया के जूलियस योगो भी शामिल हैं। ऐसे में आज सभी प्रशंसकों की निगाहें वापसी कर रहे नीरज और एक रोमांचक मुकाबले पर होंगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और एक अच्छी खबर, चीन के गुइयांग में विश्व मुक्केबाजी कप 2026 के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत हो गई है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
2: As our foreign policy,
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
2: Remains a matter of right, not as a struggle.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
5: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
4: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए PM डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
6: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें अष्ट

0: लक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
3: दिस इज द कंट्री।
4: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9.
3: The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
5: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
3: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
5: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
3: Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the 4 important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. The project is being developed by Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited, a joint venture of Bharat Heavy Electricals Limited and Coal India Limited. It will produce 2,000 tons per day of ammonium nitrate using indigenously developed coal gasification technology. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and a mega health camp at the subdivisional hospital in Rairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. She also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi block, the Brahma Kumari.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना भेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने ये बात कही। उन्होंने ये बयान तब दिया जब पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया के किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing

0: enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry. Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the four important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. The project is being developed by Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited, a joint venture of Bharat Heavy Electricals Limited and Coal India Limited. It will produce 2,000 tons per day of ammonium nitrate using indigenously developed coal gasification technology. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. India has slammed Pakistan at the United Nations as it accuses Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday, after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report. Ms. Singh said, India categorically rejects the baseless and malicious allegations made by Pakistan. She said Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Peace talks between the US and Iran were called off today after intense fighting between Israel and Hezbollah in southern Lebanon, killing 21 people. Iranian officials didn't travel as planned to Switzerland, insisting that the fighting in Lebanon must stop before the talks can take place. US Vice President J.D. Vance also postponed his trip. Israel and Hezbollah later agreed to a ceasefire. A senior US official said negotiators for the US and Qatar worked out the deal with the help from Iran. In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-finals of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun, 21-16, 21-18 in the quarter-finals. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. Akashwani se Vishw Darpan ke saath main Ravi Kapoor. मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इजरायल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 6 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है और उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
3: दिस इज द कंट्री।
4: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
2: संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद उन्होंने ये बयान दिया। अनुपम सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। असली मुद्दा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को वापस करना है। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। ये युद्ध विराम आज स्थानीय समय अनुसार शाम 4 बजे से लागू होने वाला है। अमरीका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। दक्षिणी लेबनान में जारी संघर्ष के कारण ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा रद्द कर दी है। ईरान ने कहा है कि लेबनान में संघर्ष रुकने के बाद ही वार्ता आगे बढ़ सकती है। सीमा पर सैन्य कार्रवाई को देखते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में कथित आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर रात भर हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
5: मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया और चेतावनी दी कि अफगानिस्तान अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। ये घटनाक्रम दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है। इससे पहले 11 जून को अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के कार्यकारी राजदूत को तलब कर अफगान हवाई क्षेत्र के कथित उल्लंघन पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले करने का भी आरोप लगाया है जिसमें कथित तौर पर 13 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
6: As our foreign policy,
5: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
6: Remains a matter of right, not as a struggle.
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत का एलएनजी टैंकर दिशा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद गुजरात के दहेज बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। ये कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस लेकर आया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम द्वारा संचालित और पेट्रोनेट एलएनजी द्वारा चार्टर्ड ये पोत आज सवेरे दहेज एलएनजी टर्मिनल पर पहुंचा। उम्मीद है कि यह कार्गो पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के बीच

0: देश भर में एलएनजी की उपलब्धता को मजबूत करेगा और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। गुजरात के भरूच जिले में स्थित दहेज भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आयात टर्मिनल और देश के प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का एक प्रमुख केंद्र है। दुबई में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय वाणिज्य दूतावास और दुबई पुलिस की पॉजिटिव स्पिरिट काउंसिल के सहयोग से एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोग, दुबई पुलिसकर्मी, राजनयिक विद्यार्थी और योग प्रशिक्षक शामिल होंगे। प्रतिभागी योगासन, प्राणायाम और ध्यान अभ्यास से संबंधित एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। भारतीय दूतावास ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों और स्वस्थ तथा जीवंत समुदाय के उत्थान को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। वर्ष 2015 में पहली बार वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाया गया था। पिछले एक दशक में ये विश्व में सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य आंदोलनों में से एक बन गया है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: चीन में आयोजित शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस वर्ष भारत की रिकॉर्ड 7 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इन फिल्मों में हंटर्स मून, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, उमराव जान, चंदू चैंपियन, कालिदास 2, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज और फुल प्लेट शामिल हैं। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्मों की मजबूत भागीदारी गर्व का विषय है। चीन के गुयांग में विश्व मुक्केबाजी कप 2026 के दूसरे चरणों में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राचीन महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता शी यू वू को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और पदक तय किया। वहीं मीनाक्षी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया की तीसरे नंबर की मुक्केबाज कजाकिस्तान की अलुआ बाल्किबेकोवा को 5-0 से करारी शिकस्त दी। पुरुष वर्ग में दीपक ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में अजरबैजान के नबी इस गंदाद्रोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। निखिल ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में अजरबैजान के अमीन ममदज़ादा पर 5-0 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले स्नेहे 65 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड की किंगा क्रोवका से 0-5 से हार गईं और प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। हॉकी में भारत ने आज FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। भारत ने पूले में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला शनिवार को चिली से होगा। फीफा विश्व कप में ग्रुप बी में कनाडा ने कल रात कतर को 6-0 से हरा दिया। कनाडा के जोनाथन डेविड ने 3 गोल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 6 पदक पक्के किए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

की आहट से दिल धड़कता है, हवाओं की सरगोशियों में कोई गीत सा बजता है, कहीं वो गीत ये तो नहीं। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म च च च का ये गीत आपके लिए।

एक चमेली के मंडवे तले सितारों की छाव में समाज के रसूम से दूर दो दिल जन्मों जन्मों के बंधन में बन जाते हैं। मखदूम महीनुद्दीन का लिखा ये गीत फिल्म चा चा चा से। कहते हैं कि ये नज्म मखदूम ने तब लिखी जब उन्होंने दो प्रेमियों की एक कब्र को देखा। उन प्रेमियों को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वे समाज के अलग अलग वर्गों से थे। कमाल है ना, कैसे गीतकार शायर अपने भीतर जमाने भर का दर्द और खुशी समेट लेता है और फिर इसी दर्द और खुशी को वो गीत बनाकर जब कागज पर उतारता है ना, तो फिर वही गीत हमारे दिल की धड़कनों पर बजने लगते हैं। बशीर बद्र साहब लिखते हैं कि मेरे साथ तुम भी दुआ करो यूं किसी के हक में बुरा ना हो, मेरे साथ तुम भी दुआ करो यूं किसी के हक में बुरा ना हो, कहीं और होना यह हादसा कोई रास्ते से जुदा ना हो। अगला गीत हमने लिया है फिल्म वो कौन थी से, लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए।

हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, और दिल सवाल करता है कि इतनी दिलकश क्यों होती हैं खुशफहमियां? खत्म होने से पहले रंगीन क्यों हो जाते हैं ख्वाब? बिखरने से पहले क्यों हसीन लगते हैं फूल? क्यों बेवफाई से पहले खूबसूरत होती है मोहब्बत? क्यों मिलन का पीछा करती है जुदाई? और दिन के पहलू में क्यों छिपी होती है रात? इन्हीं सवालों के भंवर में जब उनसे मुलाकात हुई तो दिल कह उठा कि जिंदगी धूप, तुम घना साया। आइए सुने फिल्म साथ साथ का ये गीत जगजीत सिंह की आवाज़ में।

यकीनन वो किसी की मोहब्बत होती है जो जिंदगी को एक तरफ तो हसीन बना देती है तो वहीं दूसरी तरफ हंसाती है और रुलाती है। हंसना तो ठीक लेकिन रोना, हाँ मोहब्बत में अगर उम्मीदें ज्यादा हों तो दर्द ही देती हैं, है ना। ना शिकवा ना उम्मीद ना मशवरा कीजिए, अगर जाने वाले ने जाने की ठानी है तो जाने ही दीजिए। ये और बात है कि किससे तेरी नजर ने सुनाए ना फिर कभी, हमने भी दिले दाग दिखाए ना फिर कभी। ऐ यादे दोस्त अब तू जी भर के दिल दुखा, शायद ये रात हिजर की आए ना फिर कभी। फिल्म रुदाली का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 19 जून की रात है, निसंदेह आपकी पलकों पर नींद दस्तक दे रही होगी, है ना। ऐसे में जो ख्याल होते हैं ना, वो उड़ जाते हैं कहीं गुमनाम सफर पर। शायद वो सफर मोहब्बत हो। कभी कभी मोहब्बत किसी मंजिल का नाम नहीं होती, बल्कि उस सफर का नाम होती है जहां दो दिल एक दूसरे का हाथ थामे चलते चले जाते हैं। उन्हें रास्तों की परवाह नहीं होती, बस साथ होने का एहसास भर काफी होता है। ऐसे में हर राह जन्नत की तरफ जाती हुई सी लगती है। हकीकत की सरहदें खत्म हो जाती हैं और दिल की दुनिया शुरू हो जाती है, जो चली जाती है दूर कहीं चांद से पार। तो चलिए हम भी चांद के पार चलते हैं इस गीत के जरिए। फिल्म पाकीज़ा का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में आपके लिए।

0: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म चिराग के इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के

0: साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
2: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Drairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency, NTA, today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27 98 02 87. India has slammed Pakistan at the United Nations as it is accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday, after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
3: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorists as state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
2: In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-final of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया, एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं लेकिन हमारी विदेशी नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
2: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल एलाय है रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का

0: दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नाथेलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादी को मार गिराया। और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे। उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओवादी का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओवादी तकरीबन खत्म ही हो गया है। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे
1: बिल्कुल।
2: जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे, और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट से सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए, और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे, क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए कई जगहों।

0: और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट, वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे, वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं। 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ, उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लेटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के ये लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
2: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने FTAs को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने FTA को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे, तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग, और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को केंद्र में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा, और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक

0: ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें, या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये तीन जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
1: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूं, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही है। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
0: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
1: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
0: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
1: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
0: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं

0: तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी GDP के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सुरीला सा सफर, सुरीली सी डगर, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन में आपके लिए। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की आगोश में जहां चुप है, चरागों की रोशनी भी अब सुस्ताने लगी है। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको भी नींद आने लगी है, और नींद पर मुझे किसी का लिखा हुआ एक शेर याद आता है कि कोई किसी का होए क्यों, खुद से बिछड़े खोए क्यों, ये तौहीने इश्क हुई वो जागा, तुम सोए क्यों। तो फिलहाल सो जाइएगा, लेकिन ये गीत सुनिए क्या कह रहा है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म ममता का ये गीत।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में फिल्म ममता का ये गीत आपने सुना। हेमंत कुमार की आवाज एक अलग कशिश लिए हुए है। संगीतकार सलील चौधरी का कहना था कि यदि ईश्वर गाता तो उसकी आवाज हेमंत कुमार जैसी होती। यकीनन हेमंत कुमार की आवाज मोहब्बत को पहचान देती है। वैसे कभी कभी मोहब्बत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। ये रिश्ता न कोई नाम मांगता है और ना ही वजह, बस एक जानी पहचानी से मुस्कान, एक शिद्दत की चाहत और दिल के किसी कोने में चुपके से उतर जाने का एहसास। ना नाम का पता, ना रिश्ते की खबर, ये अनजाना सा बंधन एक प्यारी सी आरजू है। तू अजनबी भी है और सबसे रूबरू भी है ना, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। फिल्म बात एक रात की का ये गीत आपके लिए।

महल हो सपनों का, इस गीत के साथ ही गीत मेरे मनमीत यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस

कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी और सत्यापन तंत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्विता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्विता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसबर्स्ड इंसेंटिव्स वर्थ 2,400 crore rupees अंडर द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एट अ फंक्शन इन न्यू दिल्ली यस्टरडे। This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability, and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the higher standards of quality." He said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha today. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

आंखों में छिपे ख्वाब, अरमान और जज्बात यूं ही खामोशी से दिल तक पहुंच जाने दे। कुछ रिश्ते अल्फाजों से नहीं, नजरों से बनते हैं। अखियों को रहने दे अखियों के आसपास। बॉबी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

महबूबा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:24 और ठीक 37 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिकंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

अभी आपने धनवान फिल्म का गाना सुना, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया हृदयनाथ मंगेशकर ने। जी हाँ, तुम्हारी आंखें देखकर एक पल के लिए लगा जैसे वक्त ठहर गया हो और आसपास की सारी हलचल कहीं दूर खो गई हो। नजरें हटाना मुश्किल था क्योंकि उस एक झलक में न जाने कितने ख्याल और कितनी भावनाएं समा गई थीं। दिल ने जब लम्हे को चुपचाप अपने भीतर सहेज लिया, जैसे कोई अनमोल याद जो बार बार याद आने पर भी नई सी लगे।

आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। हर ख्वाब को प्यार और उम्मीद के रंगों से सवारा है। आपकी मुस्कान, आपकी बातें और आपके साथ बिताए जाने वाले अनगिनत पलों की तस्वीरें इन आंखों में बसी हुई हैं। अब हर नजर किसी मंजिल को नहीं बल्कि आपको तलाशती है। ऐसा लगता है जैसे इन आंखों का हर ख्वाब, हर इंतजार और हर दुआ आपसे ही जुड़ी हुई हो।

कुछ रिश्ते समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे होते हैं। वो ना उम्र के पैमानों में बंधते हैं, ना किसी औपचारिक परिभाषा में। ऐसे रिश्तों में बस अपनापन, विश्वास और एक दूसरे के लिए सच्चे भाव होते हैं। समय बीतता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन मन का जुड़ाव वैसा ही बना रहता है। ऐसा लगता है मानो दो आत्माओं के बीच एक अनकहा संबंध हो, जो हर दूरी और हर बंधन से ऊपर हो। प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में। इसे लिखा इंदीवर ने और संगीत दिया जगजीत सिंह ने।

कभी कभी मन में ये एहसास उभरता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं ही नहीं आते। उनकी मौजूदगी इतनी स्वाभाविक लगती है मानो वो हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हों। उनकी बातें, उनका साथ और उनका अपनापन दिल को एक अनकहा सुकून देता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत ने बड़ी नजाकत से दो रास्तों को मिलाया हो ताकि सफर थोड़ा और खूबसूरत, थोड़ा और मायने रखने वाला बन जाए। कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुना था मुकेश की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

अदालत फिल्म का गाना आपने सुना, रफ़ी और लता की आवाज़ में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। जब तुम पास थे तब तुम्हारी मौजूदगी को बस एक खूबसूरत आदत समझते रहे, लेकिन दूरी ने एहसास कराया कि किसी की कमी दिल को किस तरह हर पल महसूस होती है। तुम्हारे बिना गुजरते दिनों ने सिखाया कि प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं, बल्कि दूर रहकर भी किसी को हर पल अपने ख्यालों में बसाए रखने का नाम है। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें और तुम्हारा एहसास ही वो धड़कन बन गए जो हर पल ये याद दिलाती रही कि मोहब्बत क्या होती है।

सफर फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 45 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के विषय में बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर

वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

अभी आपने आशिक फिल्म का गाना सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सुहाने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो जीवन की भागदौड़ में भी एक छोटा सा ठहराव दे देते हैं। चांदनी रात हो या बस खामोश पल, ऐसे गीत हर मौसम को थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं।

एक गांव की कहानी फिल्म से आपने गाना सुना तलत की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। रात में तमाम जज्बात एक साथ उभर आते हैं, दिन की हलचल और शोर में जो बातें दिल के किसी कोने में दब जाती हैं, वो रात की खामोशी में धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। कुछ मीठी यादें मुस्कान दे जाती हैं, कुछ अधूरे ख्वाब आंखों को नम कर जाते हैं। ऐसे में दिल कभी पुरानी बातों में खो जाता है तो कभी आने वाले कल की उम्मीदों से भर उठता है। रात की तन्हाई अक्सर दिल की सबसे सच्ची आवाज सुनने का मौका देती है।

रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से आपने गाना सुना तलत महमूद की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तुम तो दिल की तार छेड़कर हो गए बेखबर, मगर उन सुरों की गूंज अब तक मेरे मन में बसी हुई है। तुम शायद अपनी राह पर आगे बढ़ गए, लेकिन तुम्हारी छेड़ी हुई धुन आज भी मेरी खामोशियों में सुनाई देती है। कभी मुस्कान बनकर, कभी एक मीठी कसक बनकर, वो एहसास दिल के किसी कोने में जिंदा है।

पारसमणि फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। असद भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 7 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: नौशेरवानी आदिल फिल्म का गाना आपने सुना, लता और रफी की आवाज में। परवेज शमसी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। चांद की नरम रोशनी से सजी ये सुहानी रात, जैसे मोहब्बत का कोई खूबसूरत अफसाना सुनाती है। तारों की चमक मानो आसमान पर प्रेम की कहानी लिख रही हो। ऐसे में दिल यही दुआ करता है कि हर रात तुम्हारे लिए चांदनी की तरह उजली और हर ख्वाब मोहब्बत की मिठास से भरा हो।
1: ओ कली कब तक छुपेगी एक भंवरे की निगाहों से, चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से। बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा,
2: अरे जा जा,
3: जा जा।

किसी से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लेकिन ताड़ने वाले जा अरे जा जा जा रे

ये केवल शिकायत नहीं बल्कि किसी को पूरी तरह समझ लेने का एहसास भी है। जब किसी की बातों, अदाओं और वादों के पीछे छिपे सच का पता चल जाता है, तब दिल में एक अजीब सी मुस्कान और हल्की सी कसक साथ साथ जन्म लेती है। आपने सुना सहरा फिल्म का गाना, लता और रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रामलाल ने।

असली नकली फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। जब से दिल ने तेरे प्यार का तराना छेड़ा है, हर मौसम सुहाना लगने लगा है। हवाओं में एक नई खुशबू है, फिजाओं में एक नई रवानी। ऐसा लगता है जैसे जीवन की हर धड़कन किसी अनकहे गीत का हिस्सा बन गई हो, जिसके हर सुर में सिर्फ तुम्हारा नाम है।

एक दिल सौ अफसाने फिल्म का गाना आपने सुना लता और रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मेरे हर ख्याल, हर एहसास और हर दुआ में तुम्हारी ही परछाई बसती है, सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी खामोशी तक। तुम्हारा साथ एक मधुर धुन की तरह मेरे मन में गूंजता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की किताब का हर पन्ना तुम्हारे नाम से रोशन हो।

पिया मिलन की आस। इस फिल्म का गाना आपने सुना लता और रफी की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया SN त्रिपाठी ने।

वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 41 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और लता की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। समय बदलता रहा, मौसम आते जाते रहे, लेकिन दिल के किसी कोने में बसा ये एहसास कभी नहीं बदला। वर्षों की दूरी, बदलते हालात और जीवन की अनगिनत राहें भी उस स्नेह को कम नहीं कर सकी। कुछ रिश्ते समय के मोहताज नहीं होते, वो यादों, विश्वास और अपनत्व की ऐसी डोर से बंधे होते हैं जो हर दौर में अब उतनी ही मजबूत रहती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जॉयल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। इससे पहले वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता रहा है, ऐसे में ये नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माही में भी मंगलवार तक बारिश का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shivangi. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The two leaders will later address a massive public gathering marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led government of Odisha. During the program, they will launch development projects worth over 47,600 crore rupees at Rai Rangpur in Mayurbhanj. In West Bengal, Mr. Modi will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district today. He's also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of multiple development projects in the state. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Under this installment, more than 18,880 crore rupees will be transferred directly into the bank accounts of over 9.44 crore farmers across the country. Prime Minister Narendra Modi dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality." He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. The Supreme Court ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of justices P.S. Narasimha and A.S. Chandorkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms the part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and the other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jaishankar spoke about the deepening India-US partnership across domains, even as both nations navigate its issues and complexities. He added that as India rises, its interests will expand and diversify. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president for the Financial Task Force

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

डांस डांस फिल्म का गाना आपने सुना अलीशा चिनॉय की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। अपने भीतर छिपे हुए हर मधुर एहसास को सुरों में ढालकर गाए जा। जिंदगी की राह में कभी खुशियां मिलें कभी उदासियां, फिर भी अपनी धड़कनों की लय को थमने मत देना। प्यार उम्मीद और मुस्कान के गीत गुनगुनाते रहना, यही मधुर दान जीवन के हर पल को खूबसूरत बनाती है और हर दिन को एक नया अर्थ दे जाती है।

टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना यीशुदास की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। माना हो तुम बेहद हंसी, लेकिन हम भी इतने बुरे नहीं कि तुम्हारी नजर हम पर ठहरे ही ना। हुस्न अपनी जगह बेमिसाल है, मगर दिल की सच्चाई, अपनापन और मोहब्बत का एहसास भी कम खूबसूरत नहीं होता। कभी नजरों से आगे बढ़कर दिल की आवाज भी सुनो, शायद वहां कोई ऐसी बात मिल जाए जो चेहरे की चमक से कहीं ज्यादा देर तक याद रह जाए।

अलग अलग फिल्म का गाना आपने सुना। लता और किशोर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। तेरे नाम के सिवा अब कुछ याद ही नहीं रहता, जैसे हर ख्याल, हर एहसास और हर धड़कन ने तुझे ही अपना ठिकाना बना लिया हो। दिन की रौनक हो या रात की तन्हाई, हर पल तेरी याद का रंग साथ चलता है। ऐसा लगता है मानो जिंदगी की किताब के सारे पन्नों पर बस एक ही नाम लिखा हो।

0: बन गई।
1: अर्पण फिल्म का गाना आपने सुना अनवर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:37 और ठीक 18 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बदलते रिश्ते फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरी सांसों को जो महका रही है, बरसों बाद भी उसका एहसास वैसा ही ताजा है जैसे किसी भीनी सी हवा का झोंका चुपके से दिल को छू गया हो। वो खुशबू यादों की हर कोने में बसी हुई है जो कभी मुस्कान बनकर होठों पर आ जाती है और कभी खामोशी में दिल को गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है।

उत्सव फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में। वसंत देव ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शायद रात की इस खामोशी में कोई मीठी याद जाग उठी है, या फिर किसी अनकहे एहसास ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। बेला की भीनी भीनी खुशबू और रात का सन्नाटा मिलकर ऐसा जादू रच देते हैं कि मन अपने ही ख्यालों में खो जाता है। तब हर हवा का झोंका एक संदेश सा लगता है और हर धड़कन किसी मधुर प्रतीक्षा का गीत गुनगुनाने लगती है।

वारिस फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उत्तम जगदीश ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 36 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

अर्थ फिल्म से आपने ये गजल सुनी। इसे गाया जगजीत सिंह ने और इसे लिखा राजेंद्र नाथ रहबर ने, संगीत दिया जगजीत सिंह ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर जाएंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दूनागिरी, अग्रे और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना बीएचईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे जो जुलाई 2025 से इस पद पर कार्यरत हैं। श्री अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले भी वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। ये फैसला 17 से 19 जून तक हुई FATF की बैठक के दौरान लिया गया। विदेश मंत्रालय ने संस्कृत

सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया है कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 13 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका अपना अजीज दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप उसे बार बार सुनना चाहते हैं गुनगुनाना चाहते हैं क्योंकि आप उसे बेहद पसंद करते हैं। तो ऐसे ही चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं गोल्डन एरा के जिसमें सबसे पहला नगमा आपके लिए हम लेकर आए हैं 1960 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म कोहिनूर से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की। तो आइए इस बेहद खूबसूरत सफ़र का आगाज करते हैं। शकील बदायूनी ने लिखा है इस गीत को और संगीत है नौशाद साहब का।

दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। कोहिनूर फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। और दोस्तों कहते हैं कि फिल्में हैं जो हमारे समाज का आईना होती है और फिल्में उन्हीं विषयों पर बनती है जो हमारे समाज में ज्वलंत मुद्दे होते हैं। ऐसे ही खूबसूरत मुद्दों पर, उन्हें खूबसूरत कहें या घटनाएं कहें, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा समाज उसे जागरूक हो इन फिल्मों के ज़रिए। और यही क्लासिक दौर यानी गोल्डन एरा के फिल्मों में दिखाया जाता था, चाहे वो गांवों का माहौल हो या शहर का। इन तमाम चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया जाता था। ऐसी ही एक फिल्म आई थी 1959 में, धूल का फूल। धूल का फूल यश चोपड़ा साहब के निर्देशन में बनी थी और उसका निर्माण भी खुद बीआर चोपड़ा साहब ने किया था। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था माला सिन्हा ने, राजेंद्र कुमार, नंदा, अशोक कुमार, मनमोहन कृष्ण, लीला चटनीस, मोहन छोटी, जगदीश राज वगैरह, और साथ ही साथ जड़ी ईरानी ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा इन दत्ता ने। इस फिल्म में 8 नगमे थे जो बेहद खूबसूरत थे। कहानी का एक हिस्सा अब्दुल रशीद की कहानी है, जो एक मुस्लिम व्यक्ति है और एक अवैध हिंदू बच्चे को पालता है, उसका पालन पोषण करता है। एक जगह उनकी कहानी में क्लासिक गीत, जिससे हम आपस में मिलजुल एक समुदाय दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का पैगाम देता है, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये बेहद खूबसूरत नगमा इसे फिल्म का है, जो फिल्म की कहानी और संभवतः इसके पूरे संदेश का प्रतीक बन जाता है। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। धूल का फूल इस फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब, माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। और आज आपका हमराही मैं हूं आपके साथ लेकर बेहद खूबसूरत नगमों को, गोल्डन एरा के उन चुनिंदा नगमों को, उन गीतों को जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये उस दौर के नगमे हैं जो हिंदी सिनेमा के बहुत ही खूबसूरत दौर में से हम चुनकर लाए हैं। और अब वक्त है कि हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के एक बेहद खूबसूरत और सदाबहार गीतों को हम आपको सुनाएं। प्यार की मासूमियत, शरारत और दिल की धड़कनों को बयां करता ये गीत आज भी सुनने वालों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। फिल्म आवारा का ये यादगार गीत, जिसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन साहब और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र साहब ने। शंकर जयकिशन साहब की धुनों से सजिया ये नगमा बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है और इसे अपनी मधुर आवाज़ों में अमर बनाया है लता मंगेशकर जी और मुकेश साहब ने। तो आइए सुनते हैं रोमांस और नज़ाकत से भरपूर कालजयी नगमा दम भर जो उधर मुँह फेरे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सुनते ही कदम थिरकने लगते हैं और चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा नगमा है 1957 में आई फिल्म नया दौर का। ये सदाबहार गीत जिसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी साहब और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है ओपी नैयर साहब ने। इस गीत को अपनी जादुई आवाजों से सजाया मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले ने। तो तैयार हो जाइए उस दौर की रंगीन फिजाओं में खो जाने के लिए और ये बेहद दिल को छू लेने वाले नया दौर के नगमे के लिए, बेहद लोकप्रिय नगमा उड़े जब जब जुल्फे तेरी कुंवरियों के दिल मचले। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही और हमराही के इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूं आपका हमराही फिरोज और आपके लिए उन चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं गोल्डन एरा के क्लासिक दौर के सुनहरे दौर के उन खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। दोस्तों कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त की सीमाओं को पार कर वक्त की सीमाओं को वक्त के बंधन को तोड़कर सीधे दिल में उतर जाते हैं और ऐसा ही एक बहुत ही मधुर और रोमांटिक गीत जो रात की खामोशी प्यार की नज़ाकत और भावनाओं की गहराई को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है और वो नगमा है 1956 में प्रदर्शित फिल्म चोरी चोरी का ये यादगार नगमा जिसके गीतकार शैलेंद्र साहब हैं और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है इस गीत को शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने अपनी मधुर धुनों से इस गीत को अमर बना दिया। इस गीत को अपनी सुरीली आवाजों से सजाया है लता जी और मन्ना डे साहब ने। तो आइए इस प्यार और संगीत से सराबोर इस खूबसूरत रात का आनंद लीजिए इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ और सुनिए फिल्म चोरी चोरी का ये बहुत ही प्यारा और सदाबहार नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी हमराही की, और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फिरोज। बात तब एक ऐसे फिल्म की जो गोल्डन एरा की बेहद खूबसूरत फिल्मों में से एक है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की बात हो और फिल्मी गीतों की चंचलता, मस्ती और अनोखे अंदाज का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यकीनन गोल्डन एरा के जो नगमे हैं, क्लासिक दौर की जो फिल्में हैं, वो बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारी हैं। उन्हीं फिल्मों में से अब एक बहुत ही प्यारा गीत, जिसमें अपने दिलकश बोल, आकर्षण धुन और जोशीले अंदाज में सुनने वालों के दिलों में खास जगह बनाई। साल था 1955 का। 1955 में प्रदर्शित हुई थी राज कपूर साहब के निर्माण निर्देशन में फिल्म श्री 420। इस फिल्म में राज कपूर साहब ने बेहद खूबसूरत अभिनय भी किया था। उसी फिल्म का ये लोकप्रिय गीत, जिसको लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने, इसकी यादगार धुने सीधे दिल में दस्तक देती है। गीत को अपनी शानदार आवाजों से सजाया, बनाया मन्ना डे साहब और आशा जी ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 का वही चुलबुला और सदाबहार नगमा, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फिल्म ताजमहल की इसी कव्वाली के साथ, जिसमें आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, आशा भोसले और मीना कपूर की, इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए हमराही से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा लेकर अगला प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली

0: बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भाजपा सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दूनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपये लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्ड शायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के आने की आशंका के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर है। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वे अपने सीजन के पहले इवेंट में चौथे स्थान पर रहे। श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रमेश थरंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 12 सेकेंड, और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का, और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उन तमाम मुश्किलात, उन तमाम परेशानियों से निकलकर जब आप एक अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तब वो तमाम परेशानियां और तमाम मुश्किलात बिल्कुल बहुत ही छोटी लगने लगती हैं। और तभी तो कहते हैं कि ज़िंदगी हर दिन एक नया अवसर देती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, उसे पहचानना चाहिए। मुश्किलें जीवन की परीक्षा है, सजा नहीं, ये हमें और मजबूत बनाती है। और जो व्यक्ति, जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास करता है, वही उन्हें हकीकत में बदल पाता है। और यही आज हम अरुणिमा की इस महफिल में ऐसे ही मौजूदात पे बात करेंगे, ऐसे ही बातों से हम इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। और कहते हैं हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा होता है, जो वो होता है हमारा दोस्त, हमारा अपना कोई खास जो हमारे दिल में बसा होता है। वो सिर्फ सुख के साथ ही नहीं, बल्कि कठिन समय में हमारा सहारा भी बनते हैं। एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी खुशियों को बढ़ाता है और दुखों को हमेशा कम करता है। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते वक्त ये दोस्त हमें हिम्मत, मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग देते हैं, और शायद इसीलिए हम उसके बेहद करीब होते हैं और उस पर सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्तनक में लुटाता रहूं। जी हाँ, अगर आपके साथ आपका साथी हो, आपका अपना हो, तो फिर आप यूं ही हंसते मुस्कुराते जीवन को आगे बढ़ाते हैं और जीवन की खुशियों को बहुत ही एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी इसी का नाम है, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते आगे बढ़ते रहें। ये नगमा था फिल्म हमराज से, और इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था रवि ने। महेंद्र कपूर साहब की आवाज में यह नगमा था फिल्म हमराज का। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। दोस्तों, ये जिंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, और इस प्यारी जिंदगी में हम बहुत सारे ऐसे वक्त से गुजरते हैं, बहुत सारे

की मुश्किलात से भी गुजरते हैं, जहां पर ऐसा लगता है कई बार कि कोई अपना ना है, अपना कोई है ही नहीं, बल्कि बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बाद कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है, चाहे वो अपना हो या कोई पराया, लेकिन उस वक्त आपकी मदद करता है, आपका हाथ थामता है, आपको अपने कदम से कदम मिलाकर खींचते हुए आगे लेकर जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि वो आपकी दुनिया बन गया हो। और जब वो आपकी दुनिया बन जाता है तो उसकी हर खुशी हर गम में आप हमेशा शामिल होते हैं, उसके आसपास हमेशा उसके इर्द गिर्द रहते हैं और गाते हुए गुनगुनाते हुए बाकी बचे वक्त को बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हैं। इस नगमे के साथ फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल से हम आपके लिए लेकर आए हैं किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने।

जी हाँ, गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। यकीनन जब तक ये जान में जान है, जब तक आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जिंदगी को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते रहें। जिंदगी में बेहद मुश्किलात, बेहद परेशानियां भले ही आए, लेकिन उन सब का डटकर मुकाबला करना हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी से हम सब मुकर नहीं सकते, क्योंकि इन तमाम मुश्किलात से निकल कर के इंसान एक परिपक्व और समझदार और साथ ही साथ एक बेहतर इंसान बनता है। तभी तो हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं खुशियों के साथ, मुस्कुराते हुए और दूसरों की परेशानियों को समझते हुए। आप भी दूसरों की परेशानियों को समझते हैं, मुश्किलात को समझते हैं, तब आप भी एक अच्छे इंसान बनते हैं। इसी तरीके से हम सब मिलजुल कर इस जीवन को आगे बढ़ाएं खुशियों के साथ, मोहब्बत के साथ। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये अगला नगमा ऐसी ही बातें कहता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में जिसमें आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सफ़र पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें प्यार मोहब्बत की जिंदगी की और ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ाने की हो रही है। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि रास्ते धुंधले हो गए हैं, मंजिल दूर होती जा रही है और कोई हमें समझने वाला नहीं। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। प्यार, उम्मीद और विश्वास, ये वो तीनों ताकतें इंसान को फिर से जीना सिखाती है। आज का अगला नगमा उम्मीद की आवाज है, एक ऐसी पुकार जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती है। और यह नगमा है साल 1959 में आई फिल्म नील कमल का। यह अमर नगमा महान शायर साहिर लुधियानवी के शब्दों से सजा है और संगीतकार रवि की मधुर धुनों ने ढाला है। इसे अपनी जादुई आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। तो आइए आप भी किसी सपने, किसी अपने या खुद अपने बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं तो इस गीत को दिल से सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक गीत भी हमें आगे बढ़ने की नई वजह दे जाता है। आइए उसी नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये नगमा था फिल्म नील कमल से। अगर शोने दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है अरुणिमा की, और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम बातें कर रहे हैं जिंदगी से जुड़ी हुई, प्यार मोहब्बत की, और मुश्किलात से बाहर निकलकर जिंदगी को आगे बढ़ाने की। दोस्तों कहते हैं कि जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मंजिल दिखाई नहीं देती, रास्ते धुंधले लगते हैं और मन निराशा से भर जाता है, लेकिन ऐसे ही पलों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है, और वो छोटी सी किरण एक शब्द हो सकते हैं, एक नगमा हो सकता है, एक बोल हो सकता है, या किसी का साथ हो सकता है। याद रखें, जब जीवन में कोई रास्ता नजर ना आए तब हिम्मत, विश्वास और सपनों का साथ हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। कहते हैं कि संघर्ष ही वो शिक्षा है या वो शिक्षक है जो हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने भीतर छुपी शक्ति का एहसास दिलाता है, अपने अंदर छुपी ताकत का एहसास दिलाता है। इन्हीं भावनाओं को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है साल 1964 की एक फिल्म दोस्ती का ये अमर गीत, जिसको लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी ने, आवाज है मोहम्मद रफी साहब की, और यह नगमा जो फिल्माया गया है दो दोस्तों पे वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है, ये सीधे दिल पर दस्तक देता है।

फिल्म दोस्ती का ये नगमा था आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। और इस फिल्म का नगमा सीधे दिल पे दस्तक देता है। ये फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, अपने दौर की दो ऐसे दोस्त की कहानी जो हमेशा याद रह गई। दोस्तों, ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है। इस सफ़र में कभी खुशियों की बहार आती है तो कभी इम्तिहानों की गर्द। लेकिन जो लोग अपने दिल में मोहब्बत, उम्मीद और यकीन का चिराग रोशन रखते हैं या रोशन करते हैं, उनके रास्ते कभी तारीख नहीं होते, यानी अंधेरा नहीं होता वो रास्ता। रिश्तों की गर्माहट, अपनों का एहसास और दिलों की कुर्बत इंसान को हर मुश्किल घड़ी में हौसला देती है। मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि वो ताकत है जो टूटे हुए अरमानों को फिर से परवान या परवाज देना सिखाती है। आज का ये अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। मोहब्बत और ज़िंदगी के इसी खूबसूरत पैगाम को अपने सुरों में समेटे हुए हैं। फिल्म अपना भी कोई होता गाए ये दिलकश नगमा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, सुरेश वाडेकर साहब और सुलक्षणा पंडित की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके लिए है।

दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत न माल है न शोहरत, बल्कि वो रोशनी है जो एक इंसान के दिल से दूसरे इंसान के दिल तक पहुंचती है। जब हम किसी मायूस चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हैं, किसी परेशान इंसान का सहारा बनते हैं या किसी के दिल में उम्मीद की शमा जलाते हैं, तब इंसानियत का असल पैगाम जिंदा होता है और वही पैगाम देता है फिल्म संत ज्ञानेश्वर का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा मुकेश साहब की आवाज़ में।

मुकेश साहब की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। अरुणिमा से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा लेकर भोर सुहानी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रूपये की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नीति का समर्थन करता है। ऐसे में ये नेतृत्व भूमिका आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसले में ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के स्टामन ने हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4थे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वह अपने सीजन के पहले इवेंट में 4थे स्थान पर रहे। वहीं श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रोमेश थनंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में पहुंच गया है। कैमरून बर्गेस के आत्मघाती गोल और एलेक्स फ्रीमैन के हेडर से अमेरिका ने पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। 2 मैचों में 2 जीत के साथ अमेरिका नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली मैक्सिको के बाद दूसरी टीम बन गई है। फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच होने वाले हैं। ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड का मुकाबला मोरक्को से और ग्रुप सी के मैच में हैती का सामना ब्राजील से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शिवांगी। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Paharpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The two leaders will later address a massive public gathering marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led government of Odisha. During the program, they will launch development projects worth over 47,600 crore rupees at Rai Rangpur in Mayurbhanj. In West Bengal, Mr. Modi will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of multiple development projects in the state. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Under this installment, more than 18,880 crore rupees will be transferred directly into the bank accounts of over 9.44 crore farmers across the country. Prime Minister Modi dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality." He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation, and entrepreneurship in the years to come. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jaishankar spoke about the deepening India-US partnership across domains, even as both nations navigate its issues and complexities. He added that as India rises, its interests will expand and diversify. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of United Kingdom, who has served in the role since July 2025. Meanwhile, in a social media post, External Affairs Ministry has termed it a major win for India. It said India continues to champion a zero-tolerance policy against terrorism. This leadership role reinforces New Delhi's relentless focus on combating global terrorist financing networks and dismantling illicit financial systems. The National Testing Agency, NTA, said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination, scheduled for tomorrow. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, +91 7827 980287. The Supreme Court ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of justices, P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar, held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated path is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. Peace talks between the US and Iran were called off after intense fighting between Israel and Hezbollah in southern Lebanon, killing 21 people. Iranian officials didn't travel as planned to Switzerland, insisting that the fighting in Lebanon must stop before the talks can take place. US Vice President J.D. Vance also postponed his trip. In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semifinals of the Macau Open in China. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. In the FIFA World Cup 2026, USA has entered into the knockout stage after beating Australia 2-0 in a Group D match at Seattle Stadium, Washington. The USA took a 2-0 lead in the first half. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। और दोस्तों हम सब आज एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं और एक नए दिन का आगाज करने जा रहे हैं क्योंकि ये नया दिन हमें हर रोज एक नई ऊर्जा नई उमंग और नई रोशनी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर अंधेरी रात के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है और एक नया दिन जब आता है तो फिर जिंदगी में एक नई उम्मीदें भी लेकर आता है और इसी नई उम्मीद के साथ हम भी आज के इस सफर पर चलेंगे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल के साथ आप भी हमारे साथ आएं इस सफर में जुड़े और अपने सफर को आसान बनाएं गाते गुनगुनाते हुए बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ। पहला नगमा आपके लिए अय्याश फिल्म का यशुदास की बहुत ही प्यारी आवाज में ये सुबह सुहानी। यकीनन ये सुबह बहुत ही सुहानी है बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि परिंदे चहचहाने लगे हैं वो जग चुके हैं और हमारे आसपास का माहौल भी बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा है इस वक्त। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं अय्याश फिल्म के इसी नगमे के साथ यशुदास की बहुत ही प्यारी आवाज में।

ईशुदास की आवाज़ में यह नगमा था फिल्म आयाश का, बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, जो हमें प्रेरणा देता है जिंदगी को आगे बढ़ने की, मुश्किलात से आगे निकलने की, क्योंकि हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आती है और हर सुबह हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती, कभी कामयाबी के फूल खिलते हैं तो कभी इम्तहानों की धूप सफर को मुश्किल बना देती है, मगर जो लोग हौसले का दामन थामे रखते हैं वे हर मुश्किल को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं। जिंदगी का असली मतलब ठहर जाना नहीं बल्कि हर हाल में आगे बढ़ते रहना है, गिरना, संभलना, सीखना और फिर मुस्कुराकर अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। आज का अगला ये गीत यही पैगाम देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सफर जारी रहना चाहिए, सफर चलते रहना चाहिए, क्योंकि रुक जाना जिंदगी नहीं, चलते रहना ही जिंदगी की पहचान है। फिल्म शोर का ये प्रेरणादायक नगमा गीतकार है इंद्रजीत सिंह तुलसी की सोच और जिंदगी के फलसफे को बखूबी बयान करता है। इसे अपनी बुलंद और दिलकश आवाज से सजाया है मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर साहब ने। तो आइए अपने दिल में नई उमंग, नया जज्बा और नई उम्मीद जगाएं। अगर राह में मुश्किलें आए तो उनसे घबराएं नहीं, क्योंकि हर सफर का अपना एक मकसद होता है, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

जी हाँ, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, जिंदगी इसी का नाम है, बस चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, जिंदगी में खुशियां बिखेरते रहें, अपनों के साथ साथ दूसरों को भी साथ लेकर बढ़ते रहें। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी का सफर सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने का भी नाम है। जब इंसान अकेला चलता है तो उसकी रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन जब लोग मिलकर चलते हैं तो मंजिल आसान हो जाती है और कामयाबी की राहें और भी रोशन हो जाती हैं। इत्तेहाद, भाईचारा और आपसी ताउन ऐसी ताकतें हैं जो बड़े से बड़े चैलेंज को भी छोटा बना देती है। जब हाथों में हाथ हो, दिलों में भरोसा हो और इरादों में मजबूती हो, तो कोई भी मुश्किल रास्ता लंबा नहीं लगता। आज का ये अगला गीत हमें यही पैगाम देता है कि तरक्की और कामयाबी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की मेहनत से हासिल होती है। मिलजुल कर काम करने की सोच ही एक बेहतर और खुशहाल दुनिया की बुनियाद रखती है, खुशहाल समाज की बुनियाद रखती है। फिल्म नया दौर का ये कालजयी नगमा मेहनत, एकता और इंसानियत का बेहतरीन तराना है। इसे अपनी दमदार आवाज, दाउद दिलकश पेशकश से बहुत ही खूबसूरत बनाया है मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने। तो आइए अपने दिलों में बेहद मोहब्बत, हमदर्दी और जज्बात को मजबूत करें। याद रखें, जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो न सिर्फ अपनी मंजिल आसान बनाते हैं, बल्कि दूसरों की राहें भी बेहद खूबसूरत बन जाती है और आसान हो जाती है।